एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 11 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज का प्रसारण आरंभ होता है।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए

आगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच

0: देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के उपविकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं, तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। और खेलों में, नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खेंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन। हम मनुष्य अक्सर पूरी जिंदगी बहुत कुछ पाने की दौड़ में लगा देते हैं। धन, मान सम्मान, रिश्ते, सुख सुविधाएं, लेकिन कभी ठहर कर ये नहीं सोचते कि जिस जीवन को संवारने में हमने इतना समय लगाया है या लगा रहे हैं, उसका अंतिम सार क्या है। जीवन का अंतिम सार या जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि समय लगातार हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है। जो पल बीत गया वह फिर लौट कर नहीं आता, इसलिए जरूरी है कि इस अनमोल जीवन में केवल संसार को पाने की कोशिश हमें नहीं करनी है, बल्कि उस परम शक्ति को याद करने का भी हमें समय निकालना है। जिसने

हमें यह जीवन दिया है। ईश्वर का स्मरण मन को सहारा देता है, भीतर की बेचैनी को शांत करता है और हमें याद दिलाता है कि संसार में हम हमेशा के लिए नहीं आए हैं। जीवन कितना लंबा होगा ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उसे कितना सार्थक बनाना है ये हमारे हाथ में जरूर है। इसलिए अपने दिनचर्या में प्रभु नाम का स्मरण हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। चिंतन के बाद अब लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भोलेनाथ की महिमा अनंत है। वे ऐसे आराध्य हैं जिनके दर पर पहुंचकर मनुष्य अपने मन का बोझ हल्का कर लेता है। उनके स्वरूप में वैराग्य भी है, करुणा भी। शिव का स्मरण हमें सिखाता है कि जीवन में सरल रहिए, सत्य के साथ चलिए और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखिए।

माँ का स्मरण मन को ऐसी शक्ति देता है जिसे शब्दों में पूरी तरह बांध पाना मुश्किल है। जब जीवन की राह कठिन लगे तो बस माँ पर विश्वास कीजिए। उनकी भक्ति मन की थकान मिटाती है, भीतर उम्मीद जगाती है और सदैव यह एहसास कराती है कि हम अकेले नहीं हैं।

श्रोताओं, अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। और सुबह के 6:40 अब हुए हैं। एक और भक्तिमय प्रस्तुति आपको सुनवा रहे हैं अब श्री रामचरित मानस गान से। मानस गान

ननिहाल से अयोध्या लौटते हुए भरत को चारों ओर अपशकुन दिखाई देते हैं। नगरवासी मिलते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, मात्र अभिवादन कर चल देते हैं। महल में पहुंचकर भरत को माता कैकेयी अति प्रसन्न दिखाई पड़ी। पिता, भाइयों तथा अन्य माताओं का कुशल पूछने पर बोली, हे तात, मैंने मंथरा की सहायता से सारी बात बना ली थी, किंतु विधाता ने बीच में ही बात बिगाड़ दी। राजा देवलोक को सिधार गए। भरत के कानों और हृदय में माता के वचन शूल की भांति चुभे। करुणा करते हुए वे जमीन पर गिर पड़े। पिता के स्वर्गवास के क्षणों में वे उन

पास नहीं थे, शोक मग्न पुत्र को अपना सिर धुनने के लिए इतना ही कारण पर्याप्त था। माता से संपूर्ण घटनाक्रम का विवरण सुनकर भरत क्षण भर को पिता का मरण भूल गए। जो अनर्थ हो गया था उसका कारण उन्होंने स्वयं अपने आप को मान लिया। माता ने जो सांत्वना भरे वचन कहे वो उन्हें अपने घाव पर नमक के समान लगे, मानो रिश्ते घावों को अंगार छू गया हो। पापिनी, तूने सारे कुल का सर्वनाश कर दिया। यदि तेरी यही नियत थी तो जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? जब तूने मन में ये ठाना तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए?

अभी आप सुन रहे थे मानस गायन। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह की 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारी केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सात बजकर 10 पर श्रोता सुना करते हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। 7:40 पर आज आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। सुबह 8 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने लेकर हाजिर होंगे 8:30 पर। 9 आज आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम जनवाणी, और ये कार्यक्रम 10 तक जारी रहेगा। इसी दौरान 9:20 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार सुने जा सकते हैं। दस बजे आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां, पहाड़ों के सुर लोकगीतों का। ये कार्यक्रम 10:30 पर आप सुनेंगे। 11 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन रिले किया जाएगा। 11:05 पर आज देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम जय हिंद गीतमाला प्रसारित किया जाएगा। 1 द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, इसका प्रसारण समय रहेगा 11:30। दोपहर 12 का समय रहता है कार्यक्रम सैनिकों के लिए के प्रसारण का। 12:30 पर बहने अपना कार्यक्रम सुनेंगी सुनो सखी। दोपहर 1 समाचार सुने जा सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 1:10 से लुत्फ उठाइएगा विविध भारती के कार्यक्रमों का, जिन्हें आकाशवाणी मुंबई से रिले किया जाएगा। और इसी दौरान दोपहर 3 प्रादेशिक समाचार और 3:05 पर सामयिक चर्चा आकाशवाणी शिमला से रिले की जाएगी। शाम 5 आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। 5:10 पर आज कुछ गैर फिल्मी भजन सुनवाए जाएंगे। कार्यक्रम युवा मंच युवा साथी सुनेंगे। शाम 5:25 पर आज बात होगी फिल्मी फ्राइडे की। 6 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं। 6:05 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरमई सांझ, मौजा गराइंदियां, ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे शाम 6:30 पर। शाम 7 आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। 7:10 पर किसान बागवान भाई बहन कार्यक्रम सुनेंगे खेतीबाड़ी। 7:42 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 8 आनंद लीजिएगा, माफ कीजिएगा श्रोताओ, 8 विधानसभा समीक्षा आकाशवाणी शिमला से रिले की जाएगी। और उसके बाद आप सुनेंगे मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस। देशगान 8:30 पर सुनवाए जाएंगे। रात 8:45 पर समाचार संध्या, और रात 9 News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। रात 9:15 पर आज प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से, कारवां सुरों का। फिल्मी गीतों का आनंद इस कार्यक्रम में आप लेंगे रात 9:30 पर। रात 10 नई फिल्मों से गीत सुनवाए जाएंगे। कार्यक्रम होगा बॉलीवुड बीट्स। रात 10:30 पर लुत्फ उठाइएगा पुराने फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। और सभा के अंत में समाचार श्रोता सुन सकते हैं। रात 11 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। ये थी रूपरेखा हमारी केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने को हैं अब से थोड़ी देर में। पहले संस्कृत में समाचार, 7 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया, जिससे नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी बल दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा

0: पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीष शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। एनटीए ने कहा कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थाई उत्तर में मौजूदा गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सोमालिया के पुटलैंड तट के पास समुद्री लुटेरों ने कैमरून के ध्वज वाले एक कार्गो शिप पर कब्जा कर लिया। लुटुफ नामक जहाज को सोमवार को कब्जे में ले लिया गया और नुगाल तट की ओर ले जाया गया। इस जहाज पर मोगादिशु में एक सैनिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए तुर्की के हथियार, संचार और सैटेलाइट उपकरण लदे हुए थे। चालक दल में 6 भारतीय सदस्य सवार थे। हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह सुहानी। सुबह सुहानी कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हर नया दिन इस बात का सबूत है कि अंधेरा भले ही रात का हो या फिर जिंदगी की राहों में, वो कभी ज्यादा देर तक नहीं रहता। हर रोज सूरज निकलता है, दिन चढ़ता है। ठीक उसी तरह जिंदगी की भी यही रीत है कि हार के बाद निश्चित रूप से जीत है। और ऐसा ही आज का कुछ हमारा सुविचार है। तो जानते हैं आज का सुविचार। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि आप कभी गिरे नहीं, बल्कि ये है कि हर बार गिरकर पहले से बेहतर इंसान बनकर आप उठें। जी हाँ श्रोताओ, जीवन में मुश्किलें आना असफलता नहीं होती, बल्कि वो हमें मजबूत बनने का अवसर देती हैं। जो व्यक्ति हर अनुभव से कुछ सीख लेता है, वही आगे बढ़ता है। जीत केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि हर चुनौती के बाद फिर से मुस्कुराकर खड़े होने में है। इसीलिए अगर कभी रास्ता कठिन लगे तो हिम्मत मत हारिए, क्योंकि संघर्ष ही सफलता की सबसे मजबूत नींव बनता है।

इसलिए बीते हुए कल की धूल झाड़िए, मुस्कुराइए और एक नए दिन का स्वागत कीजिए पूरी एनर्जी के साथ और नए इरादों के साथ। और सुविचार के बाद हम भी कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस बेहद ही प्यारे से गीत के साथ।

जी हाँ, हम भी हर रोज सजदा करते हैं उन रिश्तों का, उन यादों को, उन लोगों को जो हमारी जिंदगी को मायने देते हैं। और हमारा सजदा हमारे श्रोताओं को जो हर रोज हमारे साथ यूं ही जुड़ते हैं और हमें और अच्छा करने के लिए हर रोज मोटिवेट करते हैं। और अब कार्यक्रम में जानकारियों को आगे बढ़ाते हैं। एक तारीख और इतिहास के कई रंग, तो चलिए आज के इतिहास के कैनवस पर कुछ यादगार किस्से रंगते हैं। बात करते हैं 21 अगस्त के इतिहास की। सबसे पहले आज की मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं। श्रोताओं, आज यानी 21 अगस्त के दिन साल 1911 को पेरिस के लुब्र संग्रहालय से लियोनार्डो दा विंची का विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा चोरी हो गया था। और इस सनसनीखेज चोरी ने इस पेंटिंग को दुनिया भर में और भी प्रसिद्ध बना दिया। साल 1972 में आज ही के दिन संसद ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया और ये भारत में वन्य जीवों और उनके संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम था। हालांकि ये अधिनियम बाद में 9 सितंबर साल 1972 से लागू हुआ। इसके अलावा 21 अगस्त साल 1790 को जनरल मेडोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने तमिलनाडु के डिंडीगुल पर कब्जा आज ही के दिन किया था। अब बात उन खास हस्तियों की जिनके आज जन्मदिवस हैं। साल 1912 में आज ही के दिन जन्म हुआ पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश का। मशहूर उर्दू लेखिका इस्मत चुगतई, इनका जन्म साल 1915 में हुआ। अपनी बेबाक लेखनी और सामाजिक विषयों पर मुखर विचारों के लिए वे भारतीय साहित्य में अपनी एक अलग ही पहचान रखती हैं। भारत के प्रसिद्ध चित्रकार कृष्ण कन्हाई साल 1961 में जन्मे और वे चित्रांकन, यथार्थवादी समकालीन चित्रों और राधा कृष्ण के विषय पर चित्रों के विशेषज्ञ थे। साल 1979 में जन्मे भारत के सबसे युवा और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू। साल 1986 की बात करें तो साल 1986 में 21 अगस्त के दिन जन्म हुआ जमैका के महान धावक उसेन बोल्ट का, जिन्होंने अपनी रफ्तार से एथलेटिक्स के इतिहास में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए और 8 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भी ये रहे। आज के इतिहास में ये जानकारी अभी जारी रहेगी। फिलहाल कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त है श्रोताओं के मनोरंजन का।

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: अपग्रेड विद एक्सक्लूसिव ऑफर्स अक्रॉस द नेक्सा रेंज
2: दिस मॉनसून सीजन। मेक एवरी ड्राइव फील स्मूदर एंड एवरी जर्नी स्पेशल।
1: प्रेजेंटिंग द बोल्ट बलिनो, द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल, टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी।
2: इक्विप्ड विद फीचर्स लाइक 360 डिग्री कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले एंड सेफ्टी थ्रू 6 एयरबैग्स।
1: एंड नाउ इट्स योर्स एट एन इफेक्टिव प्राइस ऑफ जस्ट 5.79 लाख रुपीस।
2: यस, रुपीस 5.79 लाख वैलिड टिल 31st अगस्त।
1: डोंट मिस आउट, विजिट योर नियरेस्ट नेक्सा शोरूम एंड ब्रिंग होम द बोल्ट बलिनो टुडे।
2: हरे, ऑफर स्टिल स्टॉक्स लास्ट। टीएनसी अप्लाई।
0: नेक्सा। सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत। श्रोताओं, कार्यक्रम में बात हो रही है 21 अगस्त के इतिहास की और अब जानकारी हम अपने श्रोताओं के साथ साझा कर रहे हैं उन खास हस्तियों के बारे में जो आज के दिन इस दुनिया से रुखसत हुई। साल 1931 में महान शास्त्रीय गायक पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर इस नश्वर संसार को अलविदा कह गए। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसार में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है। साल 1978 में महान क्रिकेटर वीनू माकंड ने अंतिम सांस दी। इनका नाम जो है वो विश्व के श्रेष्ठ ऑलराउंडर्स में गिना जाता है। साल 1981 की बात करें तो इस साल में गांधीवादी विचारक, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी काका कालेलकर इस दुनिया से विदा हुए। और साल 1995 में आज ही के दिन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के महान खगोल भौतिक

0: भौतिक विज्ञानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर दुनिया को अलविदा कह गए। तारों की संरचना और उनके विकास पर उनके काम ने आधुनिक खगोल विज्ञान को गहराई से प्रभावित किया। उन्हें साल 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला। और श्रोताओं, आज ही के दिन यानी 21 अगस्त के दिन साल 2006 में भारत रत्न से सम्मानित महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां ने भी इस दुनिया को रुखसत कहा। उनकी शहनाई की आवाज भारतीय संगीत की पहचान बनी हुई है। तो ये थे आज के इतिहास के कैनवस पर 21 अगस्त के ये रंग, आज के ये जो किस्से हैं, आज की ये जो घटनाएं, जन्म निधन की बातें हैं, अब ये यहीं पर इन्हें समेटते हैं। अब वक्त है कार्यक्रम में एक बार फिर संगीत के रंग भरने का, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और गीत सुनवाएंगे उस ब्रेक के बाद।
1: Step into the world of Nexa.
2: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
2: Presenting the bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
1: Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags.
2: And now it's yours at an effective price of just 5.79 lakh rupees.
1: Yes, rupees 5.79 lakh. Valid till 31st August.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the bold Baleno today.
1: Hurry, offer still stocks last. TNC apply.
3: Nexa.

सुबह सुहानी कार्यक्रम में एक बार सभी श्रोताओं का फिर स्वागत 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने इसे ट्यून किया है और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप हमें सुन रहे हैं। श्रोताओं, एक शांत दुनिया का सपना और उन आवाजों को याद रखने की जिम्मेदारी जिन्हें आतंकवाद ने खामोश कर दिया। 21 अगस्त इसी संवेदना और एकजुटता का दिन है। हर वर्ष 21 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवाद के पीड़ितों

की स्मृति और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2017 में इस दिवस की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य आतंकवाद से प्रभावित पीड़ितों और बचे लोगों को सम्मान देना, उनकी आवाज़ को महत्व देना और उनके मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि पीड़ितों और उनके परिवारों को केवल घटना के बाद ही नहीं बल्कि लंबे समय तक सहयोग और संवेदनशीलता की जरूरत होती है। साल 2026 का विषय यानी थीम है हीलिंग थ्रू मेमोरीज, यानी स्मृतियों के माध्यम से उपचार। इस तरह श्रोताओं, हर रोज़ कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और एक और दिवस के बारे में हम बात करेंगे। श्रोताओं, उम्र सिर्फ सालों का हिसाब नहीं, ये अनुभवों, रिश्तों और जिंदगी से सीखे अनगिनत सबक का नाम है। आज बात उन खास लोगों की जिनका अनुभव हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हर साल आज के दिन को यानी 21 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 14 दिसंबर साल 1990 में घोषित किया गया था मनाने के लिए विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में। पहली बार 1 अक्टूबर साल 1991 को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया, लेकिन उसके बाद इसे 21 अगस्त को मनाने के लिए घोषित किया गया। ये अवसर हमें याद दिलाता है कि वरिष्ठ नागरिक सिर्फ उम्र का एक पड़ाव नहीं होता बल्कि अनुभव, ज्ञान और जीवन की सीख का खजाना है। परिवार और समाज के निर्माण में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण होता है। ये दिन हमें उनके साथ सम्मान, अपनापन और संवेदनशीलता का व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। साथ ही उनके स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, गरिमा और सक्रिय जीवन जैसे जो विषय हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत को भी सामने लाता है। जी श्रोताओ, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं किसी विशेष दिन उनका आदर सत्कार हो ये तो नहीं होना चाहिए। हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े लोग हर दिन हमारे सम्मान के, हमारे आदर के पात्र हैं और कोशिश कीजिए कि जितने आदर सम्मान और प्यार के साथ हम बड़ों के साथ पेश आते हैं उतने ही उसी तरीके से हम अपने छोटों के साथ भी पेश आएँ और ये जो दुनिया है एक खुशहाल दुनिया बने। कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और एक गीत आपको और सुनवाते हैं।

जी हम तो आपके साथ यूं ही बने रहेंगे और आप भी हमारे साथ बने रहिए 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी धर्मशाला पर। खबरों की बात करते हैं और खबरों का सिलसिला करते हैं शुरू। भारत और रूस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से मॉस्को में आज से 4 दिवसीय इंडिया डे फेस्टिवल शुरू हो रहा है और माफ कीजिएगा श्रोताओं, कल से ये फेस्टिवल शुरू हो चुका है, यानी 20 तारीख से चल रहा है ये फेस्टिवल और 23 अगस्त तक ये आयोजित हो रहा है। और इस आयोजित होने वाले समारोह में भारतीय संस्कृति, परंपराओं, योग, आयुर्वेद और भारतीय व्यंजनों को प्रदर्शित किया जाएगा। मॉस्को के गोस्तीनी दोर्क में आयोजित ये समारोह दोनों देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक और जनजन के संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। रूस में ईंधन की कमी के बीच भारत ने रूस को पेट्रोल की आपूर्ति की है। भारत ने लगभग 68,000 टन पेट्रोल की खेप रूस के आर्कटिक बंदरगाह पहुंची है। ये घटनाक्रम दोनों देशों के बीच बढ़ते ऊर्जा व्यापार को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में युवा नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्यवाही से जुड़े आरोपों की जाँच के लिए विशेष समिति गठित की है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की कक्षा 6 में 3 भाषा नीति लागू करने पर 1 साल की देरी पर विचार करने को कहा है ताकि स्कूलों में आवश्यक आधारभूत सुविधाएं और शिक्षक उपलब्ध कराए जा सकें। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 21 अगस्त से चलने वाला ये मॉनसून सत्र 3 सितंबर तक चलेगा। खेल समाचारों पर आते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इंग्लैंड के साथ अपना पूल मुकाबला 0-0 से ड्रॉ खेला और इसके साथ ही अगले दौर में जगह बना ली है। बैडमिंटन की बात करें तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को बॉन्ग झी यी के हाथों कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, जबकि सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। क्रिकेट में इंग्लैंड के जो रूट ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 3,000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बनकर नया रिकॉर्ड बनाया है। मौसम की बात करें श्रोताओं, तो हमारे यहाँ तो खिली हुई धूप से आज दिन की शुरुआत हुई है, लेकिन बरसात का मौसम है और बरसात हो सकती है कभी भी, तो आप भी ध्यान रखें इस बात का। घर से निकलें तो पूरे इंतजाम के साथ निकलें और उन इलाकों पर जाने से बचें जहां बरसात के दौरान भूस्खलन और ऐसी कोई घटना होने की संभावना रहती है। जी चलते चलते एक प्यारा सा गीत श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: जी आप भी हमारी श्रोता हमारी जिंदगी में हैं तो हमारी बात भी यूं ही बनी रहेगी, यूं ही जुड़ी रही आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। आज का सुबह सुहानी कार्यक्रम में बस इतना ही।
1: सुबह सुहानी।
0: जी सुबह सुहानी कार्यक्रम के बाद अब आकाशवाणी धर्मशाला से वक्त है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा का। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम गांधी चर्चा।

गांधी चर्चा में आप सुना करते हैं महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा से वाचन। आज प्रस्तुत है दूसरे भाग का 23वां अध्याय, घर की व्यवस्था। घर पहुंचने पर वह मुझे दूसरी मंजिल पर ले गया। जिस कमरे में वह साथी रहता था उसे दिखाकर बोला, इस कमरे को खोल कर देखिए। अब मैं समझ गया। मैंने कमरे का दरवाजा खटखटाया। जवाब क्यों मिलता? मैंने बहुत जोर से दरवाजा खटखटाया। दीवार कांप उठी। दरवाजा खुला। अंदर एक बदचलन औरत को देखा। मैंने उससे कहा, बहन तुम तो यहां से चली ही जाओ, अब फिर कभी इस घर में पैर न रखना। साथी से कहा, आज से तुम्हारा और मेरा संबंध समाप्त होता है। मैं खूब ठगाया और मूर्ख बना। मेरे विश्वास का यह बदला तो ना मिलना चाहिए था। साथी बिगड़ा। उसने मेरा सारा पर्दाफाश करने की धमकी दी। मेरे पास कोई छिपी चीज है ही नहीं। मैंने जो कुछ किया है उसे तुम खुशी से प्रकट करो, पर तुम्हारे साथ मेरा संबंध तो अब समाप्त हुआ। साथी और गरमाया। मैंने नीचे खड़े मुहर्रिर से कहा, तुम जाओ पुलिस सुपरिंटेंडेंट से मेरा सलाम बोलो और कहो कि मेरे एक साथी ने मुझे धोखा दिया है। मैं उसे अपने घर में रखना नहीं चाहता, फिर भी वह निकलने से इनकार करता है। मेहरबानी करके मुझे मदद भेजिए। अपराध में दीनता होती है। मेरे इतना कहने से ही साथी ढीला पड़ा। उसने माफी मांगी। सुपरिंटेंडेंट के यहां आदमी ना भेजने के लिए वह गिड़गिड़ाया और तुरंत घर छोड़कर जाना कबूल किया। उसने घर छोड़ दिया। इस घटना ने मुझे जीवन में ठीक समय पर सचेत कर दिया। यह साथी मेरे लिए मोहरूप और अवांछनीय था। इसे मैं इस घटना के बाद ही स्पष्ट रूप से देख सका। इस साथी को रखकर मैंने अच्छे काम के लिए बुरे साधन को पसंद किया था। बबूल के पेड़ से आम की आशा रखी थी। साथी का चाल चलन अच्छा नहीं था, फिर भी मैंने मान लिया था कि वह मेरे प्रति वफादार है। उसे सुधारने का प्रयत्न करते हुए मैं स्वयं लगभग गंदगी में सन गया था। मैंने अपने हितैषियों की सलाह का अनादर किया था। मोह ने मुझे बिल्कुल अंधा बना दिया था। यदि इस दुर्घटना से मेरी आंखें ना खुली होती, मुझे सत्य का पता ना चलता, तो संभव है कि जो स्वार्पण मैं कर सका हूं उसे करने में कभी समर्थ ना हो पाता। मेरी सेवा सदा अधूरी रहती, क्योंकि वह साथी मेरी प्रगति को अवश्य रोकता। अपना बहुत सा समय मुझे उसके लिए देना पड़ता। उसमें मुझको अंधकार में रखने और गलत रास्ते ले जाने की शक्ति थी, पर जिसे राम रखे उसे कौन चखे। मेरी निष्ठा शुद्ध थी, इसलिए अपनी गलतियों के बावजूद मैं बच गया और मेरे पहले अनुभव ने मुझे सावधान कर दिया। उस रसोइये को शायद भगवान ने मेरे पास भेजा था। वह रसोई बनाना नहीं जानता था, इसलिए वह मेरे यहां रह ना सकता था, पर उसके आए बिना दूसरा कोई मुझे जागृत नहीं कर सकता था। वह स्त्री मेरे घर में पहली ही बार आई हो सो बात नहीं, पर इस रसोई जितनी हिम्मत दूसरों को हो ही कैसी सकती थी। इस साथी के प्रति

मेरे बेहद विश्वास से सब लोग परिचित थे। इतनी सेवा करके रसोइये ने तो उसी दिन और उसी क्षण जाने की इजाजत चाही। वह बोला, मैं आपके घर में नहीं रह सकता, आप भोले भंडारी ठहरे, यहाँ मेरा काम नहीं। मैंने आग्रह नहीं किया, उक्त मुहर्रिर पर शक पैदा कराने वाला यह साथी ही था। यह बात मुझे अब मालूम हुई। उसके साथ हुए अन्याय को मिटाने का मैंने बहुत प्रयत्न किया, पर मैं उसे पूरी तरह संतुष्ट ना कर सका। मेरे लिए यह सदा ही दुख की बात रही। फूटे बर्तन को जितना ही पक्का क्यों ना जोड़ा जाए, वह जोड़ा हुआ ही कहलाएगा, संपूर्ण कभी नहीं होगा।

हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए ये देश गान।

0: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ।
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र 2 छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया।
4: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी

0: साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाई के साथ सुरेखा जोशी।
1: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, नीट या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थाई उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: NTA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। NTA ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। NTA ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न ₹200 वापस किए जाते हैं। NTA ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है, न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक

0: चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
2: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले MV लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
3: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पथिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
0: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है, 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदलेगी राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है, लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे।

0: वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है। सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है। चीन में कल से रोबोट ओलंपिक, बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है। कैंसर के टीके से एआई तक, दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें, आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्धजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोकसत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टर्डम में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद, द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi chairs third high-level meeting with secretaries to Government of India, urges to break silos and adopt long-term vision for country's future. Union Home Minister Amit Shah criticizes Congress Working Committee's decision to sing only two stanzas of Vande Mataram instead of full rendition. India to host 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune today, BRICS Tourism Ministers to meet in Jaipur. National Testing Agency says Answer Key Challenge system is designed to be fair to all students, rejects concerns of being expensive. US imposes fresh sanctions on Hezbollah, citing its ties to Iranian government. And in hockey, Indian women's team to take on Netherlands in the first match of second pool phase at FIH World Cup in Amstelveen today. Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. During the meeting, the Prime Minister urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. More from our correspondent.
3: Calling for greater interoperability and effective use of data, Mr. Modi noted that data is a national asset and a resource for the future. The Prime Minister added that silos are not merely an organizational problem, but also a problem of mindset. He further urged officials to work with a spirit of belongingness, highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers. Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities, and young people to bring fresh perspectives in policy making. He also emphasized the need to further strengthen the country's defense industry and make it more competitive at global level, citing examples of experiences of the COVID-19 pandemic and the West Asia crisis. He said that such coordination mechanisms should become a natural part of the government's work culture. Mr. Modi also called for effective use of artificial intelligence

लो जी, शुरुआत हो गई है और शुरुआत में ही हमने बता दिया कि आज जो गाने सुहाने प्रोग्राम है वो सिर्फ सुना नहीं जाएगा, साथ साथ इन पर गानों पर झूमा भी जाएगा। वैसे कुछ गाने ही ऐसे होते हैं जिनको जब हम सुनते हैं तो डांस फ्लोर की ज़रूरत हमें महसूस नहीं होती। किचन हो, बालकनी हो, कार हो या हम बैठे हों ऑफिस की कुर्सी पर, बीट आई नहीं कि पैर थिरकने लगते हैं और पैर थिरके तो समझ लो कि गीत आपको पसंद आ रहे हैं।

0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price, starting from just 9.67 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 31st August.
1: Own the style icon at an EMI of just 899 rupees per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbag as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: Step into the world of Nexa.
1: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like 360 degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags.
1: And now it's yours at an effective price of just 5.79 lakh rupees.
0: Yes, rupees 5.79 lakh. Valid till 31st August.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the bold Baleno today.
0: Hurry, offer still stocks last. TNC apply.
2: Nexa.
4: जी प्रोग्राम गाने सुहाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है। साथ ही साथ आप सुन रहे हैं प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी हमें। दोस्तों कुछ गाने सुनने के लिए होते हैं और कुछ गाने माहौल बदलने के लिए। अब ये वाला अगला गीत जो आने वाला है वो भी शायद आपके लिए दिन का माहौल कुछ बदल दे। कोशिश कर रहे हैं आज का दिन आपका खुशनुमा हो और आप इन बीट्स पर थिरकें।
5: फिक्र ही गम का पापा है, अपना तमस्या चापा है, फिक्र करें फिक्र।

0: and safety.
1: Equipped with features like 360 degree camera, heads up display and safety through 6 airbags.
0: And now it's yours at an effective price of just 5.79 lakh rupees.
1: Yes, rupees 5.79 lakh. Valid till 31st August.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the bold Baleno today.
1: Hurry, offer still stocks last. TNC apply.
2: Nexa.
3: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
4: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
5: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
4: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
5: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
4: जल्दी विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
6: तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गाने सुहाने आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। अगर अभी तक आपकी सुबह स्लो मोशन में चल रही है तो जी हाँ, सोचिए मत, जुड़ जाइए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ, क्योंकि आज हम ऐसे गीत प्ले कर रहे हैं जिन्हें सुनकर आप नाचने पर, थोड़ा झूमने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसी कोशिश है हमारी और उम्मीद करते हैं कामयाब भी हम होंगे।

0: गाने सुहाने प्रोग्राम श्रोताओं, आज इस प्रोग्राम का मिशन बिल्कुल सिंपल है, आपको रेडियो के साथ बनाए रखना और आपके चेहरे पर स्माइल बनाए रखना। तो चलिए अगली बीट को भी मौका देते हैं अपना कमाल दिखाने का, और आप इस गीत के साथ नाचिए, झूमिए, गाइए और इंजॉय कीजिए प्रोग्राम गाने सुहाने।
1: धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

तो दोस्तों म्यूजिक का आज का ये मस्ती का म्यूजिकल सफर यहीं पर रुकता है, लेकिन आपकी मस्ती बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। जाते जाते बस इतना ही कहेंगे, अच्छे गीत सुनते रहिए, अच्छे ख्यालात चुनते रहिए, क्योंकि अच्छी पसंद ही जिंदगी को खास बनाती है। सो कीप स्माइलिंग समहाउ, बाय फॉर नाउ।

0: कार्यक्रम जनवाणी में सभी श्रोताओं का स्वागत है। और श्रोताओं को पता है आज शुक्रवार है और आज के दिन 9 बजे हम कार्यक्रम जनवाणी के साथ हाजिर होते हैं और कुछ ऐसे मुद्दे इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं जिनके विषय में हम श्रोताओं को जागरूक करना चाहते हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही विषय हम श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं। श्रोताओं, आज हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मोबाइल और इंटरनेट की स्क्रीन पर सिमट आया है। घर बैठे बैंकिंग, खरीदारी, पढ़ाई, बातचीत, जिंदगी आसान हुई है और जिंदगी की रफ्तार बढ़ी है। लेकिन इसी डिजिटल दुनिया में कुछ ऐसे खतरे भी हैं जो दिखाई नहीं देते और अक्सर हमारी एक छोटी सी लापरवाही उसकी वजह से हमें नुकसान होता है और हमारी छोटी सी लापरवाही का कुछ लोग फायदा उठाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि तकनीक के साथ हमारी जागरूकता भी उतनी ही मजबूत हो। जनवाणी कार्यक्रम है, जन समस्याओं को आवाज देने वाला ये मंच है और आज इसी मंच पर बात होगी एक ऐसे मुद्दे की जिससे आज शायद कोई ही अछूता हो। जी हाँ, आज बात होगी साइबर अपराध के बारे में और इस विषय में जानकारी श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में उपस्थित हैं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तराखंड धर्मशाला से कुलदीप कुमार जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। सबसे पहले सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।
0: जी कुलदीप जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत और हमारी तरफ से आपको नमस्कार। और सबसे पहले एक प्रश्न आपसे पूछेंगे, श्रोताओं को भी ये जानना बेहद ही ज़रूरी है कि साइबर अपराध होता क्या है और आज के समय में ये कितना गंभीर खतरा जो है वो समाज के लिए, हम लोगों के लिए बन चुका है।
1: सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी धर्मशाला के सभी श्रोताओं

0: आपको नमस्कार करता हूँ। और मैम, आपके प्रश्न जो है वो बहुत ही जायज़ है,
1: जी
0: लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, साइबर अपराध को किसी कानून में परिभाषित नहीं किया गया है।
1: जी
0: ये एक बहुत ही विस्तृत क्राइम है और इसमें इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन,

0: इस तरह से साइबर क्राइम जो है अब रिसेंट जो ट्रेंड है
1: जी
0: उसमें साइबर क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, और जो आम क्राइम है उसके साथ भी साइबर के बहुत सारे जो है वो लक्षण देखे जा रहे हैं। हर एक क्राइम में साइबर का कुछ ना कुछ
1: जी
0: चीज़
1: जी
0: जुड़ी होती है।
1: श्रोताओं को बता दें, जनवाणी कार्यक्रम है और लाइव फोन इन यानी सजीव फोन इन ये कार्यक्रम है, और इस विषय से संबंधित कोई भी जिज्ञासा श्रोताओं में अगर है तो वो कॉल कर सकते हैं और प्रश्न अपना जो है वो पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा जो है वो शांत कर सकते हैं। 01892-224391 यानी 01892-224391 ये स्टूडियोज़ का नंबर है आकाशवाणी धर्मशाला का, और फ़ोन के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऐसे आगे जानना चाहेंगे किस तरह की साइबर क्राइम की गतिविधियां आजकल ज़्यादा हो रही है, ऐसे केसेस आपके पास ज़्यादा देखने को मिलते हैं।
0: साइबर क्रिमिनल आजकल साइबर क्रिमिनल जो है वो जनता के भरोसे का, जनता के डर का, जनता के लालच का फ़ायदा उठाते हैं। ये
1: जी
0: एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है जिसमें क्रिमिनल जो है व्यक्तियों के डर और उनके लालच का फ़ायदा उठाते
1: फायदा
0: हैं।
1: उठा रहे हैं।
0: जनरली लोग जो है आपको डराते हैं, फ़ोन पे डराते हैं, किसी तरह से डराते हैं, वो आपको डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताते हैं। ये एक तरह का क्राइम है जिसमें कि क्रिमिनल ये कहते हैं कि आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं, और वो पुलिस वाले या कस्टम अधिकारी, आईडी, सीबीआई, इस तरह
1: जी
0: के
1: जी
0: अधिकारी बन के आपको कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं,
1: जी
0: और उससे आपके मन में डर बैठ जाता है,
1: जी
0: और उसके चलते आप कुछ ना कुछ
1: गलती करते हैं
0: गलती कर जाते हैं और पैसे जो उनको ट्रांसफ़र कर
1: जिसका
0: देते हैं।
1: खामियाजा भुगतना पड़ता
0: जी
1: है।
0: जी
1: आप बात कर रहे हैं कि किसी उन्हें बहलाया फुसलाया जाता है किसी भी तरह
0: बिल्कुल
1: से, तो एक शब्द हम सुनते हैं हमारे यहाँ से, एक मतलब जैसे हम विज्ञापन वगैरह चलाते हैं उसमें भी कहा जाता है डिजिटल अरेस्ट, RBI की तरफ से एक है, तो डिजिटल अरेस्ट क्या है और साधारण शब्दों में जरा हमारे श्रोताओं को बताइए कि और इससे कैसे जो है लोग बच सकते हैं डिजिटल अरेस्ट से।
0: डिजिटल अरेस्ट कोई कानूनी अरेस्ट नहीं है।
1: जी
0: ये एक तरह से आपको धोखा देने के लिए जो डिजिटल साइबर क्रिमिनल हैं उनके द्वारा आपको धोखा देने के लिए एक तरीका इस्तेमाल किया जाता है।
1: जाल बुना जाता
0: हाँ,
1: है।
0: उसमें आपको डर डर के द्वारा आपके पैसे हथियाए जाते हैं।
1: जी
0: वो लोग आपको किसी माध्यम से वीडियो कॉल करते हैं, और कस्टम अधिकारी, पुलिस
1: जी
0: अधिकारी, आईडी, सीबीआई, इस तरह के अधिकारी बनकर आपको डराते हैं, और ना केवल डराते हैं बल्कि आपसे पैसे भी ऐंठते हैं ताकि आप उस क्राइम से बच जाते हैं। अधिकतर लोग इस बात को बताते नहीं हैं, डर के मारे में नहीं बताते, वो बताते नहीं हैं, हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में नहीं आते, जनरल पुलिस स्टेशन में कहीं भी कोई कंप्लेंट नहीं करते, और डर के मारे, उस क्राइम के डर के कारण, क्योंकि जो अपराध है उससे प्रत्येक व्यक्ति डरता है, उसके डर के कारण जो है लोग बहुत सारे पैसे उनको दे देते हैं ताकि वो उस अपराध से बच सकें जो उन्होंने किया भी नहीं है।
1: जी इस बात में भी सच्चाई है या नहीं आप हमें बताएं कि जैसे कोई कम पढ़ा लिखा इंसान है उसके साथ किसी तरह की साइबर ठगी होती है तो वो इंसान शायद हिम्मत रखे, लेकिन जो पढ़ा लिखा इंसान है या बहुत अवेयर है उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो वो ऐसा कहना सच है कि वो कोशिश करता है कि मैं किसी को ना बताऊं कि मेरे साथ ऐसा
0: बिल्कुल
1: हो गया है।
0: बिल्कुल ऐसा हो रहा है सर।
1: जी बिल्कुल। तो आगे हम जानना चाहेंगे सर, साइबर क्राइम जब होता है किसी तरह का किसी व्यक्ति के साथ तो शिकायत दर्ज करनी है अगर हमें, तो उसके लिए क्या सबसे आसान तरीका है, किस तरीके से की जा सकती है, इस सवाल का जवाब हम बाद में लेंगे। एक श्रोता हमसे जुड़ने की कोशिश में है, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। हेलो, हाँ जी
2: हेलो
1: नमस्ते जी, नाम बताएं अपना।
2: जी, मैं अविनाश बोल रहा हूँ त्रिपुरा से।
1: जी अपना प्रश्न कीजिए।
2: जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और लोग ठगी के बारे में बचने के लिए ऐसा मतलब कि हम कैसे समझें कि ये ठगी मतलब कि वो फर्जी कॉल आ रहे हैं हमें गुमराह करने के लिए, पैसा ऐंठने के लिए, मतलब कि ऐसा कोई इसमें ट्रिक होगा?
1: जी ये कह रहे हैं कि हमें कैसे पता चले कि ये कॉल फर्जी है और हम कैसे अवेयर रहें इस बारे में।
0: और जब भी कोई कॉल आपको आती है जिसमें कि आपको किसी निवेश की बात करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और आपको बहुत सारा रिटर्न मिलेगा, 200%, 300% या मल्टी टाइम्स रिटर्न आपको मिलेगा, तो आप सावधान हो जाइए। यदि आपको इस तरह की कॉल आती है कि आप जो आपने कोई क्राइम कर दिया है और आपने कुछ नहीं किया है और आपको डराया जा रहा है कि आपने कुछ गड़बड़ की है, तो आप अलर्ट हो जाइए। बेसिकली सावधानी और सतर्कता

0: जागरूकता ये साइबर क्राइम से बचने के साधन है। यदि कोई आपको इस तरीके से फ़ोन कर रहा है एआई का इस्तेमाल करके आवाज़ बदल के, वो कई तरह के इस तरीके इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि आपके जो रिश्तेदारी है या आपके जान पहचान के लोग हैं उनकी आवाज़ में लोग बात करते हैं कि वो किसी मुश्किल में फंस गए हैं, पैसे आप दे दें, तो आप ज़रूर कन्फर्म कीजिए, उन लोगों को फ़ोन करके कन्फर्म कीजिए, उसके बाद ही पैसे ट्रांसफ़र करें, अदरवाइज़ आप किसी साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं। तो सावधानी और सतर्कता, ये दो ही तरीके हैं जिससे कि आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। आप तुरंत किसी भी कॉल का जवाब या कोई ट्रांजेक्शन तुरंत ना कर दें कॉल का, कॉल सुनने के बाद, तो इस तरह से आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं।
1: जी सर, धन्यवाद।
2: जी धन्यवाद, आपने कॉल किया और श्रोताओं के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और कोशिश कर रहे हैं श्रोता हमसे जुड़ने का। एक नंबर साइबर हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है 1930, तो क्या माफ कीजिएगा एक और कॉल जो है वो बीच में है। हेलो हेलो जी, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूं, उससे पहले हम बात कर रहे थे कि ये अपराध जो अगर होता है तो शिकायत दर्ज करने का सबसे आसान क्या तरीका है।
0: यदि आप किसी फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार हो गए हैं
2: जी,
0: तो हमारे पास एक हेल्पलाइन नंबर है 1930
2: जी।
0: ये नंबर जो है वो नेशनल लेवल पे साइबर शिकायतों को जो है दर्ज करता है। यदि आप किसी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार हो गए हैं तो आप तुरंत इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि जितने भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हैं, जितने बैंक के लोग हैं, वो सारे इस नंबर से जुड़े होते हैं। जैसे ही आपकी शिकायत दर्ज होती है, यदि आपने गलती से कोई ट्रांजेक्शन कर भी दी गई है
2: जी,
0: तो आपकी ट्रांजेक्शन, आपका जो पैसा है वो अकाउंट में होल्ड हो जाता है और वो आपको वापस भी मिल सकता है
2: जी।
0: लेकिन इसकी वापसी की संभावनाएं जो हैं वो लीगली तय होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत जो है वो पैसा वापस मिल जाता है, लेकिन आपका पैसा जो है वो सुरक्षित हो जाता है और उसकी वापसी की संभावनाएं होती हैं
2: जी। एक और कॉलर है। हेलो
3: हेलो नमस्कार।
2: हाँ जी नमस्ते जी, प्रश्न पूछिए अपना।
3: मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से।
2: जी राकेश जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।
3: जी मेरा सवाल ये है कि जैसे दिव्यांग व्यक्ति हैं वो भी स्मार्टफोन चलाने लग गए, अगर उनके साथ जो है साइबर क्राइम हो जाता है तो उनको किस तरह से बचना चाहिए, खासकर उनके लिए मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ क्योंकि हम भी उस कैटेगरी में आते हैं।
2: दिव्यांगजनों की बात कर रहे हैं जी।
0: साइबर क्राइम से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसके संबंध में जागरूक हो जाएं। जागरूकता के साथ साथ आप सतर्क रहें और सावधान रहें, ये जो मूल तरीके हैं। यदि आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आप साइबर क्राइम के बारे में अपडेट रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे, तो आप क्राइम के तरीकों के बारे में जान पाएंगे और साथ में उससे बच भी पाएंगे। मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा, जो आपकी पर्सनल जानकारी है,
3: जैसे कि अगर गलती से अगर हो गया, जैसे कि हमारे से गलती से एसएमएस में चला गया क्राइम, तो फिर इस तरह से हमें क्या करना चाहिए?
0: आपसे यदि गलती से कुछ हो जाता है, यदि आपने कहीं ट्रांजेक्शन कर दी है कोई, तो यदि तो आपसे आपने ट्रांजेक्शन कर दी है तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं 1930 के ऊपर, और साथ में यदि आपसे कोई गलती हो गई है, आपकी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो क्योंकि आपकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, आपका कोई मोटिव नहीं है क्राइम करने का, और आपसी गलती से कोई क्राइम हो गया है, तो लॉ भी इसमें जो है आपको सुरक्षा देता है।
3: जी
2: संतुष्ट जी, आप संतुष्ट होंगे अपने आंसर से, हम उम्मीद करते हैं। सर ये प्रश्न इनका था और आपने कहा कि जैसे जो कंप्लेन करना चाहता है वो इस डर से कंप्लेन नहीं कर पाता कि शायद मुझ पर भी कुछ एक्शन हो, लेकिन आप कह रहे हैं कि जिसके साथ कुछ हुआ है उसको किसी तरह का कोई पुलिस के द्वारा वो नहीं किया जाता, जिसकी गलती है उसी को उसके लिए दंड भुगतना है। एक और कॉलर इस बीच जुड़ने की कोशिश में है। हेलो
4: हाँ जी नमस्कार मैडम।
2: हाँ जी नमस्ते जी, नाम बता दें।
4: लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से।
2: जी लोकेंद्र जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप।
4: मेरा प्रश्न ये रहता है मैडम जी कि इतना लोगों को जागरूक करते हैं, रेडियो के माध्यम से भी करते हैं, टीवी और समाचार पत्र के माध्यम से भी करते हैं जागरूक के, ये जो साइबर ठगी हो जाती है व्यक्ति के साथ में, तो एक शासन ने एक नंबर दिया है

0: अगर किसी के साथ में साइबर ठगी हो जाती है तो वो इस पे कंप्लेंट कर सकता है। तो वो कंप्लेंट जितनी जल्दी करेंगे उतना तो अच्छा रहेगा ही सर। पर भी इतना जागरूक करने के बावजूद भी लोग इनके झांसे में फंस जाते हैं। कोई ऐसी साइबर सुरक्षा मोबाइल के अंदर कोई ऐसा होना चाहिए, या बैंक नेट बैंकिंग का कुछ ऐसा होना चाहिए प्रबंध कि जिससे साइबर सुरक्षा से कस्टमर बचा जा सके।
1: जी, इनका कहना है कि नंबर के अलावा और ऐसा क्या प्रोसीजर हो सकता है कि हमारे फ़ोन पे ऐसा कुछ हो ना?
2: यदि किसी के साथ भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है
1: जी
2: और वो 1930 के ऊपर नहीं जाता है, वैसे तो किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, उनको तुरंत कंप्लेंट करनी चाहिए। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो 1 घंटे का पीरियड है वो गोल्डन पीरियड है। यदि आप
0: जी
2: तुरंत कंप्लेंट कर देते हो तो साथ में आपने क्या करना है कि कंप्लेंट के साथ जो आपके जो पर्टिकुलर हैं, आप ट्रांजैक्शन आईडी है, आपने किस अकाउंट से ट्रांजेक्ट की है, उसका उसके स्क्रीनशॉट, उसकी कुछ जानकारियां जो आप ज़रूर सुरक्षित करें, जिससे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आपको पुलिस को फ़ायदा होता है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है आपको इस नुकसान से बचा सकती हैं। दूसरी बात है कि यदि आप तुरंत बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं, यदि आपकी कोई ट्रांजेक्शन हो गई है, यदि आप तुरंत बैंक से संपर्क करें तो बैंक भी जो है वो आपकी ट्रांजेक्शन को होल्ड लगा सकता है और आपके पैसे जो है वो साइबर क्रिमिनल के हाथों में जाने से बच सकते हैं।
0: जी जी जी धन्यवाद। और सर जी, मैंने देखा है कभी कभी बैंक में भी, जैसे कोई सीनियर सिटीजन रहता है, उनके साथ में वीडियो माध्यम से उनको वो जो वीडियो अरेस्ट कर, डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने एक बार समाचार में भी देखा था कि कुछ ऐसे बुजुर्ग सीनियर सिटीजन हैं जो बैंक में घबरा कर जाते हैं, तो उनको बैंक वाली उस झांप लेते हैं, और कभी कभी बैंक अपनी तरफ से भी की मदद करते हैं।
2: जी, डिजिटल अरेस्ट से घबराने की आवश्यकता नहीं है। डिजिटल अरेस्ट एक झूठ है, जो कि एक डर, झूठी झूठा डर आपके मन में पैदा किया जाता है और जिसके तहत लोग जो है वो घबरा जाते हैं और घबराहट के कारण वो पैसा जो है वो दे देते हैं साइबर क्रिमिनल को। तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप तुरंत कंप्लेंट करें या आप उनको कहें कि ये मैं नहीं जानता इस चीज़ विषय में, मेरे से रिलेटेड ऐसी चीज़ नहीं है, तो आप उनसे कोई
0: एक बार
2: संपर्क फर्दर ना
0: एक
2: रखें।
0: जी एक बार मैंने एक न्यूज़ में,
1: आपकी आवाज़ कट रही है। हेलो,
0: हेलो,
1: हाँ जी, आपकी आवाज़ थोड़ा ब्रेक हो रही है, आप एक जगह।
0: हाँ
1: जी
0: मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार मैंने एक न्यूज़ देखी थी टीवी समाचार में भी, उसके अंदर भी एक कार्यक्रम आता है साइबर क्राइम से बचने के लिए। उसमें उन्होंने, बैंक वालों ने भी उस सीनियर सिटीजन जो व्यक्ति थे माँ साहब, उनकी मदद की थी, क्योंकि वो घबरा कर जो बैंक में गई, और वो उन्होंने पूरा जितना भी उनकी एफडी वगैरह थी उसको वो उन्होंने डेबिट कराने की कोशिश की थी कि मुझे ये सारा पेमेंट आज अभी हाल ही चाहिए। पर उस समय में बैंक व्यक्ति ने उनको भांप लिया कि इतने व्यक्ति जो माँ साहब हैं अकेले आए हैं एक तो बैंक में, और इतनी सारी एफडी के पैसे एक साथ कैश अमाउंट मांग रहे हैं, या डिजिटल ट्रांसफर मतलब ये जो बोलते हैं ना आरटीजीएस करवाने के लिए मांग रहे हैं अदर अदर अकाउंट में। तो उन्होंने उस चीज को देखा कि ये अकाउंट नंबर तो बाहर का दिख रहा है, मतलब जो सर्च करा ना अकाउंट नंबर, तो उनको लगा कि ये बाहर का अकाउंट नंबर है, तो इसपे माँ साहब इतना पैसा क्यों आरटीजीएस करवा रही है। तो उन्होंने उस चीज को मतलब लगा उनको कि ये हो सकता है झूठ हो, इसलिए वो मैडम को, उन्होंने माँ साहब को बोल दिया कि ये अकाउंट नंबर गलत है, इस कारण से वो माँ साहब का इतना पैसा आरटीजीएस होने से बच गया। इसलिए मैं बैंक को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैडम।
1: जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बैंक्स भी जो हैं वो बिल्कुल अवेयर हैं इस चीज़ के लिए, और ऐसी घटनाएं यदाकदा होती रहती हैं, तो उनको ज़्यादा, हमसे ज़्यादा उनको ज्ञान है, तो वो ऐसी चीज़ों पर कई बार हमें समझा भी देते हैं और हमें रोक भी लेते हैं ऐसा कुछ करने से। उम्मीद है आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। कॉल के लिए शुक्रिया जी।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, कार्यक्रम में अब हम प्रश्न लेंगे, लेकिन फिलहाल छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे और उसके बाद प्रादेशिक समाचारों का वक्त है, उसके बाद फिर हम श्रोताओं के साथ जुड़ेंगे।
3: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
4: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका

0: साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी
3: कार्यक्रम जनवाणी के साथ हम श्रोताओं के साथ फिर जुड़ेंगे 9:30 पर। फिलहाल हम आपके लिए चलेंगे कुछ ही पलों में आकाशवाणी शिमला की स्टूडियोज, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
5: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
6: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का किया आग्रह। प्रदेश विधानसभा का मौजूद सत्र आज से शिमला में। सदन में गूंजेंगे 1000 से ज्यादा सवाल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मॉनसून सत्र को लेकर सत्तापक्ष कांग्रेस और विपक्षी भाजपा ने विधायक दल की बैठक आयोजित कर बनाई रणनीति। लाहौल स्पीति का राज्य स्तरीय 3 दिवसीय पौरी मेला आज से होगा शुरू। और चंबा की मणिमहेश यात्रा के लिए प्रशासन ने तैयारियां की तेज। यात्रा 4 सितंबर से होगी शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अवसंरचना और संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों के से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया। 14वीं विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे आरंभ होगी। 3 सितंबर तक चलने वाले इस मॉनसून सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें होगी। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज सदन में पूर्व विधायक स्वर्गीय विजेंद्र सिंह और रामचंद भाटिया के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए जाएंगे। सत्र के लिए विधायकों की ओर से कुल 1036 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। इनमें 787 तारांकित और 249 अतारांकित प्रश्न हैं। सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है और इस बार सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है। मॉनसून सत्र के दौरान शिमला में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। 750 पुलिस कर्मियों और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। विधानसभा परिसर और इसके आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षा की दृष्टि से 3 मुख्य सेक्टरों और विभिन्न उप सेक्टरों में बांटा गया है। सभी सेक्टरों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के साथ बहुस्तरीय जांच और निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: इस बीच विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले कल देर शाम भाजपा और कांग्रेस विधायक दल की शिमला में महत्वपूर्ण बैठकें हुई। भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई, तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक कर सरकार का रोडमैप तैयार किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा कि विपक्ष सत्र के लिए

0: तैयारी के साथ आए, जनहित के मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहली बार 10 दिन का सत्र रखा है, इससे पहले मॉनसून सत्र इतना लंबा नहीं होता था। विपक्ष को हंगामा या वॉकआउट करने के बजाय सदन में बात रखनी चाहिए। वहीं भाजपा विधायक दल की बैठक में सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर घेरने की रणनीति बनाई है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा विधायक की बैठक में कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम के दो ही छंद गाने के निर्णय को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया है।
1: इस बैठक में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जो वंदे मातरम गीत के दो पैरा गाने का ही निर्णय हुआ है, उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल प्रभावी रूप से अपनी विपक्ष की भूमिका अदा करेगा। सदन के अंदर जो भी हमने चर्चाएं दी हैं अनेक नियमों के तहत, उसके लेकर हम पूरे आंकड़ों के साथ, पूरे लॉजिक से साथ अपनी बात सदन के अंदर रखेंगे और सरकार को हर फ्रंट पर घेरने की कोशिश करेंगे।
0: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश की जनता से राष्ट्रीय जनगणना में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने लोकभवन शिमला में जनगणना 2027 के दूसरे चरण के तहत अपनी स्वगणना प्रक्रिया पूरी की। उन्होंने कहा कि 1 से 30 सितंबर तक प्रदेश के बर्फीले क्षेत्रों में जनगणना की जाएगी और बर्फ वाले क्षेत्रों के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 17 से 31 अगस्त तक डिजिटल स्वगणना की विशेष सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। राज्यपाल ने लोगों से इस आधिकारिक स्वगणना सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने और अपने व अपने परिवार से संबंधित पूरी और सही जानकारी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों में स्वास्थ्य और शिक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये जानकारी मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाओं और उल्लेखनीय योगदान के लिए 13 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को हिमाचल रत्न पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एम्स स्तर की रोबोटिक सर्जरी सुविधा शुरू की है, जिसे हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में आधुनिक सर्जरी के लिए एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में 3 टेस्ला MRI मशीन स्थापित की गई हैं। सुक्खू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 6 माह में MRI, CT स्कैन और एक्सरे की प्रतीक्षा सूची को समाप्त करना है। इसके अलावा अगले 4 माह में सभी मेडिकल कॉलेजों में ऑटोमेटेड लैब स्थापित की जाएगी, जिससे एक ही रक्त के नमूने से कई प्रकार की जांच संभव हो सकेगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लाहौल स्पीति का राज्य स्तरीय पौरी मेला आज से त्रिलोकीनाथ में शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय यह मेला 23 अगस्त तक पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ आयोजित किया जाएगा। अधिक ब्यूरो के साथ हमारे जिला संवाददाता।
2: लाहौल स्पीति के धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और सदियों पुरानी लोक परंपराओं का प्रतीक राज्य स्तरीय पौरी मेला 2026 आज से त्रिलोकनाथ में शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय ये मेला 23 अगस्त तक पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ आयोजित किया जाएगा। मेले में सप्तधारा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा, खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक संध्याएं मुख्य आकर्षण रहेंगी। त्रिलोकनाथ मंदिर हिंदू और बौद्ध दोनों समुदायों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। अंतिम दिन मणिमहेश की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का जत्था त्रिलोकनाथ में एकत्रित होकर सामूहिक रूप से रवाना होगा। इस धार्मिक दृश्य को देखने के लिए हजारों श्रद्धालुओं के उमड़ने की उम्मीद है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से सुरेंद्र कुमार।
0: चंबा की मणिमहेश यात्रा के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से राधा अष्टमी तक चलने वाली यह यात्रा इस वर्ष 4 सितंबर से शुरू होकर 19 सितंबर तक चलेगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। रोजाना अधिकतम 5,000 श्रद्धालुओं के पंजीकरण का निर्णय लिया गया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
3: चंबा के पवित्र मणिमहेश धाम में आस्था के बड़े पर्व के लिए प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। हालांकि चंबा भरमौर और राष्ट्रीय राजमार्ग के खराब हिस्सों को दुरुस्त करने का काम जारी है, ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी ना हो। वहीं पिछले वर्ष भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए मणिमहेश पैदल ट्रैक को भी यात्रा शुरू होने से पहले दुरुस्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

0: प्रशासन का प्रयास है कि यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और आपात स्थिति से निपटने के लिए भी पर्याप्त इंतजाम रहें। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
1: वाहिनी स्कॉलरशिप के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिमला में कल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हर वर्ष 80 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही और इसमें 10 विद्यार्थियों की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव भी शामिल है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि अब तक इस योजना से 348 विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस योजना के प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा जिला के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश होने की संभावना है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन से 135 सड़कें अवरुद्ध है, जबकि 79 पेयजल योजना और 22 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हैं। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर पंजाब केसरी की सुर्खी है, विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से हंगामापूर्ण रहने के आसार। दिव्य हिमाचल के शब्द है, 3 सितंबर तक कुल 10 बैठकें, पहले दिन ही टकराव के आसार। हिमाचल दस्तक लिखता है, सीएम का आह्वान, एकजुट होकर विपक्ष के सवालों का तथ्यों के साथ जवाब दे विधायक। दैनिक जागरण की खबर है, हिमाचल में एनालॉग पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का किया आग्रह। प्रदेश विधानसभा का मौसम सत्र आज से शिमला में, सदन में गूंजेंगे 1000 से ज्यादा सवाल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मौसम सत्र को लेकर सत्तापक्ष कांग्रेस और विपक्षी भाजपा ने विधायक दल की बैठक आयोजित कर बनाई रणनीति। लाहौल स्पीति का राज्य स्तरीय 3 दिवसीय पौरी मेला आज से होगा शुरू और चंबा की मणिमहेश यात्रा के लिए प्रशासन ने तैयारियां की तेज। यात्रा 4 सितंबर से होगी शुरू। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
3: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
2: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
3: पंचायत सिफारिश साथ लाए, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ और श्रोता हमें सुन सकते हैं प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी। जनवाणी कार्यक्रम में श्रोताओं आज बात हो रही है साइबर अपराध, साइबर क्राइम के बारे में और हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियोज में उपस्थित हैं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तरीखंड धर्मशाला से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुलदीप कुमार जी। सर, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है।
5: थैंक यू मैम।
4: कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे पहले श्रोताओं को बता दें सजीव फोन इन यानी लाइव फोन इन ये प्रोग्राम है और 01892224391 इस टेलीफोन नंबर के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और विशेष संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं। सर, एक सवाल है, बच्चों और युवाओं का जो है वो आजकल बहुत रुझान है सोशल मीडिया की तरफ, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, साइबर बुलिंग है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग बच्चे जिस तरह से कर रहे हैं या कुछ प्रोस्पेक्टस में तो अच्छा भी है लेकिन कहीं कहीं तो ज़्यादा इसके नुकसान भी देखे जा रहे हैं, तो अभिभावकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो बच्चों को इन चीज़ों से दूर रख सकते हैं?
5: आजकल जो समाज में जो समय चला हुआ है
4: जी,
5: इसमें मोबाइल फ़ोन बहुत ही आवश्यक भी हो गया है
4: जी।
5: मेरे अनुसार बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे हैं, ऑनलाइन स्कूलों से भी जुड़ रहे हैं, जब आपदा आती है तो
4: जी,
5: वो ऑनलाइन पढ़ाई भी करते हैं। बहुत सारे बच्चे फ़ोन पे कोचिंग भी ले रहे हैं इस वक्त, कई सारी जानकारियां हमें फ़ोन से मिलती हैं। अब बच्चे जो बचपन से ही फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक तरह से एडिक्शन की स्थिति में पहुंच चुके हैं। कई बार आप फ़ोन बच्चों से तुरंत छीन लेते हो तो उससे वो कई बार घबरा कर

0: गुस्से में कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे आपको बहुत ही बुरा भी लगेगा, लाइफ में आपको बहुत ही रिग्रेट फील होगा।
1: जी
0: जो फ़ोन है, फ़ोन हमारा दुश्मन नहीं है, हमारी सहायता के लिए बना है।
1: जी बिल्कुल
0: फ़ोन हमारा दास है, हम इसको अपना मास्टर ना बनाएं।
1: जी बिल्कुल
0: यदि हम इसको अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारी लाइफ बेहतर बनेगी,
1: जी
0: और यदि इसको एज ए एडिक्शन इसको शुरू करना इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और इसके दास बन जाएंगे, तो आजकल जितने भी एल्गोरिदम बने हैं वो आपको उलझाने के लिए बने हैं।
1: जी
0: मीन्स जो चीज़ आप एक बार फ़ोन से सर्च कर लेते हो, वही चीज़ आपके मतलब की चीज़, आपके इंटरेस्ट की चीज़ फ़ोन पे बार
1: बार
0: बार
1: बार
0: रिफ़्लेक्ट
1: दिखाई
0: होती है और
1: जाती है
0: आप
1: जी
0: उलझ जाते हो उसमें।
1: जी बिल्कुल
0: सो आप इस बात का ध्यान रखें कि फ़ोन आपकी सहायता के लिए है, और बच्चों को भी ये बताएं कि फ़ोन का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें,
1: जी
0: वो
1: बिल्कुल
0: पासवर्ड का इस्तेमाल करें, वो अपनी पहचान किसी को ना बताएं,
1: जी
0: और यदि ऑनलाइन ऑनलाइन कोई कॉल उनको आ रही है तो उसके बारे में वो आपसे ज़रूर बात करें। यदि आप बच्चों के अच्छे दोस्त बनते हैं तो वो आपको सारी जानकारी दे सकते हैं और
1: जी
0: आप उनको साइबर क्राइम से बचा सकते हैं।
1: जी जी सर, इस बात में कितनी सच्चाई है कि हमारे फ़ोन में जितनी भी एप्स हैं, अगर हमने उन्हें लॉक कर रखा है तो ऐसी घटना होने के चांसेस कम होते हैं?
0: ऐप को लॉक करने से या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो हम करते हैं या पासवर्ड प्रोटेक्शन जो है, वो आपकी पर्सनल डेटा की प्रोटेक्शन है।
1: जी
0: यदि आप ऑनलाइन अपने पासवर्ड को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं तो आपका डेटा सिक्योर रहता है,
1: जी
0: लेकिन यदि आप अपना पासवर्ड, अपना OTP, अपना ATM पिन, अपना UPI पिन
1: जी
0: या CVV जो कि आपके ATM कार्ड पे होता है, यदि आप इस तरह की इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करते हो तो फिर आप ऑनलाइन खतरे या जोखिम में होते हैं,
1: जी
0: और ये ऑनलाइन क्रिमिनल आपकी इन्हीं जानकारियों का इस्तेमाल आपके साथ फ्रॉड करने में, आपको डराने में और आपको लालच में डालने के लिए करते हैं।
1: जी जिससे अगर हम पेटीएम या फोन पे कुछ भी ऐसी ऐप यूज़ करते हैं, अगर उस पे भी हमने पासवर्ड डाल के रखा है, तो इस तरह का कोई भी हमारे साथ पैसे की धोखाधड़ी होने के चांसेस कम रहते हैं, कह सकते हैं?
0: पेटीएम का जो पासवर्ड है वो सिर्फ पेमेंट करने के लिए होता है, जो मैं जानता हूँ
1: जी
0: पेमेंट करने के लिए
1: जी
0: होता
1: जी
0: है,
1: जी
0: आपको कभी पेमेंट उस पर रिसीव नहीं होती है
1: नहीं,
0: इस
1: जैसे
0: वक्त।
1: मेरा सवाल ये है सर कि जैसे हम अपना पेटीएम खोलते हैं, उसके लिए हमने पहले उसको खोलने के लिए भी अगर पासवर्ड डाल रखा है, तो क्या हम सुरक्षित रह सकते हैं थोड़ा बहुत?
0: बिल्कुल, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ही फायदे में रहती है,
1: जी
0: जिससे क्या होता है कि यदि पासवर्ड किसी क्रिमिनल के हाथ में चला भी गया तो आपके पास एक सेकेंड लेयर होती है सुरक्षा की, और आपका डेटा जो है बिल्कुल सुरक्षित रहता है,
1: जी
0: और आप पासवर्ड चेंज करके, तुरंत पासवर्ड चेंज करके अपने डेटा को फर्दर सुरक्षित कर सकते हैं,
1: जी
0: क्योंकि क्रिमिनल जो है वो जब तक सेकेंड लेयर को जो है क्रॉस करेगा
1: क्रॉस
0: तब
1: करने
0: तक
1: की
0: आप पासवर्ड
1: कोशिश
0: चेंज कर चुके होंगे और वो
1: जी
0: कुछ भी नहीं कर पाएगा।
1: जी श्रोताओं को नंबर एक बार फिर से हम स्टूडियोज़ का बता दें, 01892-2243, यानी 01892-2243-91, ये स्टूडियोज़ का नंबर है। और साइबर क्राइम से संबंधित बातचीत आज हम कर रहे हैं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुलदीप कुमार जी हमारे साथ उपस्थित हैं स्टूडियोज़ में। सर, एक प्रश्न है, महिलाओं के खिलाफ जब भी किसी तरह का ऑनलाइन उत्पीड़न होता है या मॉर्फ्ड फोटो का आजकल चलन बहुत ज़्यादा है, फर्जी अकाउंट जैसी शिकायत है, तो इस पर पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई रहती है, किस तरह से?
0: ये एक तरह का साइबर क्राइम है,
1: जी
0: फाइनेंशियल फ्रॉड के अलावा। फाइनेंशियल फ्रॉड भी साइबर क्राइम है, लेकिन ये अलग तरह का साइबर क्राइम है जिसको अदर साइबर क्राइम की कैटेगरी में शामिल किया गया है।
1: जी
0: तो इसकी कंप्लेंट नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे की जा सकती है। जो कंप्लेनेंट है वो सीधे थाने में भी संपर्क कर सकते हैं, और बहुत सारे कंप्लेनेंट डेली हमारे को मेल करके जानकारी, इस तरह की जानकारियाँ देते हैं, और उनकी कंप्लेंट्स को हम रेगुलरली डिस्पोज ऑफ करते हैं। अधिकतर कंप्लेनेंट अपनी पहचान को सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो कई बार शर्म के मारे, कई बार कई सारे सामाजिक कारणों के कारण सूचना हमारे को नहीं देते हैं। मैं सभी श्रोताओं से आग्रह करता हूँ कि वो यदि उनके साथ ऐसी घटना हो गई है तो वो घुट घुट के ना जिए, डरे ना,
1: जी
0: वो हमारे से संपर्क करें, हम उनकी सहायता करेंगे और इस तरह के अपराधों से उनको सुरक्षित करेंगे, और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तुरंत इसमें रिपोर्टिंग कर सकते हैं
1: जी। विदेश में जैसे हम हमारे परिवार का कोई सदस्य है, मान लीजिए

0: रह रहा है, उसके अकाउंट में किसी तरह की धोखाधड़ी अगर होती है तो उसके लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, किस तरह से प्रोसेस किया जाता है इसमें?
1: कोई भी अकाउंट जो कि भारत में ऑपरेट हो रहा है
0: हाँ जी,
1: और इवन विदेशों से भी जो अकाउंट ऑपरेट हो रहे
0: आपको
1: हैं।
0: रोकना चाहूंगी, एक फोन कॉल है, इसका जवाब बाद में लेते हैं हम। हेलो,
2: हेलो धर्मशाला,
0: हाँ जी, कार्यक्रम में स्वागत है, नाम बता दें
2: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछौड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी।
2: जी,
0: अपना सवाल आप पूछ सकते हैं।
2: सवाल मेरा ये है कि जैसे कि साइबर क्राइम के कुछ कॉल आते हैं तो उसमें कुछ ऐसे फ्रॉड कॉल होते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि ये कॉल साइबर का है, तो हमें जानते हैं कि उसके ओटीपी पूछते हैं वो, इसके अलावा कुछ अकाउंट भी बताते हैं कि इसमें आपको पैसे ट्रांसफर करना है, तो आपके पैसे मतलब हम लोन देंगे या फिर इस तरह से जो कॉल आते हैं तो उनके लिए क्या करें? जैसे कि उनके लिए मैं जानता हूँ कि शिकायत हम कर सकते हैं, पुलिस को कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं?
1: श्रोता को मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी साइबर क्रिमिनल हैं वो जानबूझकर आपके इन जो पर्सनल डेटा है, खासकर एटीएम का पिन है या ओटीपी है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं जिससे कि वो अपना जो फाइनेंशियल फ्रॉड है आपके साथ कर सकें। तो यदि कोई श्रोता इस तरह की चीज़ों से जूझ रहा है तो आप अपना डेटा सबसे पहले सुरक्षित करें। सबसे पहले डेटा सुरक्षित करें, आप
0: जी
1: अपने डेटा किसी को भी शेयर ना करें, कोई कोई भी बैंक, कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई भी संस्था आपका पर्सनल डेटा कभी नहीं मांगती है। सो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो जानकारी और सतर्कता, ये दो तरीके हैं जिससे कि आप अपने पैसे को सुरक्षित कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड से बच सकते हैं और डरने की आवश्यकता नहीं है। ये क्रिमिनल आपके डर का इस्तेमाल करते हैं, आपके लालच का इस्तेमाल करते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको ऑनलाइन ये आके कहता है कि आपको मैं बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा हूँ, तो आप सोचिए, सतर्क हो जाइए कि कितना रिटर्न वो किस तरह से दे पाएगा, और आप पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करने के बाद ही अपने पैसे जो है वो सर्टिफाइड जगहों पे लगाएं, ना कि आप बिना वजह किसी के फ़ोन से प्रभावित होकर अपना पैसा लगा दें।
0: जी, ये फ़ोन कॉल जो है वो कट चुका है, लेकिन उम्मीद करते हैं हम कि ये रेडियो से सुन रहे होंगे और अपने प्रश्न का उत्तर इन्हें मिला होगा। एक और कॉलर है, हेलो
2: हाँ जी, नमस्कार जी,
0: जी, कार्यक्रम में स्वागत, परिचय अपना दें और अपना प्रश्न आप पूछें।
2: राजेंद्र सिंह सितैया हमीरपुर के गांव खनसरा से बोल रहा हूँ।
0: जी
2: तो प्रश्न ये है जी कि लोग खैर इस झांसे में आ जाते हैं, इसी तरह हमारा लड़का भी एक पार्सल का लालच दिया कि दिल्ली से बॉम्बे पार्सल आ रहा है, वो वहां से किराया खर्च के बॉम्बे पहुंच गया, लेकिन मैंने जब मेरे से संपर्क हुआ तो मैंने उसको रोका कि नहीं, किसी पुलिस वाले को साथ लेके जाना। जब वो उसको पुलिस वाला दिखाई दिया तो वो गायब हो गए। तो इस तरह हमारे साथ कभी टावर की लालच देते हैं कि आपको इसकी सिग्नल की कमी है तो हम टावर लगा के देंगे, अपनी जमीन जमीन की मुबारक हो बोलते हैं, आपको सेक्शन हो गया। तो इस तरह के बहाने पड़ के वो हमें ठगने की कोशिश करते हैं। हमने कई बार झाड़ा, अब जैसे मैंने नाम बताया राजेंद्र सिंह सतैया, तो एक बार वो बोलता है कि नहीं आप तो आपकी नौकरी जा सकती है। मैंने कहा कैसे जा सकती है, मैंने कहा जब मैं घर में, नहीं आपने कहा मैं सिपाही हूं, मैंने कहा सिपाही नहीं हूं मैं, सतैया मेरा बंस है। तो इस तरह की बातें होती है तो किसी तरह हमें उलझा देते हैं।
0: जी,
2: तो
0: इनका
2: इससे
0: ये अपना
2: बचने के
0: पर्सनल
2: लिए
0: एक्सपीरियंस
2: चलो
0: सुना रहे
2: पब्लिक को
0: हैं।
2: जागरूक होना चाहिए, और
0: जी
2: हम आज तक तो बचे रहे लेकिन आगे पता नहीं।
0: जी
1: सिपाही साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप जागरूक हैं और इस तरह की घटनाएं आजकल हो रही हैं कि कोई पेट्रोल पंप के नाम से ठगा जा रहा है, कि पेट्रोल पंप
2: जी
1: आपका आपका सेंक्शन हो गया है, कोई मोबाइल टावर के नाम पे ठगा जा रहा है, कोई इस नाम पे ठगा जा रहा है कि आपकी लॉटरी निकल गई। तो आप इस
2: बिल्कुल
1: बात का ध्यान हमेशा रखें कि यदि आपने लॉटरी के लिए अप्लाई ही नहीं किया है तो कैसे निकल सकती है,
2: हाँ जी
1: या
2: हाँ जी
1: आपने पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई ही नहीं किया तो कैसे निकल सकता है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। सो रियलिटी में जीना चाहिए और सतर्क
2: तो
1: रहना
2: सर
1: चाहिए।
2: इसकी एक घटना हुई तो मैंने पुलिस चौकी भोटा को इन्फॉर्म कर दिया, तो भोटा वाला ने

0: कि आप सर करिए, मैंने कहा आपको कॉल की है मदद के लिए, आप मेरे को ही बोल रहे हैं। तो ऐसी घटनाएं आई, लेकिन अभी तक तो बचाव आया ही है।
1: ठीक है,
0: हाँ
1: बहुत
0: जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: जी बहुत
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद, अपना एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया, और ऐसे ही हम सभी को जागरूक रहना है ताकि किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉड जो है हमारे साथ ना हो सके। हम बात कर रहे थे सर, विदेश में अगर कोई रहता है और फ्रॉड होता है तो किस तरह से प्रिपेयर रहती है जांच
1: विदेश
2: की।
1: विदेश के लोग भी हमारे साथ हमारे यहाँ कंप्लेनेंट हैं जो विदेशों में रहते हैं और फ्रॉड का शिकार हैं, उनके भी FIR जो है हमारे थाने में दर्ज हुई है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि
2: जी जी
1: बहुत सारे फ्रॉडस्टर, खासकर फाइनेंशियल फ्रॉड जो हो रहे हैं, उनके जो मेन कल्प्रिट हैं वो विदेशी ही हैं। सो भारत के लोग तो म्यूल बने हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग जो कि सतर्क नहीं हैं, जानकार नहीं हैं, उन उनके अकाउंट्स वो इंडिया में खुलवा रहे हैं और उनका इस्तेमाल अपने फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए कर रहे हैं। तो
2: जी
1: बहुत सारे लोगों को नोटिस रिसीव हुए हैं, उनके अकाउंट ब्लॉक हुए हैं और वो हमारे तक आते हैं, फिजिकली हमारे थाने में पहुंचते हैं कि क्यों उनके अकाउंट ब्लॉक हो गए। तो मैं श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी इस तरह का लालच यदि आपको ऑनलाइन मिल रहा है कि आपके अकाउंट में बिना मेहनत किए पैसे आ जाएंगे, या आप गेमिंग करो उससे पैसे आ जाएंगे, या आप कोई कोई भी ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हैं और उससे आपको बिना मेहनत किए हुए पैसे आ रहे हैं, तो आप सतर्क हो जाएं,
2: जी
1: क्योंकि ये पैसे जो है फ्रॉडस्टर के हो सकते हैं। वो फ्रॉडस्टर आपके अकाउंट को एज ए म्यूल अकाउंट इस्तेमाल करते हैं और
2: जी
1: उसमें आप भी उलझ जाओगे। जब कोई क्रिमिनल मैटर बनेगा तो आपको भी नोटिस आ सकते हैं और आप परेशान हो सकते हैं।
2: जी बिल्कुल। एक प्रश्न और है सर, कि जो विभाग है साइबर क्राइम विभाग जो है, जनता की जागरूकता के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए इस विषय पर या कोई कार्यक्रम या कोई ऐसा किया जाता है आयोजन जिससे लोग सतर्क रहें इस मामले में और उन तक जानकारी पहुंचाई जा सके।
1: साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन समय समय पे स्कूलों में भी कार्यक्रम आयोजित करता है।
2: जी
1: साइबर क्राइम जागरूकता दिवस भी मनाए जाते हैं, साइबर क्राइम जागरूकता वीक भी जो है वो मनाए जाते हैं। साथ ही साथ हम भी लोगों के बीच जाते हैं, स्कूलों, इंस्टीट्यूशंस, और जैसे आज आकाशवाणी धर्मशाला में हम आए हैं
2: जी जी
1: तो श्रोताओं के बीच जानकारी पहुंचे। हम इसका लगातार प्रयास करते हैं और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो कि मंडी में, धर्मशाला में और शिमला में स्थित हैं, वो लगातार लोगों को जागरूक करते रहते हैं। सोशल मीडिया पे भी हम काफ़ी सारी जानकारी जो है वो लगातार लोगों के साथ साझा करते हैं। सभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम जानकारी के लिए, साझा करने के लिए करते हैं।
2: जी साइबर क्राइम से संबंधित आज के कार्यक्रम में बात हो रही है, हम श्रोताओं को एक बार फिर बता दें। और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तरीखंड धर्मशाला से हमारे साथ आज कार्यक्रम में उपस्थित हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुलदीप कुमार जी। और श्रोता जो है उनके मन में किसी तरह की जिज्ञासा है, कोई संदेह है, प्रश्न है, तो हमें फ़ोन कर सकते हैं और इनसे प्रश्नों के उत्तर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडियोज़ का नंबर है 01892-224391, 01892-224391, ये स्टूडियोज़ का नंबर है। इस नंबर के माध्यम से जुड़िए और अपने प्रश्न आप कर सकते हैं। कार्यक्रम में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
3: जान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
4: Step into the world of Nexa.
5: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
5: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: And now it's yours at an effective price of just 6.75 lakh rupees.
5: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 31st August.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
5: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.
3: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
6: Step into the world of Nexa.
5: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
6: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
5: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
6: And now it's yours at an effective price of just 6.75 lakh rupees.
5: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 31st

0: August.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your frongs today.
0: Hurry. Offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: कार्यक्रम जनवाणी में स्वागत है आपका।
4: नमस्कार जी।
3: हाँ जी नमस्ते जी, अपना नाम बता दें और अपना प्रश्न भी आप कर सकते हैं।
4: मैं जसदेव सिंह बात कर रहा हूँ जी, ग्राम पंचायत उठपुर तहसील लगड़ौल डिस्ट्रिक्ट मंडी से बात कर रहा हूँ जी।
3: जी
4: जी, बहुत अच्छा विषय रखा है आज आपने और ऐसे साथ भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं एक्चुअली टेलीकॉम सेक्टर से ही मैं काम करता हूँ, तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जैसे आजकल बहुत सारे फ्रॉड होते हैं तो उसमें मोबाइल का हमारा बहुत रोल होता है, क्योंकि ज़्यादातर मोबाइल का ही रोल होता है। आज की डेट में हम डिजिटली तो जैसे बहुत सारे यूज करते हैं, मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, बहुत जगह हमारा सिम लिंक होता है
3: जी।
4: ई सिम का आजकल बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है, तो थोड़ा सा ऐसे हिसाब से गुजारिश करना चाहूंगा इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें।
3: सिम जो है हमारे नाम पे होता है, उससे रिलेटेड फ्रॉड की बात कर रहे हैं।
5: सिम से रिलेटेड फ्रॉड जो है वो बेसिकली तो सिम से ही सारे साइबर क्राइम जुड़े हैं। इंटरनेट सिम के माध्यम से ही जो है वो फ़ोन को मिलता है, साथ ही सिम जो है कई बार उसकी कॉपी भी कर दी जाती है। सिम की कॉपी के भी केसेस आए हैं जिसमें कई तरह के एक सिम को कॉपी करके उसका इस्तेमाल फाइनेंशियल फ्रॉड में भी किया जा सकता है
3: जी।
5: जब सिम को कॉपी करते हैं तो जो OTP है वो दोनों फ़ोन में चला जाएगा और इस तरह से जो है वो फ्रॉडस्टर जो है वो उस OTP का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल फ्रॉड जो है आसानी से कर सकता है। इसके साथ साथ सिम जो है वो कई तरह से सिम का इस्तेमाल जो है वो साइबर अपराधों को करने में किया जा रहा है। एक तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी साइबर अपराधी हैं वो किसी व्यक्ति की सिम का इस्तेमाल करते हैं, वो खुद की सिम का इस्तेमाल ना करके किसी और व्यक्ति की या क्या बोलते हैं किसी अन्य व्यक्ति के KYC जो उनके डॉक्यूमेंट है उनका इस्तेमाल करके सिम लेते हैं, जिसके कारण वो अपनी पहचान छुपाते हैं, अपने आप को कई तरह से मास्क करते हैं। ये तो बहुत सारी सिम का इस्तेमाल जो है एक ही क्रिमिनल जो है वो अपराधों को करने के लिए करते हैं। तो मैं श्रोताओं को इस तरह से भी जागरूक करता हूँ कि यदि आपकी सिम का कोई इस्तेमाल कर रहा है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, या आपको जानकारी है आपको आपने जानबूझ के उसको इस्तेमाल करने के लिए दी है, तो आप सतर्क हो जाएं। आपकी सिम का इस्तेमाल जो है वो साइबर अपराधों में किया जा सकता है। सो सिम जो है वो एक तरीका है, एक माध्यम है जिसके द्वारा साइबर क्रिमिनल जो है वो साइबर क्राइम कर रहे हैं।
4: एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा सर इसके साथ ही, एक संचार साथी करके एक हमारा पोर्टल होता है टेलीकॉम का ही है, अपना भारत सरकार का ही, इसमें भी आप अपनी जो कहीं आपके नाम पर जितने सिम कार्ड चल रहे हैं वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप रिपोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर।
3: जी बिल्कुल जी, आप आपका उत्तर मिल गया आपको जी। आपने फ़ोन किया, बहुत अच्छी जानकारी आपने भी दी, कॉल करने के लिए शुक्रिया जी। सिम के माध्यम से ही इस तरह की घटनाएं होती हैं। एक बेहद ज़रूरी सवाल है जो अभी छूट रहा है, अगर किसी का मोबाइल खो जाता है या हैक हो जाता है उस कंडीशन में क्या कुछ कदम है जो हमें एकदम से उठाने चाहिए?
5: यदि किसी का किसी भी श्रोता का मोबाइल खोता है तो उस स्थिति में आप ये ध्यान रखें कि मोबाइल जो है आपकी इन्फॉर्मेशन का एक भंडार है, उसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, आपके आपके बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, आपकी पारिवारिक जानकारी फ़ोन में है, और कई तरह की आपकी प्रोफेशन से संबंधित आपकी जानकारी जो है वो फ़ोन में जो है होती है। तो यदि किसी का फ़ोन कभी खोता है तो सबसे पहले अपने जो पिन पासवर्ड हैं, खासकर UPI के पासवर्ड हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए आपको। उनको पासवर्ड को तुरंत चेंज कर देना चाहिए, आपको अपनी सिम तुरंत ब्लॉक कर देनी चाहिए, ठीक है। और यदि आपको अपना फ़ोन प्राप्त करना है तो आपको इस संबंध में हमारे यहाँ कंप्लेंट करनी चाहिए, और आपको खोया हुआ फ़ोन भी मिल सकता है और साथ में आपकी जो फ़ोन की जो जानकारी है वो भी बच सकती है। यदि आप 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करेंगे तो यदि एक पासवर्ड चला भी गया है तो सेकंड पासवर्ड से जब तक वो क्रैक करेगा तब तक आपके पास टाइम होगा और अपने पासवर्ड आप आराम से चेंज कर सकते हैं। तो आप तुरंत सतर्क हो जाएं, घबराएं नहीं और इन कार्रवाई को करें। यदि बैंक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप अपने बैंक का अकाउंट भी कुछ समय के लिए फ्रीज करा सकते हैं
3: जी। हेलो जी, ये फ़ोन कॉल कर चुकी हैं और श्रोता कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की हमारे साथ। और श्रोताओं को बता दें जनवाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से, और एक छोटे से

0: ब्रेक के लिए अब हम रुकेंगे।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: हेलो।
2: हेलो,
0: हाँ जी, कार्यक्रम में स्वागत है, नाम बता दें।
2: जी नमस्कार जी, मैं राजकुमार त्यारा से बोल रहा हूँ सर।
0: जी, आपका कोई प्रश्न है या कुछ बात साझा करना चाहते हैं?
2: हाँ जी, हाँ जी, मेरे प्रश्न है सर कि मुझे ना एक बार बार फोन आ रहा है जी।
0: फोन आ रहा है?
3: हाँ हाँ
2: जी। हेलो
3: जी जी, किस तरह का फोन आ रहा है?
2: फोन आ रहा है कि आपके लड़के ने हमारे से लोन लिया और उसका 2024 से और उसका जो पैसा है 1,75,000 रुपया बन गया है जी।
3: जी,
2: तो मैंने कहा, उनको कहा कि हमने लड़के आज तक तो किसी किस्म का कोई लोन नहीं लिया है, तो वो हमको धमकी दे रहे हैं कि यार ना हमारा जो, मैंने उसको कहा कि आपने कैसे लोन दे दिया, कहना आपके आधार कार्ड पर, वो लड़के ने आधार कार्ड दिया उसको लोन दिया हुआ। हमने तो, मुझे बार बार सारे तंग कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ?
3: मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूँ कि आजकल बहुत सारी लोन ऐप जो है वो फ़ोन पे एक्टिव हैं, बहुत सारे लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग इनका इस्तेमाल करते हैं अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, छोटे छोटे लोन ले लेते हैं वो। तो हमारे युवा लोग भी कई बार इनके जाल में फंस जाते हैं, लोन ले लेते हैं, बताते नहीं हैं। पहले तो आप अपने जो सदस्य हैं उनसे, पारिवारिक सदस्य हैं, उनसे ये जानकारी लें कि क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया है। हेलो
2: जी,
3: क्या उन्होंने कुछ इस तरह का लोन लिया है? यदि ऐसा लोन नहीं लिया है, कोई फ्रॉड कॉल कर रहा है, तो आप इसकी कंप्लेंट जो है वो स्थानीय थाने में भी कर सकते हैं और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में भी इसकी कंप्लेंट आप कर सकते हैं। 1930 जो है उस पर भी आप ये कंप्लेंट कर सकते हैं।
0: जी, कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका जी। बहुत से श्रोता हैं आज हमारे साथ जिनके पर्सनल एक्सपीरियंस है, शायद उनके साथ ऐसी कुछ घटना घट चुकी है और कुछ जो है वो जानकारी चाहते हैं। तो 1930 ये नंबर है साइबर क्राइम का, और आपके साथ किसी भी तरह का ऐसा अपराध होता है तो इस नंबर पर आप जल्द से जल्द कॉल करें। श्रोताओं को जाते जाते कार्यक्रम अब हम ख़त्म करने के और हैं, तो जाते जाते कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें आम नागरिकों को, हम सबको पता होनी चाहिए कि हम इस तरह की कोई भी ठगी अगर हमारे साथ होने को है या कोई कोशिश कर रहा है तो उसके प्रति हम जागरूक रहें, अवेयर रहें
3: जी। ये साइबर क्रिमिनल लगातार आपको साइबर वर्ल्ड में ढूंढ रहे हैं
0: जी।
3: आपकी जानकारी आपके फ़ोन में है जो कि साइबर वर्ल्ड के लिए उपलब्ध है
0: जी।
3: बस ये आपकी सावधानी, सतर्कता और जानकारी के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने आप को कितना बचा पाते हैं
0: जी।
3: सो मैं सभी श्रोताओं को कुछ चीज़ टिप्स देता हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे सर्वप्रथम तो अपनी जो पर्सनल जानकारी है, खासकर जो फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी है, उनको जो है वो फ़ोन पे किसी के कहने पे शेयर ना करें। जैसे आपका ATM पिन है, आपका OTP है, UPI पिन है, CVV है
0: जी।
3: इनकी जानकारी, आपने पासवर्ड की जानकारी किसी को ना दें
0: जी।
3: ये मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड चीज़ है, कोई भी लिंक आपके साथ कोई शेयर करता है, जैसे कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जी आपका बिजली का बिल आया है, आपने बिल पे नहीं किया है, ये लिंक आपको दिया है, इस पर आप पे कर दीजिए, तो आप पहले जानकारी ले लें कि बिल आया भी है या नहीं आया है, और उसके बाद ही आप जो सर्टिफाइड माध्यम है उस तरीके से ही पे करें और किसी तरीके से किसी लिंक पे ना जाएं, क्योंकि लिंक जो है आपके फ़ोन को हैक करने में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और आपको किसी तरह से साइबर क्राइम में भी आपको आप इंडल्ज हो सकते हैं, आपके फ़ोन जो है उसका डेटा वो चुरा सकते हैं। सो इस तरह से आप किसी लिंक पे ना जाएं, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। यदि आपको किसी डिजिटल अरेस्ट की बात आती है तो आप ज़रूर पता करें कि ये बात क्या है, क्यों ये ऐसी बात कर रहा है, और आप हमेशा ध्यान रखें कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती लॉ में, ये सिर्फ आपको बहलाने और डराने के लिए इस्तेमाल की जाती है ताकि आपसे पैसे ऐंठ सके। उसके बाद यदि कोई आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट की बात करता है कि यहाँ पैसे इन्वेस्टमेंट कर दो और 400 गुना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये ऐसा निवेश कर दो, तो आप सावधान हो जाएं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे कि इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल जाए, इतना ज़्यादा मुनाफा आपको मिल जाए। इसके अलावा

0: बहुत सारे लोग इस तरह से भी फ़ोन करते हैं कि आपको लॉटरी लग गई है, आप ये निश्चित ज़रूर करें कि आपने लॉटरी डाली भी है या नहीं डाली है। यदि नहीं डाली है तो निकलने का कोई सवाल नहीं है।
1: जी
0: उसके बाद आपको बहुत सारे लोग इस तरह से भी मिलेंगे, इस तरह से बहुत पढ़े लिखे लोग भी ठगे जा रहे हैं कि आपको नौकरी दिला देंगे हम। नौकरी के नाम पे बहुत सारी ठगियां हो रही हैं, लोगों ने लाखों रुपए दे दिए,
1: ठगी हैं जी।
0: और उससे क्या हो रहा है कि क्योंकि नौकरी तो कंपटीशन के बाद मिलती है,
1: जी
0: पढ़ाई के
1: बिल्कुल
0: बाद मिलती है,
1: जी
0: जब तक कोई इस तरह के कंपटीशन में नहीं जाएगा नौकरी नहीं मिलेगी। तो कोई भी नौकरी का रास्ता जो है आसान रास्ता नहीं होता है, थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। तो आप
1: जी
0: सतर्क हुए, यदि कोई पैसे के नाम पर आपको नौकरी दे रहा है तो ज़रूर आपको वो ठगने का ही प्रयास कर रहा
1: प्रयास
0: है।
1: कर रहा है जी।
0: इसी तरह से और भी क्राइम्स हैं जो कि आसपास घटनाएं हो रही हैं।
1: जी
0: आप
1: बिल्कुल
0: खासकर सोशल मीडिया पे अपने फोटो ज़्यादा अपलोड ना करें।
1: जी बिल्कुल जी। बहुत ही अच्छी और वैल्यूएबल जानकारी जो है आपने श्रोताओं के साथ आज साझा की, और अपना बेशकीमती समय आपने हमें दिया स्टूडियोज़ में आकर इतनी अच्छी बातें और जानकारी साझा करने के लिए, आपका बेहद शुक्रिया।
0: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आकाशवाणी धर्मशाला, और श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
1: जी जी श्रोताओं, जागरूक रहें, सतर्क रहें, और किसी भी तरह के होने वाले अपराध से आप तभी खुद को बचा सकते हैं। आज के जनवाणी कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम आपने सुना अपनी होस्ट एंड दोस्त नीलम के साथ, तकनीकी सहयोग रहा अंकित धीमान का, और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जतेंद्र पाल सिंह।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रीना का प्यार भरा नमस्कार। जी हां, कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म हीना से। रविंद्र जैन का संगीत निर्देशन है और आवाजें हैं लता मंगेशकर की।

बातों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

सोनू निगम अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में अब आपको सुनवा रहे हैं मुस्कान फिल्म से गीत। संगीत निखिल विनय का है और गीतकार हैं समीर।

एकॉन और हमसिका अय्यर को आइए सुनते हैं फिल्म रावण में। संगीत विशाल शेखर का है।

0: अनजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। AR रहमान के संगीत निर्देशन में इरशाद कामिल का लिखा गीत अब आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म रॉकस्टार से। गायक कलाकार है हर्षदीप कौर।

कार्यक्रम के आखिर में श्रोताओं आपको सुनवा रहे हैं रब ने बना दी जोड़ी। इस फिल्म से सोनू निगम की आवाज में गाया ये खूबसूरत सा गीत। संगीत सलीम सुलेमान का है और गीतकार हैं जयदीप साहनी।

जी हाँ श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 MHz पर 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस लोक भजन के साथ, जिसे गाया है शक्ति चंद डोगरा व साथियों ने।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। 14वीं विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। 3 सितंबर तक चलने वाले इस मॉनसून सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें होंगी। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज सदन में पूर्व विधायक स्वर्गीय विजेंद्र सिंह और रामचंद भाटिया के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए जाएंगे। सत्र के लिए विधायकों की ओर से कुल 1036 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। इनमें 787 तारांकित और 249 अतारांकित प्रश्न हैं। सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है और इस बार सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है। मॉनसून सत्र के दौरान शिमला में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। 750 पुलिस कर्मियों और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। विधानसभा परिसर और इसके आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षा की दृष्टि से 3 मुख्य सेक्टरों और विभिन्न उप सेक्टरों में बांटा गया है। सभी सेक्टरों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के साथ बहुस्तरीय जांच और निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: इस बीच विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले कल देर शाम भाजपा और कांग्रेस विधायक दल की शिमला में महत्वपूर्ण बैठकें हुई। भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई, तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक कर सरकार का रोडमैप तैयार किया है। भाजपा विधायक दल की बैठक में सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर घेरने की रणनीति बनी है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा विधायक की बैठक में कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम के दो ही छंद गाने के निर्णय को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है।
2: इस बैठक में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जो वंदे मातरम गीत के दो पैरा गाने का ही निर्णय हुआ है, उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल प्रभावी रूप से अपनी विपक्ष की भूमिका अदा करेगा। सदन के अंदर जो भी हमने चर्चाएं दी हैं अनेक नियमों के तहत, उसके लेकर हम पूरे आंकड़ों के साथ, पूरे लॉजिक से साथ अपनी बात सदन के अंदर रखेंगे और सरकार को हर फ्रंट पर घेरने की कोशिश करेंगे।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में शिमला में वन विभाग और भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी व इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ 5 वर्ष के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह साझेदारी प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और जिससे आने वाले वर्षों में प्रदेश को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस पहल को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में उपलब्ध विभिन्न स्थानीय प्रजातियों की आर्थिक क्षमता का अधिक उपयोग किया जाएगा। इसमें कुल 22,600 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षमता का अनुमान लगाया गया है। एमयू के माध्यम से इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। लाहौल स्पीति का राज्य स्तरीय पौरी मेला आज से त्रिलोकीनाक में शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय यह मेला 23 अगस्त तक पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ आयोजित किया जाएगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
3: लाहौल स्पीति के धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और सदियों पुरानी लोक परंपराओं का

0: छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज व कल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश होने की संभावना है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन से 128 सड़कें अवरुद्ध हैं, जिनका बहाली कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसके अलावा 52 पेयजल योजनाएं और 18 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हैं। चंबा की मणिमहेश यात्रा के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक चलने वाली यह यात्रा इस वर्ष 4 सितंबर से शुरू होगी और 19 सितंबर तक चलेगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। रोजाना अधिकतम 5,000 श्रद्धालुओं के पंजीकरण का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम जय हिंद गीतमाला। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फना फिल्म के इस देशभक्ति गीत के साथ, जिसे गाया है महालक्ष्मी अय्यर ने। संगीत जतिन ललित का है और गीतकार हैं प्रसून जोशी।

0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price, starting from just 9.67 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 31st August.
1: Own the style icon at an EMI of just 899 rupees per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbag as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting turbo booster jet, refined K15C engine and underbody SCNG with 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of 7.39 lakh rupees. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
6: कार्यक्रम का अगला देशभक्ति गीत श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म चक दे इंडिया से। आवाजें हैं सुखविंदर सिंह व साथियों की, संगीत सलीम सुलेमान का है और गीतकार हैं जयदीप साहनी।

0: drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price, starting from just 9.67 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 31st August.
1: Own the style icon at an EMI of just 899 rupees per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbag as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम जय हिंद गीतमाला आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म दिल चले से। गायक लगा रहे हैं कुमार सानू और आदित्य नारायण। संगीत अनुमलिक का है और गीतकार हैं जावेद अख्तर।

कार्यक्रम के आखिर में श्रोता वो आपको सुनवा रहे हैं सरफरोश फिल्म से ये देशभक्ति गीत सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ की आवाजों में। ये खूबसूरत सा संगीत है।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम जय हिंद गीतमाला। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 MHz पर 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की अगली कड़ी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। आप सबको नमस्कार, स्वागत बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से सींचिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
3: इस विचार के लिए आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। हमें पहला संदेश मिला है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी और ममता बाई वर्मा का।
2: नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे जी का।
2: हरदोई जिले के नगर पंचायत कुरसठ गांव के मोहल्ला रामनगर से राजेश कुमार विद्यार्थी और कोमल।
3: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
2: संजय नगर कॉलोनी नेपानगर से प्रभु दयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा बसंतीबाई और गणेश शिवदे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। हमारा निवेदन वही है जो हमेशा होता है और वो ये है कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए।
2: जी
3: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम के साथ बने रहिए। अब प्रस्तुत है आज का प्रेरक प्रसंग।
2: जी
3: तो विमलेश जी, हमने कल चर्चा की थी तितली के संघर्ष की।
2: बिल्कुल।
3: आज किसकी चर्चा होने जा रही है?
2: अजीत जी, आज हमारी चर्चा होने जा रही है बाज की। हम सभी इस पक्षी के बारे में जानते हैं, ये अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और शानदार उड़ान के लिए जाना जाता है। आज हम सुनेंगे बाज और मुर्गियों की कहानी।
3: श्रोताओं, इस कहानी का मूल भाव है स्वयं को पहचानिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है, शायद आपने पहले भी सुनी हो लेकिन हर बार ये हमें अपने जीवन के बारे में कुछ न कुछ नया सोचने के लिए जरूर प्रेरित करती है।
2: तो करते हैं शुरुआत कहानी की।
3: जी।
2: एक दिन की बात है, एक किसान खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे बाज पक्षी का बच्चा पड़ा हुआ मिला। वो घायल भी था, शायद किसी तूफान में वो घोंसले से गिर गया था।
3: तो उस किसान ने सोचा, यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो शायद ये जीवित नहीं बचेगा। वो उस बाज के बच्चे को घर ले आया और उसे अपनी मुर्गियों और चूजों के साथ रख दिया।
2: जी।
3: वो बाज का बच्चा अब मुर्गियों के बीच ही बड़ा होने लगा।
2: वो वही खाता जो मुर्गियाँ खाती थी। वो जमीन पर दाना चुगता, मुर्गियों की तरह थोड़ा बहुत उछलता और छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता। और जब मुर्गियाँ कुट कुट करती तो वो भी वैसा ही करने की कोशिश करता।
3: उसे मालूम ही नहीं था कि वो वास्तव में कौन है। उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी क्षमता कितनी है।
2: जी।
3: एक दिन उसने आकाश में एक विशाल बाज को ऊंची उड़ान भरते हुए देखा। वो बादलों के बीच बिना किसी डर के शान से उड़ रहा था।
2: बाज के बच्चे ने आश्चर्य से अपनी मुर्गी माँ से पूछा, माँ वो कितना अद्भुत पक्षी है, वो कौन है? मुर्गी ने उत्तर दिया, वो बाज है, आकाश का राजा। बाज ने पूछा,
3: क्या मैं भी कभी उसके जैसा उड़ सकता हूँ?
2: मुर्गी हंस पड़ी, नहीं बेटा, हम मुर्गियाँ हैं, हम जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं, इतनी ऊंची उड़ान हमारे बस की बात नहीं, हम उसकी तरह उड़ नहीं सकते।

0: अजीत जी, फिर क्या हुआ? क्या बाज कभी उड़ पाया?
1: नहीं विमलेश जी, दुखद बात यह है कि बाज के बच्चे ने भी यही बात सच मान ली और उसने कभी उड़ने का प्रयास ही नहीं किया। वो पूरी जिंदगी मुर्गियों की तरह जमीन पर चलता रहा, कुटकुट करता रहा।
0: जी
1: पता है, उसने उड़ने की जन्मजात क्षमता थी।
0: जी
1: बस यदि वो थोड़ा और पंख फड़फड़ाता, अपने पंखों को फैलाता, उड़ने का प्रयास करता तो वो उड़ सकता था।
0: जी
1: लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था कि उससे हो ही नहीं सकता।
0: और एक दिन इसी भ्रम में उसका जीवन समाप्त हो गया कि वो एक साधारण मुर्गी है। प्रिय श्रोताओं, ये केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। कई बार परिस्थितियां हमें ये विश्वास दिला देती हैं कि हम जितने हैं उससे अधिक नहीं बन सकते।
1: श्रोताओं, विद्यार्थी सोचते हैं कि वे और अच्छा नहीं कर सकते, कुछ विषय उनसे हो ही नहीं सकते।
0: जी
1: लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम साधारण हो।
0: जी
1: इतना बड़ा सपना मत देखो। और श्रोताओं, होता ये कि धीरे धीरे हम भी उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं, अपनी क्षमता भूल जाते हैं।
0: हम अपने पंख समेट लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी सीमा में जीते रहते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए तय की है।
1: लेकिन इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति ने एक दिन यह तय किया कि वह दूसरों की सीमाओं में नहीं लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार जिएगा।
0: आपने महान नर्तकी सुधा चंद्रन के बारे में अवश्य सुना होगा। जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि कृत्रिम पैर के साथ वो नृत्य करके दिखाएंगी, एक इतिहास रच दिया गया।
1: और श्रोताओं, आपने पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा के बारे में भी सुना होगा कि एक पैर खोने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। जी हाँ प्रिय विद्यार्थी, श्रोता मित्रों, आपसे कहना चाहते हैं शायद आपके भीतर भी कोई ना कोई सपना है, कोई प्रतिभा है, कोई ऐसा कार्य है जिसे करने से आप डर रहे हैं। हो सकता है लोगों ने आपको बार बार निराश किया हो, लेकिन याद रखिए, दूसरे लोग आपकी पहचान तय नहीं कर सकते।
0: आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपका विश्वास तय करता है। यदि बाज अपने पंखों पर विश्वास करे तो आकाश उसका है, और यदि मनुष्य अपनी क्षमता पर विश्वास करे तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं।
1: तो हम कहना चाहते हैं,
0: अपने पंखों पर विश्वास कीजिए, और हाँ, किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए क्योंकि
1: आप हैं।
0: बिल्कुल।
1: आशा है आपको हमारी प्रस्तुति अवश्य पसंद आई होगी श्रोताओं। यदि आई तो जरूर लिख भेजिए प्रोत्साहन के दो शब्द। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना होगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। इस चैनल पर जाकर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
0: कार्यक्रम में जल की दुर्लभता को समझाते हुए बताया गया है कि पृथ्वी पर पेयजल की मात्रा बहुत ही कम है, शेष खारा जल है, इसलिए हमें जल बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।
1: साथियों नमस्कार, पिछली बार आपने सुना था कार्यक्रम पानी रे पानी। इस कार्यक्रम में आपने सुना था एक कविता के माध्यम से जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में। आइए अब सुनते हैं इसी कार्यक्रम का दूसरा भाग, पानी रे पानी, जल है तो कल है।
2: प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूं तुम्हारी दोस्त झुमकी।
3: और मैं हूँ झुमरू।
2: आहा, नमस्कार।

0: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
2: जल बचाओ।
0: तो झुमकी क्यों?
1: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
0: हाँ,
1: तो चलो शुरू करें।
0: और हाँ बच्चों, तुम्हें भी तुक मिलाना है, समझे?
3: जी झुमरू जी।
0: चलो झुमकी।
1: ठीक है तो चलो मैं शुरू करती हूँ। बंद रखो तुम नल हर दम, नहीं हो जब उपयोग, जल की एक एक बूंद का सदा करो सदुपयोग।
0: करते हो जब ब्रश तो नल को खुला कभी ना छोड़ो, नित्य प्रतिदिन ऐसा करके बूंद बूंद तुम जोड़ो।
4: झुमरू जी, किताबों में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी पर बहुत पानी है।
0: हाँ,
5: लेकिन यदि इतना पानी है तो पानी की कमी क्यों है?
1: क्योंकि इसमें से समुद्र का 96% जल खारा है और ये पीने योग्य नहीं है, है ना झुमरू जी?
0: हाँ बच्चों, पृथ्वी का सिर्फ 3.5% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से कुछ हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में संरक्षित है।
4: लेकिन जल बचाने के लिए हम बच्चे क्या कर सकते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल किया है ये तो। चलो, बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: जैसे?
1: जैसे हम स्नान करते समय जल का उपयोग कम कर सकते हैं, है ना? और क्या कर सकते हैं?
0: बताओ बताओ।
1: मैं नहीं, अब बच्चे बताएंगे।
0: ठीक,
1: बताओ।
5: यदि हम किसी नल से पानी टपकता हुआ देखें तो हम उसे तुरंत बंद कर सकते हैं।
1: और
4: यदि बनना हो तो हम किसी बड़े को बता सकते हैं।
1: हाँ, बहुत अच्छे।
0: हाँ, ताकि उसकी मरम्मत हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
5: यानी हम बच्चे भी जल बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: तो अब हो जाए सबके लिए जोरदार
2: तालियां।
0: अच्छा, अब ये बताओ बच्चों, तुम में से किस किस के पास गुल्लक है?
3: मेरे पास बहुत बड़ी पैसे।
0: अरे वाह।
1: तो फिर ये पृथ्वी भी तो एक गुल्लक ही हुई ना, है ना, है ना, है ना? बोलो। जैसे गुल्लक में पैसे बचाते हैं, वैसे ही इस बड़ी सी गुल्लक में हम क्या बचा सकते हैं?
3: जल।
0: तो झुमकी, क्यों ना हो जाए इस पर एक सुंदर सी कविता? लेकिन ऐसी वैसी कविता नहीं, बल्कि तुक मिलाने वाली।
1: आपने तो मेरे मन की बात कह दी।
0: तो,
1: चलिए
0: शुरू हो जाओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए। ये पृथ्वी मेरी गुल्लक है, हम इसमें जल बचाएंगे। आप भी कहिए।
0: हाँ हाँ, बूंद बूंद हम जल बचाकर। बच्चो, अब तुम्हारी बारी है।
3: जीवन सुखद बनाएंगे,
1: जीवन सुखद बनाएंगे। हाँ, जीवन सुखद बनाएंगे।

0: बस फिर क्या था, बच्चों ने थोड़े दिनों के बाद एक समूह बनाया, नाम रखा बाल जल प्रहरी।
1: और फिर बच्चों ने संभाली अपने अपने घरों और कस्बे में जल संरक्षण यानी पानी बचाने की जिम्मेदारी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल।

0: मेरा नाम साक्षी है। मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता है।
1: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हसरत मोहानी।
3: ये कार्यक्रम उर्दू के महान साहित्यकार जनाब हसरत मोहानी के जीवन और साहित्यिक उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम हसरत मोहानी।
4: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है।
5: सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस 1875 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बास किताबों में उनका सने पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिदे आजादी भी थे। अरबी फारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हसरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 1903 का साल हसरत की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। इसी साल वो अपने बागियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। 1903 ही में हसरत ने एक इल्मियो अदबी रिसाला उर्दुए मौल्ला जारी किया। ये सिलसिला आखिर उम्र तक जारी रहा। उर्दुए मौल्ला में अदबी और सियासी दोनों तरह के मजामीन शाये हुए थे। हसरत मोहानी ने इसके जरिए कौमी इत्तेहाद, सेकुलरिज्म और कामिल आजादी की आवाज बार बार बुलंद की। वो आजादी के मतवाले थे। अंग्रेजी हुकूमत की उन्होंने खुलकर मुखालफत की और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1908 के उर्दुए मौल्ला में एक मजमून की इशात पर मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें 2 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई और 500 रुपए जुर्माना किया। जेल में हसरत ने किस तरह शबोरोज गुजारे उनके इस शेर से अंदाजा किया जा सकता है।
6: कट गया कैद में माहे रमजान भी हसरत, कट गया कैद में माहे रमजान भी हसरत, घरचे सामान शहर का था ना इफ्तारी का।
5: कैद से रिहाई के बाद हसरत के सियासी ख्यालात में और शिद्दत पैदा हो गई। हसरत मोहानी के मिजाज में सादगी बहुत थी। उनके लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और सियासतदान हैं। एक मर्तबा कानपुर के एक सौदागर जो हसरत से अकीदत रखते थे उनसे मिलने आए तो देखा कि वो कुछ लिख रहे हैं।
7: जी आदाब, बजा लाता हूँ
8: जनाब, मोहानी की खिदमत।

0: अरे आप आदाबर्स आइए आइए, तशरीफ रखिए।
1: जी जी शुक्रिया शुक्रिया।
0: माफ कीजिएगा, जरा एक मजमून लिख रहा था, बस अभी आपसे मुखातिब होता हूँ।
1: कोई बात नहीं जनाब, कोई बात नहीं, आप आराम से अपना काम करें।
0: जी बस
1: जी।
2: हसरत लिखते जाते और बीच बीच में उन सौदागर से बात भी करते जाते। हसरत की पुश्त पर एक फटा पुराना पर्दा लटक रहा था। वो पर्दे के पीछे से कुछ निकालते और मुंह में रख लेते और डेस्क पर रखी गुड़ की डली से थोड़ा गुड़ खा लेते। सौदागर साहब खामोशी से देखते रहते।
0: जनाब बस जरा सी देर और, बस यू समझिए खत्म ही हुआ चाहता है।
1: जी जी आप इत्मीनान से काम करें, बाखुदा मैं मजे में हूं। ये थोड़ा सा अजीब है, लिख भी रहे हैं खा भी रहे हैं, कैसे पूछूं।
2: जब जब्त ना हुआ तो अर्ज किया,
1: मोहानी साहब
0: जी,
1: ये पर्दे की ओट से निकालकर आप क्या खा लेते हैं, कुछ खादिम को भी आता हो।
0: चलिए फटी हुई बनियान दिखा ही देते हैं आपको।
1: क्या मतलब?
2: हसरत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडिया निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थी।
0: ये लीजिए खा लीजिए मियां, फकीरों का खाना तुम रईस ना खा पाओगे।
1: क्या सूखी रोटी पानी में भीगी हुई?
0: आज तीसरा फाका है, शुक्र है सूखी रोटी मयसर हो गई, बड़ी तस्कीन हो गई।
1: या खुदा,
0: नौश फरमाइए मियां,
1: लाइए
0: खाइए।
3: हम मशकूर हैं उन तमाम शोरा और सुखनवर हजरात के जो मुशायरे में शरीक हो रहे हैं।
2: हसरत मुशायरों में भी शरीक हुआ करते थे। मुशायरों के मुंतजमीन शोरा को सफर खर्च और कलाम सुनाने का मुआवजा बंद लिफाफे में पेश करते थे।
4: लिख दिया,
0: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर है, मुलायजा फरमाएं।
5: इरशाद इरशाद इरशाद ग्रामी।
0: है मश्क सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी।
4: वाह क्या बात है। है मश्क सुखन जारी,
0: चक्की की मशक्कत भी।
4: वाह
0: एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी।
4: एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत। क्या क्या
2: बाद में मुंतजमीन ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया।
4: जना क्या खूब गजल कहते हैं आप।
1: मोहानी साहब मुशायरे की रौनक बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी शुक्रिया तो आप सब जनाब का, आपने इस नाचीज को मौका दिया।
4: मोहानी साहब आप इतनी दूर से यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, ये लिफाफा हमारी तरफ से।
0: जी नहीं नहीं नहीं, नहीं।
1: मोहानी साहब ये तो महज टिकट का खर्च है जनाब।
0: माफ कीजिए मुझे सफर का खर्च नहीं चाहिए। नहीं दरहकीकत बात यह है कि मैंने सफर पर कुछ खर्च ही नहीं किया है।
4: क्या
0: जी? एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बैठा कर ले आया, टिकट तो नाचीज ने खरीदा ही नहीं।
1: अरे मोहानी साहब
0: शेरो शायरी पसंद करते हैं वो गार्ड साहब, चंदा शार सुनाए सुकून से सफर कट गया। बस वो आज वापस जा रहे हैं गार्ड साहब, ये टिकट हम फिर से वापस चले जाएं।
4: आप भी मोहानी साहब। लेकिन मोहानी साहब नाचीज को इतनी खिदमत का मौका तो थे।
0: नहीं नहीं माफ कीजिए, ये तो आपके साथ ज्यादती होगी, मैं खामखा खर्च कैसे ले सकता हूँ आपसे।
1: मोहानी साहब खामखा खर्च कैसा?
0: देखिए जनाब जब मैं

0: कुछ टिकट पर खर्च ही नहीं किया तो आपसे इखराजात लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
1: महाजी साहब, आपसे लफ्जों में नहीं जीत सकते हम। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
2: उस जमाने में स्वदेशी तहरीक शुरू हो चुकी थी। इस तहरीक का मतलब था कि अपने ही मुल्क की बनी हुई चीजें खरीदी और इस्तेमाल की जाएं, विदेशी माल का बायकॉट किया जाए। उन्होंने खद्दर का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर रखा था। अवाम में भी स्वदेशी माल के इस्तेमाल को राइज करने के लिए हसरत ने अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर खोला, जो कामयाबी से चला। 1920 में हसरत अलीगढ़ को खैरबाद कहकर कानपुर आ गए और यहाँ भी एक स्वदेशी स्टोर कायम किया। हसरत मोहानी अपने एक दोस्त के घर में मेहमान थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी।
1: अरे लीजिए ना हसरत साहब, थोड़ा तो और लीजिए।
3: बस बस भाई, अब तो बहुत ज्यादा हो गया।
1: आपने तो कुछ खाया ही नहीं।
3: कुछ नहीं खाया, यहाँ गला कह रहा है कि माफ करो भाई, खाना गले तक आ गया। वैसे आज ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ रही।
1: जी, बजा फरमाया आपने, आज तो भला की ठंड है। मैं अभी आपको कंबल देता हूँ, ये लीजिए। आपका सोने का इंतजाम यहाँ कर दिया है, आप आराम करें।
3: इतना खूबसूरत और मुलायम कंबल।
1: जी, और काफी गर्म भी है। इसको ओढ़ के चैन से सोइए।
3: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी, शब्बा खैर।
3: शब्बा खैर।
1: बला की ठंड है,
3: लेकिन इतना कीमती और मुलायम कंबल, लगता है विदेशी माल है। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं ओढ़ सकता। मैं मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ देसी चीजें ही इस्तेमाल करने का हक है और यही मेरा फर्ज भी है। तो जनाब कंबल जी, आप तशरीफ उधर ले जाए।
4: अरे हसरत, तू रात बेकंबल ही गुजार ले।
2: हसरत रात भर सर्दी में कांपते रहे, मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा। इस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये विदेशी माल है। हसरत एक सच्चे मजहबी इंसान थे। उन्होंने नात और मनकबत के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी अशार लिखे हैं।
4: मथुरा कि नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का। बरसाना ओ नंदगांव में भी, देख आए हैं जलवा हम किसी का। पैगामे हयात जाविदा था, हर नगमा कृष्ण बांसुरी का।
2: अंग्रेज हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियां कतई पसंद नहीं थी। 1913 में उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1916 में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। 1918 में रिहाई मिली तो आजादी की जिद्दोजहद में फिर मसरूफ हो गए। हसरत मुकम्मल आजादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिदे आजादी थे। हसरत मोहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। 1942 में हसरत कानपुर से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए और फिर पार्लियामेंट के मेंबर हुए। तहरीके आजादी के सिलसिले में उन्हें

0: हैं रईसुल अहरार के लकब से याद किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फिरंगी महल लखनऊ के कब्रिस्तान अनवारे बाग में दफन हैं।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम हसरत मोहानी, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 12 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

कार्यक्रम सैनिकों के लिए मैं सभी सैनिक भाइयों का स्वागत। सैनिक भाइयों जय हिंद। रिमझिम रिमझिम बरसती बूंदे और साथ में यादों को भिगोता हुआ ये संगीत लेकर हम हाजिर हैं। और सैनिक भाई अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हर समय, मौसम चाहे जो भी हो, गर्मी सर्दी बरसात का, और अपनी ड्यूटी पे हर समय वो तैनात रहते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है सैनिक भाइयों के लिए कुछ लम्हे लेकर आए ऐसे जिनमें उन्हें थोड़ा सुकून मिले। तो शुरुआत करते हैं इस बेहद ही बरसात के खूबसूरत से गीत के साथ।

सैनिक साथियों, बाहर मौसम बरस रहा है और इधर गीतों की महफिल भी सावन के रंग में रंग चुकी है, तो क्यों ना इस फुहार को थोड़ा और सुरीला बनाया जाए और आपको एक और प्यारा सा बरसात का नगमा सुनाया जाए।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से और 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने इसे ट्यून किया है। साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी। सैनिक साथियों कहते हैं बारिश पुरानी यादों को भी ताजा कर देती है, शायद इसीलिए कुछ गाने सुनते ही कोई चेहरा, कोई जगह, कोई खूबसूरत पल याद आ जाता है। एक और ऐसा ही गीत शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में, लुत्फ उठाइए इस गीत का।

0: सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस समय श्रोता सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं को और सैनिक साथियों को हम सुनवाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम है और सभी का एक बार कार्यक्रम में फिर स्वागत। बारिश का मौसम हो और संगीत साथ हो तो

सैनिक साथियों, कुछ मौसम सिर्फ मौसम नहीं होते, वो एक एहसास बन जाते हैं और बरसात उन्हीं एहसासों में से एक है। इसी एहसास को आगे बढ़ाते हुए लीजिए अब सुनिए ये गीत।

0: स्वागत सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम सुनो सखी में। जी हाँ, एक बार फिर से आ गए हैं हम स्टूडियो में और आज मैं हूँ आपके साथ, आप सबकी अपनी रेडियो सखी रीना। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ सखियों, भागती दौड़ती और व्यस्त भरी इस दुनिया में आजकल हर कोई बीमारियों से ग्रस्त है और जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि फिजियोथेरेपी करवाने की सलाह कई बार डॉक्टर हमें देते हैं। कई बार हमें ये समझ नहीं आता कि फिजियोथेरेपी है क्या, क्या ये सुरक्षित है या हमें करवानी चाहिए। तो इन्हीं सब भ्रांतियों और हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रोशनी चौहान। तो सबसे पहले डॉक्टर रोशनी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है।
1: बहुत थैंक यू जी।
0: रोशनी, ये बताइए कि फिजियोथेरेपी है क्या और महिलाओं के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है?
1: फिजियोथेरेपी एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जिसमें कि जैसे देखा जाता है कहीं महिलाओं को बहुत सी दिक्कतें होती हैं, मेडिसिन से क्योर नहीं होता है, सर्जरीज अगर कोई करवा भी लेता है तो उसके बाद भी फिजियोथेरेपी बहुत असरदायक रहता है। जैसे कि देखा जाता है महिलाएं पीठ दर्द, गर्दन में दर्द, इन सब चीज़ों से जूझ रही होती हैं, तो उसके लिए हम फिजियोथेरेपिस्ट एक ये करते हैं कि जैसे काफ़ी टेक्निक्स हमारे साथ यूज़ होती हैं, जैसे कि मैनुअल थेरेपी हो गया, एक्सरसाइज थेरेपी हो गया, इलेक्ट्रोथेरेपी हो गया, और काफ़ी चीज़ों के हेल्प से हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, स्ट्रेचिंग्स करवाते हैं, ये सब चीज़ें मिलकर एक महिला के लिए बहुत असरदार रहती है।
0: डॉक्टर रोशनी, ये बताइए कि अक्सर महिलाएं परिवार की जिम्मेदारियों में अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देती हैं, क्या उनके शरीर पर इसका असर पड़ता है?
1: जी बिल्कुल, एक महिला जो है वो पूरा घर आराम से चलाती हैं, पर अगर देखा जाता है कि अपनी हेल्थ की बात आती है तो वो उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देती हैं। बात ये आती है कि एक महिला कंटिन्यू लाइक सुबह से लेकर शाम तक एक ही रेपिटेटिव वर्क करती रहती हैं, जिसकी वजह से उनकी गर्दन में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, हाथों में दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं, चलने फिरने के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रख सकते हैं, अपना पोस्चर को सही रख कर, मसल्स को स्ट्रेचिंग्स कर, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक फिजियोथेरेपिस्ट गाइड करता है पेशेंट के लिए, महिलाओं के लिए, कि अगर आप ये चीज़ सजेस्ट मतलब करते हैं, अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपकी लाइफ जो है वो स्मूथली वर्क करती है।
0: जी बिल्कुल, आपने मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि घर में काम करते समय कमर दर्द या गर्दन घुटनों के दर्द से कैसे बचा जा सकता है, तो एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हैं, है ना?
1: जी,
0: और क्या हर उम्र की महिलाओं को अलग अलग तरह की फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज की जरूरत रहती है?
1: महिलाएं जो होती हैं वो काफ़ी मतलब फिजिकल और देखा जाता है हार्मोनल डिसबैलेंसेस से गुजर रही होती हैं। अब शुरुआत करते हैं बच्चों से लेके, लाइक स्कूल की छात्राएं हैं, ज़्यादा देर तक, इवन नॉट गर्ल्स के लिए, लड़के भी ज़्यादा देर तक सिटिंग होती है, बैड पोस्चर पे बैठे रहते हैं, जिस वजह से गर्दन में दर्द रहता है, शोल्डर्स में पेन आना शुरू हो जाती है, पीठ में दर्द होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हम यही बोल सकते हैं कि थोड़ा अपना पोस्चर को करेक्ट रखें, ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन पे ना बैठें। फिर आती हैं हमारे पास एडल्ट वुमेंस, जिसमें हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम देखा जाता है प्रेगनेंट वुमेंस, चाहे वो एंटीनेटल हो या पोस्टनेटल एक्सरसाइजेज में, जैसे कि हम मतलब देखते हैं कि प्रेगनेंसी में महिलाओं को ये कहा जाता है कि आप एक्सरसाइजेस करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए,
0: क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि आप इस समय घर के ज़्यादा काम करें।
1: हाँ, ज़्यादा काम करें, तो उसका सबका एक ही मकसद होता है कि आप अगर ज़्यादा एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप जब पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस, पोस्टनेटल फेज को आप आराम से निकाल सकते हैं, आपको तब कोई दिक्कत नहीं होगी। मोस्टली ये होता है मसल्स हमारी जो होती है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाता है महिलाओं को। उन सब चीज़ों के लिए हम पेशेंट को या महिलाओं को हम कीगल एक्सरसाइजेस सजेस्ट करते हैं, जो कि हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करती हैं। फिर देखा जाता है कि मेनोपोज के बाद महिलाओं को बहुत सी दिक्कतें होती हैं, उसमें हम ये मान सकते हैं कि जब हमारा एस्ट्रोजन लेवल, हार्मोन का जो एस्ट्रोजन लेवल होता है वो जब इंक्रीज़ हो जाता है तो महिलाओं को ऑस्टियोपोरोटिक मतलब वीक हो जाती हैं, हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं, बोन्स टूटने का ज़्यादा डर रहता है, और मसल्स हमारी जो होती हैं वो टाइटनेस में चली जाती हैं, बहुत सी दर्दें मतलब उस उम्र में शुरू हो जाती हैं, और क्रोनिक पेन, जैसे कि मतलब कभी फीमेल्स में ही है कि बहुत टाइम पहले कभी वो गिरे हों, लगी हो और उसमें ध्यान ना दिया हो तो वो क्रॉनिक दर्द बन जाती है, जब वो चीज़ दोबारा उनके ऊपर असर करती है तब वो क्योर नहीं हो पाती है, उसके लिए उनको बहुत दर्द होता है, असहनीय दर्द कह सकते हैं जिसको हम। फिर आता है मेनोपोज में एक सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको बताया, एस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो मतलब डिसबैलेंस होने के कारण ये सब चीज़ें आती है, तो ऑस्टियोपोरोटिक हो जाते हैं। जब ऑस्टियोपोरोटिक होते हैं तो बोन टूटने का डर रहता है, डिसबैलेंस होते हैं जैसे ही तो बोन टूट जाता है, ठीक है। वॉकिंग पैटर्न जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, प्रेगनेंसी में जैसे हमारी बॉडी में भी डिस्टर्बेंस आ जाता है, ठीक है, हमारा गेट पैटर्न वॉकिंग करने का ये डिस्टर्ब हो जाता है। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए हमें फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग्स करना बहुत ज़रूरी है। फिर आती है ओल्ड एज। ओल्ड एज में देखा जाता है महिलाएं बिना सहारे के तो बिल्कुल नहीं चल पाती हैं, उनको चलने के लिए किसी ना किसी का, या तो अपने किसी बच्चों का या कोई भी असिस्टेंट जैसे वॉकर स्टिक्स का यूज़ करना पड़ता है। तो इन सब से बचने के लिए हम उनको यही सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा कैल्शियम विटामिन मेडिसिंस तो ले ही लें, पर साथ साथ वो अपना जितना भी हो सकता है स्ट्रेंथनिंग जो शुरुआत में ही करना अच्छा होता है, क्योंकि अगर हम बुढ़ापे में करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा दर्द ज़्यादा हो और दिक्कत ज़्यादा बढ़े। बट अगर शुरुआत से लाइक अगर हम इन्फैंट से मतलब बच्चों को बता दें कि ऐसी ऐसी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, फिर जैसे एडल्टहुड में किकल एक्सरसाइजेस करना शुरू करें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सब चीज़ें नॉर्मल रहती हैं और हमारी लाइफ जो होती है स्पैन भी बढ़ता है उसका।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर रोशनी, बहुत अच्छी बात है आपने कही। और चलिए, ये तो आपने बातें की कि बढ़ती उम्र की महिलाओं की या जैसे मेनोपॉज आता है उस समय की बातें, आजकल देखा जाता है कि कम उम्र की लड़कियों में भी सर्वाइकल या फिर कमर दर्द या बहुत सी दर्दें हैं, तो वो बढ़ रही हैं, क्या कारण इनका मुख्य हो सकता है?
1: महिलाओं में जैसे मैंने बताया कि सर्वाइकल की दर्द जो होती है अगर देखा जाए तो बैड पोस्चर के कारण ज़्यादा होता है। अगर हम रेपिटेटिव एक ही मूवमेंट में ज़्यादा देर तक बैठे रहें और हमारा बैड मतलब पोस्चर रहे, सिटिंग पोस्चर हमारा सही ना रहे, तो दिक्कत आती है। अगर गर्दन में दर्द रहता है सेम हमारा पीठ में भी दर्द निकलेगा, ये एक बायोमैकेनिक्स होती है। मैं जैसे बोल सकते हैं कि अपना अपना ज्वाइंट की अलग अलग दिक्कतें होती हैं, अगर आपकी गर्दन में दर्द निकलेगी तो ऑटोमेटिकली आपके पीठ में भी दर्द निकलेगी, पीठ में दर्द निकलेगी तो नीज में भी दर्द निकलेगा। तो ये सब चीज़ों तो क्योर करने के लिए वही कि अपना पोस्चर को करेक्ट करें और अपने नीज को स्ट्रेंथनिंग करें, अपनी मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करें। पहले पोस्चर करेक्ट कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो आई लेवल और स्क्रीन का लेवल होता है, जैसे वर्किंग में हम देखा जाता है कि वर्किंग वुमेन्स के लिए अगर सिस्टम पे वो वर्क कर रहे हैं तो उनका सिस्टम या तो ऊपर होता है या तो नीचे की तरफ रखा होता है, पर ऐसा नहीं करना है। हमारा जो आई लेवल और स्क्रीन का लेवल है वो बराबर होना चाहिए, हमारे जो फुट्स हैं मतलब पैर हैं हमारे वो एकदम फ्लोर पर लगने चाहिए ताकि आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहे। तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, होप सो।
0: और लगातार एक पोस्चर में
1: ना बैठे, थोड़ी देर के बाद स्ट्रेचिंग्स करते रहें, गर्दन के लिए, कमर के लिए थोड़ा उठकर वॉक कर लें, ज़्यादा देर तक रेपिटेशंस में ना बैठे रहें।
0: जी जी बिल्कुल। और क्या लंबे समय तक मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं के लिए भी आपकी क्या सलाह रहेगी?
1: लंबे समय तक एक मोमेंट को अगर आप रिपीट कर रहे हो, ज़्यादा देर तक अगर बैठे रह रहे हो तो बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए जैसे देखा गया कि वुमेन्स जो है वो 9 to 5 का अगर जॉब कर रही है, मतलब वो तो स्क्रीन के साथ वर्क कर ही रही हैं, बट अगर बाद में देखा जाता है कि उनको घर पर भी जाकर काम करना पड़ता है, जिससे वो पूरा दिन तो अपना सिटिंग में कर रहे हैं बट उसके बाद जब उनको दिक्कतें बढ़ रही हैं, उसका एक यही रीज़न हो सकता है कि ज़्यादा देर तक रेपिटेशंस में वर्क कर रहे हैं, क्योंकि घर जाके खाना बनाना, वज़न उठाना, बाकी सब समस्याएं इन्हीं सब से ओरिजिन होती हैं।
0: तो बीच में कोई आपकी पसंद का, डॉक्टर रोशनी बहुत अच्छी जानकारी आप दे रही हैं, तो कोई आपकी पसंद का गीत हम प्ले करना चाहते हैं, है कोई आपकी पसंद?
1: हाँ जी, लगा दें आप, मसक्कली लगा दें जी।
0: जी जी, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने चुना है, आपकी पसंद का गीत आपको सुनवा रहे हैं और बाकी की बातें करेंगे इस गीत के बाद।
1: जी।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: Step into the world of Nexa.
5: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
5: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: And now it's yours at an effective price of just 6.75 lakh rupees.
5: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 31st August.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
5: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
6: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
7: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
8: खूबसूरत से गीत और विज्ञापन के बाद फिर से हाजिर हैं हम कार्यक्रम सुनो सखी में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर रोशनी, जो कि बहुत ही अच्छी जानकारी हमें फिजियोथेरेपी पर दे रही हैं। अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और उनसे जानते हैं कि डॉक्टर रोशनी, ये बताइए कि जैसा कि हम आप मेनोपॉज की बात कर रही थी, है ना, उसके बाद जोड़ों के दर्द और हड्डियों की कमजोरी जो है वो बढ़ जाती है, तो ऐसे में फिजियोथेरेपी किस प्रकार से मदद करती है?
9: मेनोपॉज के बाद अगर देखा जाता है कि महिलाएं वीक हो जाती हैं, इनको काफ़ी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगी कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, अगर पेशेंट या महिलाएं हमारे पास आती हैं

0: तो हम उसको मेडिसिन के लिए तो बोलते ही बोलते हैं कि लाइक आप कैल्शियम लो, विटामिन D3 वगैरह इनटेक करो। पर अगर स्ट्रेंथनिंग की बात आए तो हम उनको कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग बता सकते हैं, जिससे कि हमारी पीठ की जो दर्द है वो गायब हो जाए। अगर पीठ दर्द वैसे ही कंटिन्यू अगर रह रहा है तो वैसे फिजियोथेरेपी में मैनुअल ट्रीटमेंट भी होता है, हम मैनुअल ट्रीटमेंट से भी उसको क्योर कर सकते हैं। जैसे मैंने मैनुअल में आपको शुरुआत में ही बता दिया कि ड्राई कपिंग और नीडलिंग वगैरह से करके भी हम इनको ठीक कर सकते हैं। फिर हम पेशेंट को स्ट्रेचिंग के बारे में बताएंगे कि हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच कर सकते हो आप, क्वाड्रिसेप्स का स्ट्रेच कर सकते हो, काफ का स्ट्रेच कर सकते हो, जिससे कि हमारी जो मांसपेशियां अगर टाइट हैं तो वो आराम से स्ट्रेंथन हो जाए। अब स्ट्रेंथनिंग में देखा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारी बोन्स कमज़ोर होंगी तो बैलेंसिंग का भी फैक्टर आएगा,
1: जी
0: बैलेंसिंग भी जाएगी। तो अगर बैलेंस नहीं हुआ प्रॉपर तो फॉल ऑफ रिस्क भी बढ़ेगा, गिरने का डर भी ज़्यादा हो जाएगा। महिलाएं अगर ये चीज़ अगर कंटिन्यू रखती हैं लाइक अपनी प्रेगनेंसी के बाद से या बेबी डिलीवर करने के बाद से, तो मेनोपोज में उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। मेनोपोज में दर्द ज़्यादा होता है, पेट में दर्द ज़्यादा होता है, इन सब चीज़ों के लिए आप स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो दर्द को ठीक करने के लिए और स्ट्रेचेस कर सकते हो।
1: बहुत सी महिलाएं फिजियोथेरेपी करवाना नहीं चाहती हैं, कुछ
0: जी जी
1: डर लगता है कि कैसा होगा, मतलब क्या कुछ होगा, या ये सेफ है नहीं है, तो उस पर डॉक्टर रोशनी क्या कहना चाहती हैं?
0: नहीं, फिजियोथेरेपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, या तो क्योर होगा या तो आपकी मसल स्ट्रेंथन होगी।
1: जी
0: बात अगर देखा जाए कि फिजियोथेरेपी का कोई मतलब डिसएडवांटेज बोला जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, थोड़े टाइम के लिए अगर आप एक्सरसाइजेज शुरू करते हैं तो दर्द रहता है, वो मसल स्ट्रेंथन करते हैं, मसल जब स्ट्रेंथनिंग में आती है या मसल काम पे लगती है तब दर्द होना लाजमी है। पर आप सोचो कि अगर हम गलत कर लेंगे और कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा या कुछ ख़राब हो जाएगा या कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, उसे स्ट्रेंथनिंग ही होगी मसल की। पर
1: डॉक्टर
0: ये है,
1: अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की सलाह भी देते हैं, तब भी महिलाएं सोचती हैं कि हम जाएं या ना जाएं।
0: नहीं, फिजियोथेरेपी तो एक पार्ट है इन सब चीज़ों का। अगर आप फिजियोथेरेपी करोगे तो आपकी मसल्स अच्छी रहेंगी, स्ट्रांग रहेंगी, आपको बुढ़ापे में दिक्कत नहीं होगी, मतलब नॉट ओनली बुढ़ापा पर आपको आपके नॉर्मल ADLs लाइक एक्टिविटी इन डेली लाइफ्स करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। महिलाएं जैसे इग्नोर करती हैं, सेम ऐसे आप कह रहे हो कि जैसे
1: जी
0: इग्नोर कर देंगे या ध्यान नहीं देंगे, वो तो फिर एक खुद का उनका लॉस है कि अगर वो नहीं क्योर होना चाहते। अगर क्योर होना है तो फिजियोथेरेपी तो लाइक ज़रूरी है।
1: फिजियोथेरेपी भी एक इलाज है ना,
0: जी
1: सरल
0: जी
1: शब्दों में ये कहा
0: हाँ जी
1: जाए
0: हाँ
1: तो।
0: जी
1: जी, और ये बताइए डॉक्टर रोशनी की, क्या कई बार महिलाएं क्या करती हैं, पेन हो रहा होता है
0: हाँ
1: बहुत
0: जी
1: ज़्यादा है ना, तो सीधे ही कोई पेन किलर ले लेंगी, दर्द निवारक दवाइयाँ जो है वो ले लेती हैं, तो कब उन्हें ये लगता है कि अब उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए?
0: देखो, फिजियोथेरेपिस्ट जो वर्क करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो मेडिसिन से क्योर नहीं करता,
1: जी
0: वो मैनुअल ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोथेरेपी या एक्सरसाइज थेरेपी से, मैंने आपको बता दिया, पहले ही करता है। अब कईयों की मसल्स बहुत टाइम से दुख रही होती हैं, वो पेन किलर खाते रहते हैं बट उनसे रिलीफ उनको नहीं मिल पाता, तो देखा जाता है कि मसल रिलैक्सेंट्स जो होती हैं वो थोड़े टाइम के लिए ही असर करती हैं,
1: जी
0: बाद में उनको फिर से वो चीज़ ओरिजिन हो जाती है, बाद में फिर से वो दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो हम उसके लिए लाइक फिजियोथेरेपी भी ये नहीं बोलेंगे कि हम आपको एक बार जो आपको चीज़ बता दी वो आपने लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं होता है। थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको वो एक्सरसाइजेस को चेंज भी करते हैं। लाइक मान लो आपकी मसल में पेन हो रहा है, उसको क्योर करने के लिए अब हमें पता है कि मसल में पेन किस वजह से हो रहा है, या तो वो टाइटनेस में गई है या तो वो लूजनिंग में गई है। अगर मसल आपकी टाइटन है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथनिंग करेंगे या स्ट्रेचिंग करेंगे, ये चीज़ बताने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट ही आपको गाइड करता है। टाइटनेस में हम स्ट्रेचिंग्स करते हैं और लूजनिंग में हम स्ट्रेंथनिंग करते हैं। तो जैसे देखा जाता है कि पोस्ट ऑपरेटिव, जैसे सर्जरी होने के बाद फिजियोथेरेपी लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास घुटनों के ऑपरेशंस होते हैं, तो जैसे कि घुटनों के ऑपरेशंस हो गए, एक बार सर्जरी तो डन हो गई, पर उसके बाद उसको मतलब पर्सन को या उस फीमेल को या उस मेल को बैक टू द लाइफ लाने के लिए हमें क्या करना होता है, वो सब चीज़ें जैसे कि घुटना मोड़ना, घुटने में जान डालना, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाना, आइसोमेट्रिक्स करवाना। अब घुटने का ऑपरेशन जब हो जाता है तो थोड़े टाइम तक हमें किसी ना किसी का असिस्टेंस चाहिए होता है, लाइक वो हम स्टिक ही चाहे क्यों ना पकड़ लें। अगर हम स्टिक पकड़ रहे हैं, स्टिक कितने टाइम तक हमें उसके साथ फॉलो करना, वरना तो लोग कहेंगे कि ऑपरेशंस के बाद भी अगर स्टिक के साथ ही चल रहे हैं तो फिर उस ऑपरेशन
1: क्या
0: का
1: फायदा
0: फ़ायदा क्या है।
1: जी?
0: तो उसी चीज़ को मतलब ध्यान में रखते हुए हमें ये चीज़ रखनी है कि स्टिक कब छोड़नी है, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कितने टाइम तक करनी है, कौन सी एक्सरसाइजेस कितने कितने टाइम तक करनी है, कितनी देर तक वॉक करना है आपने आफ्टर सर्जरी।

0: तो कई बार महिलाएं घर पर ही, उनके पास मशीनें होती हैं, उन
1: हाँ
0: पर
1: जी,
0: अगर व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह वो कर लेती हैं, तो ये भी उतने ही प्रभावी होते हैं?
1: मशीनों के लिए तो मैं इतना श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मशीनें अलग अलग प्रकार की होती हैं, और देखो जिसको ज़्यादा नॉलेज होता है इस बारे में वो वही क्योर कर सकता है,
0: जी
1: क्योंकि मशीनों को लगाने का भी तरीका होता है। वैसे तो अगर हम देखा जाए तो हर किसी के पास आजकल मसाजर है, बट अगर वो बोन पर लगाता है तो उस चीज़ का कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि मसाजर तो मसल पे ही वर्क करेगा,
0: वर्क करेगा
1: वो बोन पर वर्क तो नहीं वर्क नहीं करेगा
0: जी।
1: बेसिकली। तो जैसे अगर हम व्यायाम की अगर हम बात करें, एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करें, तो फिजियोथेरेपिस्ट खुद से सजेस्ट करते हैं उनको कि आप एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करो, एक्सरसाइज आप इतने इतने टाइम तक कंटिन्यू करें। जैसे मैं आप कब से मैं ये भी एक चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि हम एक्सरसाइजेस बताते हैं, एक्सरसाइजेस आप फॉलो करोगे तो ठीक रहेगा, एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लाइफ लॉन्ग ठीक रहेगा। जैसे नी का केस ही ले लो, अगर हम नी में लॉन्ग लास्ट तक अब पेशेंट को हम अपने पास तो रख नहीं सकते हैं सर्जरी के बाद, उनको हम घर पर ही सिखाते हैं कि आपने इतने टाइम तक ये एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करनी है। तो बस इन सब चीजों के लिए अगर हम देखा जाए तो व्यायाम भी एक रीजन हो सकता है जो कि खुद क्योर कर सकते हैं।
0: जी, और महिलाओं में पेल्विक फ्लोर की समस्या कितनी आम है, इसके लिए फिजियोथेरेपी कितनी कारगर है?
1: आजकल 30 से 50% महिलाएं जो होती हैं वो पेल्विक फ्लोर की दिक्कत से जूझ रही होती हैं।
0: हमारी कई सखियों को ये पता नहीं है, ये समस्या ये है क्या, मतलब पेल्विक फ्लोर?
1: इसमें अगर हम देखा जाए तो हमारा जो यूरिन इनकॉन्टिनेंस है, लाइक छींकना खांसते टाइम अगर थोड़ा सा यूरिन जो होता है वो
0: पास
1: पास हो
0: जी
1: जाता है, तो इट मीन्स हमारी जो मसल्स हैं वो वीक हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, अगर देखा जाए तो बुज़ुर्ग महिलाओं में ये पता भी नहीं चलता है कि कब जैसे वो यूरिन पास कर चुके हैं। इसका मतलब यही है कि हमारी मसल जो है वो वीक है। अगर हम इसको पहले ही रिकॉग्नाइज कर लें कि ये किस वजह से हो रहा है, और हम यूरिन इनकॉन्टिनेंस के लिए हम कीगल एक्सरसाइजेस बताते हैं। ठीक है, वैसे तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस भी होती हैं, बट जो कीगल एक्सरसाइजेस होती है वो स्ट्रॉन्ग करती है हमारी लोअर कोर एब्डोमिनस मसल्स को, जितनी भी एब्डोमन की मसल्स होती हैं स्ट्रेंदन करती हैं उसको, उसके लिए ये काम करती हैं।
0: और क्या हाई हील्स पहनने से शरीर की बनावट और चलने के तरीके पर भी असर पड़ता है?
1: हाई हील्स से देखा जाता है कि वजन हमारा, जब हम हाई हील्स वेयर करते हैं तो हमारा सारा शरीर का वजन जो होता है वो घुटनों पर आता है। अगर हमारे घुटने स्ट्रांग नहीं होंगे, मसल्स घुटनों की टाइट नहीं होगी, तो ये दिक्कत होना लाजमी है। जैसे कि देखा जाता है जब हम हील्स पहनते हैं तो हमारा वेट नीज पे आता है, जब वो नीज पे आएगा तो हमारी जो बैक की मसल्स होंगी वो भी टाइटन में जाएंगी, टाइटनेस पे जाती हैं, और हमारा बैलेंस डिसबैलेंस होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। जैसे देखा होगा कभी कभार कोई नॉर्मल चलता है, हील वेयर की हुई है तो वो गिर जाता है, वो
0: गिर
1: किस वजह
0: जाता
1: से
0: है।
1: होता है, वो डिसबैलेंस हो जाती है, हमारी मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं की होती है, इस वजह से दिक्कत आती है।
0: यदि किसी महिला की घुटने की सर्जरी हुई हो तो उसे रिकवरी में, उसकी रिकवरी में फिजियोथेरेपी कितनी अच्छी रहती है, कितनी भूमिका निभाती है?
1: देखो सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी महिलाओं के लिए ही नहीं, सबके लिए
0: सबके
1: ही
0: लिए
1: मतलब हेल्पफुल है। देखा जाता है कि हम तो फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो डे वन से ही फिजियोथेरेपी करवाना शुरू कर देते हैं पेशेंट की। वो इसलिए होता है कि जब सर्जरी हुई होती है तो पेशेंट की पूरी रेंजेस होती है, लाइक वो आराम से घुटना पूरा मुड़ जाता है, पर देखा जाता है कि धीरे धीरे करके जब पेशेंट को हम करवाते हैं तो पेशेंट रोकता है, पेशेंट दर्द महसूस करता है, जिस वजह से वो कहेगा कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है। पर एक्चुअल में बात ये होती है कि अगर शुरुआती दिनों में, लाइक आप 15 डेज तक अच्छी फिजियोथेरेपी आप ले रहे हैं, तो आपको लाइफ लॉन्ग आपके नीज जो हैं वो मतलब सुरक्षित रहेंगे, और आपकी नीज ही आपकी लाइक लाइफ स्पैन को बढ़ाते हैं।
0: जी। और डॉक्टर रोशनी ये बताइए कि जो महिलाएं घर पर काम करती हैं, घरेलू महिलाएं या ऑफिस में काम करने वाली महिलाओं के लिए आप अलग-अलग फिटनेस क्या सलाह देना चाहेंगी?
1: घरेलू महिलाओं के लिए तो हम ये देखते हैं, देखा जाता है कि एक ही पोजीशन पे, एक ही पोस्चर पे महिलाएं ज़्यादा देर तक खड़े रह के नंगे पैर काम करते हैं, झुककर काम कर लेते हैं और वेट लिफ्ट कर लेते हैं। तो पहले तो उनको ये सजेस्ट करूँगी कि शूज़ पहना करें, अच्छे सोल वाले जो हमारी बॉडी का पूरा वेट अपने पे कैप्चर कर लें। और देखा जाता है कि अगर वज़न उठा भी रहे हैं तो इतना वज़न नहीं उठाना है जो हमारी बॉडी से ज़्यादा और हमारी बैक पे प्रेशर डालें, और
0: सुपर
1: जिस वजह
0: वुमेन
1: से
0: बनने की कोशिश करती हैं क्योंकि
1: ज़्यादा दिक्कत आए।
0: जी
1: ठीक है, और अगर वर्किंग वुमेन की हम बात करें तो ज़्यादा देर तक एक चेयर पे बैठे रहने से भी गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द हो जाता है, तो मैं तो उनको यही सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा टाइम वॉक कर लें और ज़्यादा देर तक एक पोस्चर

0: पे ना बैठे रहें, वहाँ पे स्ट्रेचेस कर सकते हो आप, जैसे थोड़े थोड़े भी अगर आप सर्वाइकल के कर लो, शोल्डर के लिए कर लो, नीज़ के लिए लेग स्ट्रेट कर लो। वॉकिंग बहुत ज़रूरी है थोड़े थोड़े वक्त के बाद, लाइक 40 to 45 मिनट्स के बाद आपको एक चक्कर ज़रूर लगा लेना चाहिए।
1: लगातार बैठे नहीं रहना।
0: नहीं जी
1: जी बहुत बार आप ये बात कर रही हैं और सुन रही हैं हमारी सखियां भी, है ना, और उम्मीद करते हैं कि उन्हें ज़रूर ये काम करेंगी। ये बताइए डॉक्टर रोशनी कि 40 वर्ष की उम्र के बाद महिलाओं को किन व्यायामों को, किन एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करना चाहिए?
0: 40 के बाद तो वैसे भी ये मेनोपोज वाला फेज आ जाता है
1: जी।
0: तो हम बात ये करेंगे कि स्ट्रेंथनिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके हम कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करें। इसमें हम देखा जाता है कि स्क्वाट्स करें, स्क्वाट्स में यही होगा कि हमारे नीज़ भी ठीक रहेंगे, हमारी बैक भी ठीक रहेगी। फिर ब्रिजिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो हमारी पीठ के लिए ज़्यादा असरदार रहती है, लाइक अगर हम बेड पे रेस्ट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, अपने नीज़ को बेंड करके थोड़ा कमर को आगे पीछे करें तो ऑलरेडी हमारी जो मसल्स हैं वो ठीक रहेंगी इससे।
1: और ऐसी कौन सी 5 गलत आदतें हैं जिन्हें महिलाएं आज से ही अगर छोड़ दें तो भविष्य में कोई उन्हें दर्द या जोड़ों की समस्या से जो वो बच सकती हैं?
0: सबसे पहली चीज़ जो आपने भी कही कि दर्द को नज़रअंदाज करते हैं, दर्द को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। इसके लिए अगर हमें शुरुआत में लाइक 1-2 दिन ही हुए हैं दर्द को ठीक, मतलब शुरू हुए, तो पहले ही आप फिजियोथेरेपी ले लें, पहले ही आप एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दें। फिर ये है कि हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा देर तक खड़े ना रहें, कंटिन्यू एक ही वर्क को प्रमोट ना करते रहें, और पानी ज़रूर पिएं। वाटर इनटेक हमारी बॉडी में अच्छा होना चाहिए, वाटर की कैपेसिटी लाइक जितनी होती है एटलीस्ट हम सफिशिएंट उतनी तो रखें, क्योंकि ध्यान ये दिया जाता है काम में, महिलाएं इतनी बिजी होती हैं कि पानी पीने तक का टाइम नहीं होता है उनके पास।
1: मैंने वही कहा कि सुपर वूमेन बनती है कि मैं ये भी कर लूँगी, अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती
0: जी बिल्कुल। फिर हाई हील्स ना पहने, उसकी जगह फुटवेयर्स वेयर किया करें, अच्छे सोल वाले शूज़ वेयर किया करें, और क्रॉस लेग बिल्कुल नहीं बैठना है जो कि आपको नीज़ में पेन और नीज में दिक्कत कर सकता है।
1: और यदि किसी महिला के पास रोज केवल 15 मिनट हो खुद के लिए,
0: हाँ
1: तो वह कौन से व्यायाम करे जिनसे कि उनकी पूरी बॉडी जो है वो सक्रिय रहे?
0: शुरुआती 3 मिनट के लिए तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि पहले तो वार्म अप करें सर्वाइकल रीजन का, शोल्डर रीजन का और नीज के लिए, लाइक थोड़ा चल लें, थोड़ा गर्दन को अच्छे से लाइक स्ट्रेंथन करें। फिर उसके बाद स्ट्रेंथनिंग पे बात आती है कि हम स्ट्रेंथनिंग कैसे करें गर्दन के लिए, वो स्ट्रेंथनिंग करें 5 मिनट के लिए, फिर 5 मिनट की स्ट्रेचिंग कर रहे, और 5 मिनट के लिए सबसे मेन बात डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एक ऐसी चीज़ है जो कि महिलाएं बिल्कुल भूल जाती हैं, उनको नहीं याद रहता है कि खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालना है। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो यही करूँगी कि अगर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सुबह शाम कर रहे हैं तो आपको कभी भी स्ट्रेस लेने की दिक्कत ही नहीं आएगी।
1: अरे डॉक्टर रोशनी बहुत अच्छी जानकारी दी। अंत में चलते चलते हमारी सुनो सखी की सभी श्रोता सखियों के लिए कोई एक प्रेरणादायक स्वास्थ्य संदेश आप क्या देना चाहेंगे?
0: सखियों के लिए जैसे आप भी कह रहे हैं और मैं भी कह रही हूँ कि वो सुपर वुमेन है, तो सखियाँ जो होती है वो घर संभालने, मतलब घर घर की एक नींव होती हैं, ठीक है, घर संभालना इनकी जिम्मेदारी होती है, और घर सिर्फ एक महिला है जो अच्छे से स्मूथली रन कर सकते हैं। अगर देखा जाए अगर महिला टूट गई तो घर बिखर जाता है, तो अपना ख्याल पहले रखें। ये नहीं कहती हूँ कि मतलब सिर्फ आप अपना ही ख्याल रखें, रखना महिला को सबका ख्याल है, पर देखा जाता है कि महिलाएं अपना ख्याल ना रखकर सबका ख्याल रखती हैं। पहले खुद को स्वार्थ बनाएं इन सब चीज़ों का, आपको कोई दर्द हो रहा है आप पहले इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट लें, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली सब चीज़ें ठीक रहती हैं, क्योंकि एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार बनाती है जी।
1: डॉक्टर रोशनी आप हमारे स्टूडियोज में आई और इतनी अच्छी जानकारी हमारी श्रोता सखियों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच जी।
1: तो इसी बातचीत और जानकारी के साथ सखियों हम चाहते हैं अब आपसे अलविदा कहना, और चलते चलते आपको बता दें इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग हमें दिया विकास पठानिया ने, कार्यक्रम के प्रस्तुत करते हैं जितेंद्र पाल सिंह। प्यारी सखियों नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर 1 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वें ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्ष में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रूपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। सरकार ने इंडिया पोस्ट के नाम पर ऑनलाइन प्रसारित हो रहे उस फर्जी सर्वेक्षण का खंडन किया है, जिसमें 20,000 रुपए का नकद इनाम देने का दावा कर लोगों से उनकी निजी जानकारी साझा करने के लिए कहा जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये सर्वेक्षण फर्जी है। इसके जरिए लोगों को फंसाकर उनकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। प्रादेशिक सेना ने राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथॉन टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य रक्षा, साइबर सुरक्षा और सूचना के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए नए समाधान विकसित करना है। हैकाथॉन की शुरुआत साइबर पीस के सहयोग से की गई है। इसके तहत शिक्षा जगत, उद्योग, अनुसंधान संस्थाओं, सरकारी संगठनों और सशस्त्र बलों की तकनीकी प्रतिभाओं को एक साथ लाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2025 के अपने फैसले में संशोधन करते हुए प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विधि स्नातकों के लिए 3 वर्ष की वकालत की अनिवार्यता की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने 2-1 से निर्णय लिया और पुनः समीक्षा से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी के अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में है। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे, जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,538 जबकि निफ्टी 24,231 पर था। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार अम्स्टरडैम में रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सब मिलकर दिल के उस कोने को फिर से भिगो देते हैं जहां मोहब्बत कभी विदा हुई ही नहीं थी। बहुत ही खूबसूरत विचार हैं ये। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि भारतीय साहित्य में सावन को हमेशा श्रृंगार रस के दोनों पक्षों यानी कि वियोग और संयोग से जोड़कर देखा गया है। कथा की शुरुआत में नायिका का खिड़की के पास बैठना और बारिश की बूंदों के साथ पुरानी स्मृतियों का उभरना, और काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने हमारे इस इबारत के बारे में लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन का महीना तो है, ये जाहिर है, लेकिन गीत भी वैसे ही बजेंगे और हम कितनी भी बार ये गीत सुन लें लेकिन मन नहीं भरता है, तो इसीलिए बारिश नहीं है तो भी धूप के साथ हम आनंद उठाएंगे इस प्रोग्राम का। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हालांकि सावन का महीना अपनी समाप्ति की ओर है लेकिन सुरीला सफर में पूरे माह अलग अलग विषय पर मेला लगा है। कभी झूला, विरह, इंतजार, बारिश की फुहार, खाना पकौड़ी आदि, बहुत मजा आता है। और सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर का ये अंदाज बहुत ही निराला है जो कि हम श्रोताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर मोतियों की तरह पिरो कर रखता है। सच में जिंदगी में सावन की बूंदे की तरह छम छम ये कार्यक्रम रंगारंग हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन संदेशों का। हम आते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स पर भी। फिलहाल हम एक गीत सुनवाने वाले हैं और आप सबने उसका जिक्र किया है अपने कमेंट में, वो बहुत ही प्यारा गीत है, वो आपको सुनवाने जा रहे हैं। और उसके बाद हम आपके एक्सपीरियंसेस, आपके जो अनुभव हैं वो साझा अगर आप हमसे कर सकते हैं। जिस तरह से हमने इबारत लिखी है कि एक शाम वो मौसम, इस तरह का अगर कुछ आपको अपना अनुभव शेयर करना है, लिखना है, लिखें बहुत ही कम शब्दों में ताकि हम शामिल कर पाएँ। चलिए इस प्रोग्राम के दूसरे गीत की तरफ बढ़ते हैं।

बालिका वधू इस फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज। सुरीला सफर है और आपके संदेश हम तक पहुंच रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे संदेश। बालिका वधू, अमित कुमार, आनंद बख्शी, आपने पूरी डिटेल्स भेजी है इस गीत की और इस गीत को बहुत पसंद किया है, ऐसा सबने लिखा है। एक हमारे श्रोता है जिन्होंने इंग्लिश में मैसेज भेजा है और उनका मतलब ये है कि आज के इस प्रोग्राम में बारिश और लव सॉन्ग्स मेन अट्रैक्शन होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारे दूसरे श्रोता हैं जो लिखते हैं, अपना एक अनुभव साझा करते हैं कि शाम का मौसम बहुत बदला हुआ था। पिछले हफ्ते मेरी धर्मपत्नी और मैं बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने कश्मीर गए थे। शाम के समय हम बाबा बर्फानी जी के गुफा पहुंचे थे और इस तरह से मौसम का मज़ा लेते हुए जब वापसी में आ रहे थे तो लैंडस्लाइड होते हुए देखा, तेज बारिश, पत्थर गिरते देखे और यात्रा अगले कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई। जी हाँ, बारिश जहाँ बहुत खूबसूरत लगती है, वहीं अगर अति हो जाए किसी चीज़ की तो परेशानी भी देती है। तो कहते हैं ना कि हर एक चीज़ सही मात्रा में, सही जगह, सही समय सही लगती है, और अगर वो ज़्यादा हो जाए, अति हो जाए, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो ज़रूर देती है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रेमी की तरह बरसात भी हमें काफ़ी दिनों से तरसा रही है और विविध भारती के सुरीले सफ़र में तो पिछले कुछ दिनों से गीतों की बौछार, सावन लगातार छाया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। हम प्रार्थना करते हैं कि बारिश हो, हम भी आपके साथ हैं इसमें। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि बड़े अच्छे लगते हैं ये जो गीत हैं, इसमें वाद्य यंत्रों का बहुत ही कम इस्तेमाल किया गया है, जहाँ शब्दों की गहराई उभर कर आती है और इसीलिए ये आवाज़ की ताजगी, थोड़ी सी हिचकिचाहट इस गाने के जो तरीके में चार चांद लगा देती है। बिल्कुल आपने सही पहचाना और बिल्कुल सही तरीके से इस गाने के बारे में लिखा है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सावन की भीगी रातें इंसान को बाहरी दुनिया के शोर से काटकर खुद से रूबरू कराती है। ये वो जादुई वक्त है जब अंधेरा भारी नहीं लगता, बल्कि बारिश की चादर में लिपटकर हर रूह कुछ देर के लिए थमना चाहती है और सिर्फ सुनना चाहती है बाहर गिरती बूंदों की धुन और भीतर गूंजती अपनी ही खामोशी। बहुत ही खूबसूरती से आपने ये संदेश लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये मेरा पहला पोस्ट है, मैं आपका विविध भारती पूरा दिन सुनता हूँ और सुबह से चालू हो जाता है हमारा ये रेडियो से,

प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, जो भी गाने आते हैं सब इन्हें बहुत पसंद है और पूरा दिन इनका बहुत अच्छे से गुजर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन प्यार भरे संदेशों के लिए, हमें भी आपके ये संदेश पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। संदेशों में हमने एक बात कही थी अति की, तो कहते हैं ना कि इंतज़ार मोहब्बत का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा होता है। बहुत प्यारा लगता है वो वक्त जो किसी के इंतज़ार में, किसी के आने के इंतज़ार में गुजरता है और फिर उससे मिलने की चाह होती है। लेकिन ये कुछ मिनटों का या कुछ देर का होता है तो इंतज़ार अच्छा लगता है, अगर यही इंतज़ार बहुत घंटों का हो जाए, दिनों का हो जाए, बहुत ज़्यादा वक्त का हो जाए तो अच्छा नहीं लगता, कहीं ना कहीं झुंझलाहट आ जाती है। तो क्यों ना इस बारे में बात की जाए। इंतज़ार क्या आपने भी किसी को करवाया है, लंबा इंतज़ार, और क्या किसी ने आपका लंबा इंतज़ार किया है, उस बारे में कुछ अनुभव साझा कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपके संदेश पढ़ने में। तो इंतज़ार करना या करवाना दोनों ही अजीब सी उलझन भी है और कष्टदायी भी है। तो आपने किसी को इंतज़ार करवाया हो या आपका किसी ने इंतज़ार किया हो बहुत लंबे समय तक, तो ज़रूर लिख भेजें, मैं इंतज़ार कर रही हूँ कमेंट बॉक्स पढ़ने का। तब तक दिल ये क्या करे,

बेचारा दिल क्या करे। खुशबू फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। गुलजार ने इसे लिखा और आर डी बर्मन की तर्ज थी। जब तक ये गाना प्ले हो रहा था तब तक हम आपके कमेंट्स पढ़ रहे थे, आपके संदेश पढ़ रहे थे, यही दिल करे, और आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे नागपुर में बारिश बरसने के बाद

गई थी, लेकिन आज बारिश का मौसम बना हुआ है। आकाश में काले काले बादलों का जमघट है। बहुत खूब, तो आप इस मौसम के साथ इन गीतों का आनंद उठाइए। हमारे एक और श्रोता लिखती हैं कि उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है कि वो क्या लिखें, क्योंकि विविध भारती पर आते तो हैं लेकिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बीपी और सरदर्द की शिकायत है तो कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या लिखना है। लेकिन नमस्कार उन्होंने लिखा है, और हमारा भी आपको नमस्कार, और हम चाहते हैं कि आपकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए और प्यारे प्यारे गीतों का साथ बना रहे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन की याद लिखते हैं वो, कि हम खेलते थे और माँ के डांट खाने के बाद घर पर आते थे और फिर भगवान के सामने बैठ जाते थे, प्रार्थना करते थे। दादी की नज़र हम पर कड़ी हुआ करती थी, बहुत डर लगता था और भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमें ज़्यादा डांटना पड़े। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इंतज़ार की जब बात कही गई है तो इंतज़ार केवल किसी व्यक्ति का नहीं होता है, ये वक्त के बदलने का होता है, कामयाबी का होता है या किसी अच्छे दिन के आने का भी होता है। ये जीवन को एक मकसद देता है कि आगे कुछ बेहतर होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, इंतज़ार किसी का भी हो सकता है, क्योंकि ज़िंदगी के हर एक पड़ाव में हमारी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो बदलती हैं। तो कब, किस समय, किसका इंतज़ार है, ये ज़रूर अलग अलग होता है। तो आप हमारे साथ अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और कुछ बेहतरीन, कुछ दिलचस्प किस्से भी छोटे छोटे यानी कि कम शब्दों में हमें भेज सकते हैं, जिसे हम यहाँ पर पढ़कर सुना सकें। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि बेचारा दिल ज़रूर आएगा, ऐसा उन्हें लगा था कि ये गाना ज़रूर प्ले किया जाएगा। चलिए, हम भी खुश हैं कि आपकी ये पसंद हमसे मेल खाती है। फिलहाल चलते हैं हम अगले गीत की तरफ।

0: बड़े दिल वाला ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आरडी बर्मन की तर्ज और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुरीला सफर आप सुन रहे हैं मेरे यानी आरजे अनुराधा के साथ इस वक्त, और हम बात कर रहे हैं इंतज़ार की। आपके संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं इंतज़ार वाले। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जब कभी हम घूमने जाते हैं तो मैं और मेरा मित्र या तो मुझे काम आ जाता है तो वो इंतज़ार करता है, उसे बहुत काम आ जाता है तो मुझे बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। थोड़ा चिढ़ ज़रूर जाता हूँ, पर हम दोनों एक दूसरे पर चिढ़ जाते हैं, पर फिर प्यार भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इंतज़ार से। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि करीबन 5 साल पहले उन्हें एक काम हुआ था, एक काम के सिलसिले में उन्हें कहीं जाना पड़ा था दफ्तर में, और किसी बड़े अधिकारी ने उन्हें 5 घंटे का इंतज़ार करवाया, लेकिन इंतज़ार किया, लेकिन आखिरकार वो काम करके ही लौटे। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि जितना हंसा था उससे ज़्यादा उदास हूँ, आँखों को इंतज़ार ने सावन बना दिया है। ये हमारे गीत सुनकर इन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं। हमारे एक और श्रोता लिखती हैं कि जब कभी पहले बारिश होती थी जब वो छोटी थी और बाबा काफ़ी लेट आया करते थे, उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, फ़ोन भी कुछ ही घर में हुआ करते थे, तो माँ काफ़ी चिंतित हो जाती थी और भगवान के सामने बैठ जाती थी, प्रार्थना करती थी। बाबा आते थे काफ़ी लेट भीग कर, और लेकिन उनके आने के बाद से टॉवल से पहुँच कर उन्हें और ये चाय वगैरह की सेवा में लग जाती थी, तो उस तरह की एक याद है उन्हें बारिश से रिलेटेड। जी हाँ,

हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि इंतजार एक बहुत ही बोझिल प्रक्रिया है। जिंदगी के रंग बिरंगे लिबास में इंतजार का सुराग नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा होता कहाँ है। यहाँ तो हर पल दूसरे का इंतजार है। रातों को नींद का इंतजार है, सुबह को सुकून का, बारिश को मौसम का इंतजार है, मौसम को महीनों का, मुस्कुराहट को खुशी का इंतजार है, खुशी को सफलता का। जी हाँ, बहुत ही सुंदर संदेश इन्होंने लिखा है कि हर किसी को हर किसी का इंतजार है। हालांकि इंतजार किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमें इंतजार तो करना पड़ता है सही वक्त का। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, किसी शादी का किस्सा लिखते हैं कि दुल्हन विदा हो ही नहीं रही थी और बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, बहुत महीनों और सालों के बाद गौना हुआ और उसके बाद उनकी विदा की गई। और ये जो इंतज़ार है, लंबा इंतज़ार, उन्हें अभी तक याद है और ये रिवाज के चलते ऐसा हुआ था। जी हाँ, रीति रिवाज तो हमें फॉलो करने ही होते हैं। हमारे एक श्रोता है जो फिलीपीन से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और वो लिखते हैं कि बहुत दिनों की बारिश के बाद सूर्य देवता निकले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, हम इंतज़ार की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों का। और तो हम क्यों इंतज़ार करवाएं आपको अगले गीत का, सुनवाते हैं झट से अगला गीत।

देवता फिल्म से ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में, गुलजार ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। आप सुन रहे हैं इस वक्त सुरीला सफर। सुरीला सफर में आपके संदेशों का इंतजार है। जैसे कि मैंने कहा कि इंतजार

हर शब्द जब आता है तो ये मोहब्बत का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा माना जाता है। बहुत ही प्यारा लगता है जब वो वक्त, वो लम्हे, किसी के आने की इंतज़ार हम करते हैं, लेकिन अगर ये लम्हे और ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, घंटों महीनों के हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कष्टदायी होते हैं, तकलीफ देते हैं। तो क्या आपने भी कभी किसी को इंतज़ार करवाया है या किसी ने आपका इंतज़ार किया है? ये अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं और कुछ संदेश बहुत ही दिलचस्प है कि किसी को इंतज़ार करना करवाना कितना अलग है। जब इंतज़ार लंबा होता है तो यकीनन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है। आपके मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो सीनियर सिटीज़न हैं, लेकिन अपने बचपन की याद की अगर बात करें तो समर वेकेशन यानी कि गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार उन्हें हमेशा रहता था, और ये इंतज़ार बहुत ही सुख देने वाला होता था, बहुत ही आनंदित करने वाला होता था। जी हाँ, एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि कोलकाता में इस वक्त हैं वो, और वहाँ पर पंडाल की तैयारी हो चुकी है, लेकिन जब तक बारिश होती चली जाती है तो ये जो इंतज़ार है कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, ये कहीं ना कहीं उलझन भरा है। तो इंतज़ार हर एक परिस्थिति में बहुत अलग होता है, कभी अच्छा होता है और कभी बुरा होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हमें इंतज़ार रहता है कि आप हमारे गीत कब हमारे इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो लीजिए, आपका जो कमेंट है, आपके जो संदेश है, इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

चुपके चुपके, ये था फिल्म का नाम जिसे ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा, एस वी वर्मा की तर्ज थी। ये गीत का संगीत दिया था एस डी बर्मन ने। चुपके चुपके फिल्म का नाम एक बार फिर से आपको बता दें। आपके संदेशों से भर चुका है कमेंट बॉक्स और मैं देख रही हूँ कि किसका संदेश पढ़ा जाए, क्योंकि एक साथ ही खूब सारे संदेश आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उनका पसंदीदा गीत बज चुका है तो अब वो प्रोग्राम सुनेंगे या नहीं, लेकिन वो इस प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे थे। नहीं, हम चाहेंगे आप ज़रूर ये प्रोग्राम सुनें और अंत तक सुनें, बने रहें विविध भारती के संग। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज इस प्रोग्राम में इस इबारत ने तो सावन की झड़ी ही लगा दी है और खूबसूरत से गीत सुनने को मिल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारिश नहीं है, देवभूमि, द्वारका, जामनगर और पोरबंदर जैसे तहसील में बारिश नहीं है, इंतज़ार हो रहा है। बिल्कुल इंतज़ार कीजिए और इंतज़ार फल देता है, बिल्कुल फल देता है। और हम अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे, अगले गीत की तरफ चलेंगे। तो कुछ बताइए कौन सा गीत है, कमेंट में इंतज़ार रहेगा।

सुलक्षणा पंडित और बप्पी लहरी की आवाज़ों में गीत चलते चलते फिल्म से अभी आपने सुना। अमित खन्ना ने इसे लिखा, बप्पी लहरी का संगीत। हमारे श्रोता लिखते हैं कि इस समय बनारस में धूप खिली हुई है और हम लोग आ ही गए हैं अपनी सुरीली धड़कन के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरे श्रोता लिखते हैं कि प्यार में किसी का इंतजार करना इससे बड़ी परीक्षा और क्या हो सकती है। इस अनुभव से रूबरू हो चुका हूं मैं। 7 साल तक उसका इंतजार करना पड़ा, लेकिन मिलने के बाद जो सुकून का अनुभव हुआ उसको बयान नहीं किया जा सकता। एक और श्रोता लिखते हैं कि भाई हम तो कैब वाले का इंतज़ार करते हैं, बुक करो कैंसिल कर देता है, और बहुत ज़रूरी कहीं पहुंचना पड़ता है, वो इंतज़ार ज़रूर करना पड़ता है, तो हार के बस पकड़ी है। इसका भी अलग ही मज़ा है ना। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हमें सुरीला सफ़र का इंतज़ार रहता है, उसके बाद हेलो सहेली का भी इंतज़ार रहता है, तो विविध भारती के जितने प्रोग्राम हैं एक के बाद एक दूसरे का इंतज़ार हमें ज़रूर रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंतज़ार करना सबके वश की बात नहीं होती। कोयल पूरा साल सिर्फ बसंत ऋतु का इंतज़ार करती है ताकि अपने सुहाने सुरीले बोलों से वादियों में अपनी आवाज़ घोल सके। जी हाँ, एक और श्रोता ने लिखा है, जाना कहाँ है इस गीत के बारे में। बप्पी दा ने इस गाने में बिल्कुल अलग अंदाज में ऊंचे और रफ नोट्स का इस्तेमाल किया है, जो कि बेहद आकर्षक है।

और उनकी जो आवाज़ है गाने की बीट्स के साथ पूरा न्याय कर पाती है। साथ ही सुलक्षणा जी की आवाज़ भी अत्यंत मधुर लगती है और इस गाने का जो आलाप है वो हिस्सा बहुत ही अलग ही जादू बिखेर देता है। जी हाँ, बिल्कुल, हम भी इस चीज़ से बिल्कुल इत्तफाक रखते हैं और अब बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत स्वीकार किया मैंने फिल्म से, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे भरे संदेशों का। हम मिलेंगे जल्द ही, और सुरीला सफ़र से अनुराधा को दीजिए इजाज़त।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 42वीं कड़ी।

1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार कांग्रेस के मंच पर वंदे मातरम का गायन किया था।

0: सन 1900 से आगे हर अधिवेशन की शुरुआत वंदे मातरम से ही करने की परंपरा बन गई। उस वर्ष दक्षिणा रंजन सेन ने वंदे मातरम की संगीत रचना की थी। आगे थोड़े ही समय में शास्त्रीय संगीत जगत के पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और उनके शिष्य ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित विनायक बुआ पटवर्धन और पंडित रामकृष्ण बुआ वजे जैसे गायक अपने गायन के माध्यम से राष्ट्र सेवा की भावना से अधिवेशन में अपनी वंदे मातरम की गायन सेवा देने लगे। इसी काल में लोकमान्य तिलक के निधन के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर गांधी जी के हाथों में आ गई। धीरे धीरे कांग्रेस की नीतियां बदलती गईं। कांग्रेस के हिंदू नेता धर्म निरपेक्षता का आग्रह कर रहे थे तो कुछ मुस्लिम नेता धर्म प्रेम को प्राथमिकता दे रहे थे। इसका परिणाम कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रसंग के रूप में सामने आया।
1: उन्नीस में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन हुआ था। अली बंधुओं में से मौलाना मोहम्मद अली इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पहले ही दिन मंच पर कांग्रेस के सभी नेता अध्यक्ष सहित उपस्थित थे। अधिवेशन शुरू होने की घोषणा हुई। दर्शकों में से एक ऋषि तुल्य व्यक्ति मंच पर आ रहे थे। दृष्टि कमजोर हो जाने के कारण उन्हें किसी का सहारा लेना पड़ रहा था। वो व्यक्ति थे भारतीय शास्त्रीय संगीत के भीष्माचार्य पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। मंच पर बैठे सभी लोग उठकर खड़े हो गए। सीने तक लटकती हुई दाढ़ी, सिर पर ऋषियों की तरह बंधे हुए केश, ऐसे शुभ्र वस्त्रधारी पंडित जी प्रसन्न चित्त से वंदे मातरम गाना शुरू करने ही वाले थे। तभी अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने अप्रत्याशित रूप से उन्हें रोकते हुए कहा, वंदे मातरम मत गाइए, मेरे धर्म में संगीत निषिद्ध माना गया है।
0: अचानक घटी इस घटना से मंच पर मौजूद कांग्रेस के प्रमुख नेता हक्के बक्के रह गए। अध्यक्ष का ऐसा कहना पंडित जी जैसे भारत के सर्वश्रेष्ठ गायक का अपमान तो था ही, साथ ही खुदीराम बोस से लेकर अनेक क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान से सिद्ध किए हुए तथा बंगाल के विभाजन को रद्द करवाने वाले इस राष्ट्र मंत्र का भी अपमान था। सामने खड़ा जनसमुदाय स्तब्ध था। पंडित जी ने अपने ऋषि तुल्य स्वभाव के अनुसार जरा भी विचलित हुए बिना शांत फिर भी स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया,
2: माननीय अध्यक्ष महाराज, ये कांग्रेस का मंच है, किसी भी धार्मिक समुदाय का मंच नहीं है। मैं

0: में हुआ था।
1: एक अत्यंत महान कलाकार द्वारा अपनी अस्मिता को बनाए रखते हुए अपनी कला के माध्यम से लोगों को अपनी राष्ट्रभक्ति के दर्शन कराना, ये बिल्कुल नई बात थी। जिस काल में कलाकार राजनीति के ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते थे या बाहरी दुनिया से अधिक अपनी कला की दुनिया में ही रमते थे, उस काल में पंडित पलुस्कर ने जो धैर्य दिखाया वो अतुलनीय कहा जाना चाहिए। 1902 में भारत में संगीत की पहली ध्वनि मुद्रिका यानी ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्रकाशित हुई। ध्वनि मुद्रण के इस पहले दौर में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की तरह ही भारत के अनेक श्रेष्ठ गायकों ने रिकॉर्ड के लिए गायन नहीं किया था। इसके कई कारण थे, परंतु उन कारणों से उनके समय में रिकॉर्डिंग तकनीक का आविष्कार हो जाने पर भी उन्होंने रिकॉर्ड के लिए गायन न करने के कारण आज के शोधार्थियों के लिए, अभ्यार्थियों के लिए, अध्येताओं के लिए और संगीत प्रेमियों के लिए उनके गायन के बारे में लिखे गए संगीत संबंधी लेखों से, स्मृतियों से ही उनकी गायकी का उन्हें दर्शन मिलता है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा किया गया वंदे मातरम का राग काफी में नोटेशन आगे उनके संगीत अध्यापन की विरासत को समर्थ रूप से आगे बढ़ाने वाले उनके शिष्य पंडित विनायक बुआ पटवर्धन ने प्रकाशित किया। पंडित विनायक बुआ की आवाज में यह दुर्लभ ध्वनि मुद्रण घोष महर्षि बापूराव दाते ने स्वयं किया था।

काल के समय में यही संगीत रचना विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे द्वारा एक संगीत समारोह में प्रस्तुत की गई। उस समारोह का तथा आज की पीढ़ी के गायक पंडित शौनक अभिषेकी और साथियों के स्वर में ध्वनि मुद्रण प्रकाशित हुआ है। पहले सुनते हैं विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे के स्वर में वंदे मातरम की झलक।

0: पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने जब वंदे मातरम को स्वरबद्ध किया था, उन्हीं दिनों में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन को एक नई दिशा मिल रही थी।
1: जुलाई 1937 में चुनाव हुए, प्रांतीय मंत्रिमंडलों की स्थापना हुई, 11 में से

0: 8 प्रांतों में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारें आईं। उनमें से मद्रास विधानसभा के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के गायन से ही हुई थी। मद्रास विधानसभा के अध्यक्ष सांबुमूर्ति ने दैनिक सभा कार्य की शुरुआत वंदे मातरम से ही हो ऐसा निर्णय अंग्रेजों के विरोध को दरकिनार करके लिया था।
1: इन सभी मंत्रिमंडलों की मुख्य बागडोर अंग्रेजों ने अपने हाथ में रखी हुई थी, फिर भी थोड़े बहुत अधिकार कांग्रेस को भी थे ही। मुस्लिम लीग के कुछ उम्मीदवार चुनकर आए, परंतु उन्हें बहुत कम सीटें मिली, इसलिए बैरिस्टर जिन्ना ने कांग्रेस पर आलोचना शुरू कर दी और उसमें वंदे मातरम को भी मुख्य निशाना बनाया।
2: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
3: आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 42वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
4: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
5: मिलो जो तुम्हें बताए।
4: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
6: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
4: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची।

0: अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसपी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
3: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
4: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
0: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने

0: के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से ये फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
1: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
0: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
2: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितम्बर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमेरिकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जल मार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
4: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमेरिकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमेरिका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
5: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: भारत के त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशु शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज अम्स्टरडैम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे जंगली फिल्म से, हसरत जयपुरी ने से लिखा।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग जरा। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग जरा।

चलती का नाम गाड़ी, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। एसडी बर्मन की तर्ज और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में गीत मधुमती फिल्म से अभी आपने सुनी। सलिल चौधरी का संगीत था, शैलेंद्र ने इसे लिखा।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत बंदिनी फिल्म से अभी आपने सुना, गुलजार ने इसे लिखा एसडी बर्मन की तर्ज। इस गीत के साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। ये माइक किस

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश की 14वीं विधानसभा का मॉनसून सत्र आज शिमला में शुरू हुआ। सत्र के पहले ही दिन सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्यवाही राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई, जिसके बाद विपक्षी दल भाजपा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने की मांग उठाई। इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने नियमों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय गीत सत्र के समापन पर गाने की बात कही, जिस पर विपक्ष नहीं माना और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा होते देख विधानसभा अध्यक्ष ने 10 मिनट में ही सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद सत्ता पक्ष विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ सदन

0: से बाहर आ गया। बाद में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सदन में राष्ट्रगान का अपमान किया है और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान सत्र की शुरुआत में और राष्ट्रीय गीत सत्र के अंत में गाया जाता है, लेकिन भाजपा नियमों के विपरीत केवल राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रीय गीत का मुद्दा उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा विधानसभा की परंपराओं का सम्मान नहीं कर रही है।
1: भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान, अध्यक्ष मोदी ने राष्ट्रीय गान गाने के लिए सब उठाया और पहले ही हाथ खड़ा कर दिया कि राष्ट्रीय गान गाने से पहले हमें इसके राष्ट्रीय गीत के बारे में बताया जाए। विधानसभा की परंपरा रही है कि राष्ट्रीय गान गाया जाना। जो पार्टी राष्ट्रीय गान का अपमान कर सकती है, राष्ट्रीय गान के अपमान में विरोध कर सकती है, हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी, हिमाचल प्रदेश के विधायक दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ इसको कभी सहन नहीं करेंगे।
0: दूसरी ओर भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत के अपमान का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा ने सदन में राष्ट्रीय गीत गाने की विनम्र मांग की थी, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय गीत के सम्मान के प्रति गंभीर नहीं है और इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है।
2: एक्ट अभी पार्लियामेंट में पारित हुआ है, उस एक्ट और नियम को पूरा देश पालना कर रहा है। 15 अगस्त अभी राष्ट्रीय एक नेशनल इवेंट था, उस इवेंट को स्वीकार किया गया। परंपराएं तो बनाई जाती है और वंदे मातरम क्या है, मैंने पहले भी कहा है, हे मातृभूमि तुम्हें हम श्रृंगार के रूप में, हम इस मातृभूमि के पुत्र देखना चाहते हैं। अब कुछ धर्मों के लोगों को ये ठीक नहीं लगता तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपना मन, वाणी और व्यवहार बदलना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत
0: इस बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने स्पष्ट किया कि लोकसभा सहित कई विधानमंडलों में सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान से और समापन राष्ट्रीय गीत करने से नियम है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया, जिस कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
3: जो राष्ट्रगीत है, जब राष्ट्रगीत लोकसभा में शुरुआत में उस समय की सरकार के द्वारा अडॉप्ट हुआ, लोकसभा के अंदर उसको गाया गया, उस समय की प्रोसीडिंग देखो आप, और वहां पर आम सहमति हुई, कंसेंसस हुआ अमंग द ऑल पॉलिटिकल पर्सन, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और उस कंसेंसस के ऊपर तीनों चार पहरे रखे गए और जो बाकी का जो पार्ट था उसको उसका हिस्सा नहीं बनाया गया। अब कानून के माध्यम से वर्तमान केंद्र सरकार उसको एनफोर्स करना चाह रही तो करे, वो तो जो संस्थान है तारीखों में होगा। विधानसभा अपने नियमों पर चलती है या अपनी परिपाटी पर चलती है।
0: राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से मुलाकात कर जनजातीय क्षेत्रों में नौतोड़ भूमि के लंबित मामलों को मंजूरी देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में करीब 20,000 नौतोड़ मामले लंबित हैं और ये अधिकार 20 बीघा से कम भूमि वाले लोगों को दिया जाना है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्यपाल के पास संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत इसकी शक्ति है और पूर्व सरकार ने इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नौतोड़ मामलों की मंजूरी सीमावर्ती इलाकों से पलायन रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इससे बंजर जमीन भी आबाद होगी। केंद्र सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। इसकी शुरुआत सितंबर 2018 में की गई थी। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए दामों में स्थिरता बनाए रखने के साथ साथ किसानों को उनके परिश्रम का उचित मूल्य दिलाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्षों में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
4: प्रादेशिक समाचार के बाद आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है भवन एवं अन्य निर्माण कामगारों के लिए संबल बना कल्याण बोर्ड। वाचक स्वर है राजकुमारी चंदेल का।
5: हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हजारों श्रमिक परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिल रही है। श्रमिक वर्ग को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित विभिन्न

0: फीचर निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों और उनके आश्रितों को जीवन के कठिन समय में सहारा प्रदान करना है। बोर्ड द्वारा संचालित विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 968 लाभार्थियों को लगभग 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि वितरित की गई है, जिसमें श्रमिक परिवारों को बेटियों और बच्चों के विवाह जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में बड़ी राहत मिली है। इसी तरह शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 503 लाभार्थियों को लगभग 1.5 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में दी जा रही ये सहायता श्रमिकों के बच्चों को बेहतर भविष्य निर्माण में न केवल सहायक सिद्ध हो रही है, बल्कि आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ने की स्थिति को रोकने में भी ये योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था पेंशन योजना के माध्यम से 560 श्रमिकों को लगभग 41,22,000 रुपए की सहायता प्रदान की गई है। वृद्ध श्रमिकों के लिए ये योजना सम्मानपूर्वक जीवन यापन का आधार बन रही है, जबकि दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत 25 पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान कर उन्हें 2,69,000 रुपए का आर्थिक संबल दिया जा रहा है। इसके अलावा निर्माण कार्यों में जुटे श्रमिकों के जीवन में आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए मृत्यु व अंतिम संस्कार सहायता योजना भी चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 116 लाभार्थियों को 2,41,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा मातृत्व एवं पितृत्व लाभ योजना के माध्यम से 52 श्रमिक परिवारों को 5,45,000 रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। बेटी जन्म उपहार योजना भी समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। इसी योजना के अंतर्गत पात्र 18 बेटियों को 9,00,000 रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। आवास से जुड़ी योजनाओं के तहत मुख्यमंत्री आवास योजना एवं विधवा आवास योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को सहायता दी जा रही है। इन योजनाओं के तहत 8 पात्र परिवारों को 8.5 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाई गई है। चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत भी अनेक श्रमिकों को उपचार के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध करवाया गया है, जिससे गंभीर बीमारियों के दौरान परिवारों पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ कम हुआ है। इस योजना के अंतर्गत 63 पात्र लाभार्थियों को लगभग 6,00,000 रुपए से अधिक की आर्थिक मदद प्रदान की गई है। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाएं श्रमिकों के जीवन में आशा और सुरक्षा का आधार बनकर उभर रही है। सरकार की ये पहल न केवल श्रमिक वर्ग के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में सहायक है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गो को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। बिलासपुर में प्रदेश सरकार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाओं को पूरी गंभीरता के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्रों को लाभान्वित किया जा सके। इसी के साथ सामयिक चर्चा समाप्त हुई। नमस्कार।
1: आकाशवाणी शिमला FM शिमला 103.7 MHz और आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। विषय था भवन एवं अन्य निर्माण कामगारों के लिए संबल बना कल्याण बोर्ड। वाचक स्वर था राजकुमारी चंदेल का। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: माया जाधव।
0: माया जी कहाँ से बात कर रही हैं?
1: नासिक।
0: नासिक से बोल रहे हैं आप?
1: मैं बचपन से कार्यक्रम सुनती हूँ विविध भारती से, मैं बहुत ही बड़े फैन हूँ।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी आप सभी सहेलियों के फैन हैं, क्योंकि आपकी
1: हाँ
0: कॉल का हम लोग हमेशा हर मंगलवार को इंतजार करते हैं,
1: हाँ
0: है ना? तो कौन सा गीत सुनना चाहती हैं
1: मैं
0: आप, बताइए।
1: पारस मणि फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ, आज का हुआ रानी चेहरा।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही के पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ गए हैं कॉल का इंतजार करते हुए। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: नीता महाजन, भवानी सागर, देवास से।
0: जी, देवास से बात कर रही हैं आप, भवानी सागर से। तो अपने बारे में कुछ बताइए नीता जी। राखी का त्योहार आने वाला है, रक्षाबंधन का, तो क्या क्या तैयारियां चल रही हैं घर पर?
1: रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है तो थोड़ी बहुत घर में साफ सफाई करेंगे, मिठाई वगैरह बनाएंगे।
0: अरे वाह, तो क्या मिठाई बनाने वाली हैं आप?
1: चक्की बना सकती हूँ मैं बेसन की।
0: हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है उस तरफ की और बड़ी स्वादिष्ट ये मिठाई होती है ना? जी, तो घर में और कौन कौन है अपने बारे में भी कुछ बताइए।
1: तो मेरी तीन बेटियां हैं, तो दो की शादी कर चुकी हूँ मैं और एक पढ़ाई कर रही है अभी।
0: जी, तो दो बेटियों की शादी हो गई है, तो वो आने वाली हैं मायके?
1: हाँ, मायके आएगी ना, दोनों बेटियां आएगी।
0: जी, और छोटी बेटी किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं?
1: वो बीकॉम कर रही है।
0: अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब तो आपको इंतज़ार होगा अपनी दोनों बेटियों के आने का।
1: हाँ, वही इंतजार चल रहा है ना।
0: तो मन खुश रहता होगा इन दिनों।
1: हाँ, मन खुश रहता है ना।
0: और आज आप
1: हाँ,
0: ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: नदिया के पार का, कौन दिशा में चला रहे।
0: तो चलिए सुनते हैं नदिया के पार फिल्म का ये गीत, कौन दिशा में लेके चला रे बटुया।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं रेखा वर्मा बोल रही हूँ। मैं उज्जैन से।
0: उज्जैन से रेखा वर्मा, क्या चल रहा है इन दिनों? और रक्षाबंधन का त्योहार बिल्कुल नजदीक आने वाला है, घर में बहुत
1: बिल्कुल
0: सारी
1: सर,
0: तैयारियां होती हैं।
1: रक्षाबंधन की तैयारी चल रही है मैम। अभी हम राखी वगैरह लेके आ गए हैं मार्केट से, क्योंकि फिर उज्जैन में काफी भीड़ है यहाँ पर।
0: इस बार तो कई तरह तरह की राखियां हैं बाजार में,
1: हाँ,
0: हमने भी
1: बहुत
0: देखी।
1: सुंदर सुंदर राखियां हैं मैम, और हम फर्स्ट में ही जाके ले आए हैं ताकि और अच्छी मिल जाए हमको।
0: अच्छा, तो आप थोड़ा पहले ही ले आई ताकि बाद में ना भीड़
1: जी,
0: मिले और राखियों का चुनाव भी खूब अच्छे से आप कर
1: खूब अच्छे
0: सके।
1: से कर सकते हैं अपन।
0: हाँ, ये बात तो सही है। जीवन में क्या चल रहा है, क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
1: मैडम, मैं हाउसवाइफ हूँ
0: अच्छा,
1: बस, मतलब बढ़िया है, सब कुछ नहीं, और पार्लर चलाती हूँ, घर में ही चलाती हूँ बस।
0: बहुत सुंदर बात है ये तो। और रक्षाबंधन से आपके कोई यादें जुड़ी हों, बचपन की कोई बात, या इस दफा आप क्या करने वाली हैं, जाने वाली हैं मायके या भाई आएंगे, क्या है
1: नहीं
0: वो
1: नहीं
0: बताइए।
1: मैम, जाऊंगी मैं। क्या है कि एक ही बहन हूँ 6 भाइयों के बीच में, तो
0: अरे वाह, तो घर में तो सब
1: इसलिए।
0: आपको बहुत भाग्यशाली कहते होंगे, है ना?
1: जी जी मैम,
0: ऐसा हो जाता है जहाँ पे भाई हो अधिक और बहन एक हो, उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है।
1: जी मैम,
0: तो कहाँ है आपका मायका?
1: मेरा मायका मैम ब्यावरा बचोर
0: अच्छा,
1: राजगढ़ जिले में है।
0: तो आप मिठाई मेवे सब कुछ लेकर जाएंगी?
1: बिल्कुल मैम,
0: जी।
1: बहुत इंतजार रहता है, भतीजी उनको भी, भतीजे उनको भी, मेरा वो आने वाली है मैम। कितनी भी उम्र हो जाए, मायके में जाने के बाद व्यक्ति वापस वैसा के वैसा, ऐसा लगता है जैसे अपन बचपन में आ गए हैं वापस।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: मेरी मम्मी नहीं है, भाभियां हैं, लेकिन मेरी भाभियां ऐसी हैं मैम कि अभी तक राखी करने वो नहीं जाती हैं, क्योंकि मैं जाती हूँ ना यहाँ से।
0: यानी कि भाभी ने माँ का रूप ले लिया
1: जी मैम,
0: है ना?
1: वो
0: तो
1: इंतजार करती है दीदी आ जाएंगी, उसके बाद में फिर बाद में चले जाएंगे, क्योंकि कोई की एक बहन है, कोई दो बहनें हैं, तीन बहनें हैं, तो वो इंतजार करती है कि हमारी तो एक ही है।
0: ये बात तो कितनी अच्छी बात है ना, घर में की सारी भाभियाँ आपका इंतजार करती
1: मेरा
0: हैं
1: इंतजार करती है मैम, एक भी नहीं जाती है।
0: कि कब रेखा दीदी आएंगी और इस घर में फिर से वही ऊर्जा और हंसी मजाक और एक प्रसन्नता का माहौल बन जाएगा, है ना?
1: तो सबसे बड़ी बात तो ये है मैम कि आज वो माँ की जगह मतलब बैठी है मेरे लिए, इंतजार
0: जी,
1: करती है, तो मुझे उसकी खुशी और बहुत ज्यादा होती है।
0: तो हम तो चाहते हैं कि ये प्रेम आपका हमेशा इसी तरह बना रहे और हर घर में ये भाभी और ननद का प्रेम इसी तरह बने जैसा रेखा वर्मा के घर में। तो रेखा जी,
1: जी,
0: बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: मजबूर पिक्चर का सुनना है। देख सकता हूँ मैं तुझे कुछ भी होते हुए, नहीं देख सकता तुझे रोते हुए।
0: तो चलिए आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर इंतजार कर रहे हैं कॉल्स का। कार्यक्रम चल रहा है। हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: जी दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: क्या बात है, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से रंजीता जी बोल रहे हैं। कैसी हैं आप?
1: जी दीदी मैं ठीक हूँ।
0: और क्या चल रहा है इन दिनों? रक्षाबंधन बस बिल्कुल नजदीक ही आने वाला है ना?
1: मार्केट में शोर है, रक्षाबंधन है, राखी का त्योहार आने वाला है। सभी लोग मतलब अपने भाई को राखी बहन पहनाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और त्योहार का मतलब बड़े ही मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, अभी तो बाजारों में हर दुकानों पे रक्षाबंधन की राखियां ही आपको दिखाई देंगी, है ना?
1: जी
0: तो आप खरीद लाई या आप जाने वाली हैं अपने मायके या भाई आने वाले हैं? क्या होने वाला है इस बार?
1: नहीं दीदी, मैं जाती हूँ अपने मायके अपने भाई को राखी पहनाने के लिए।
0: अच्छा, तो वो तो इंतजार कर रहे होंगे आपका कि कब आएंगी।
1: जी।
0: और कई बार ऐसा भी हो जाता ना कि आप कहेंगी कि नहीं, समय कम है, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए आऊंगी, और फिर मायके से सब लोग जिद करते, नहीं तुम अब के आओ तो 3-4 दिन ज्यादा रुकना।
1: जी, ऐसे होता ही है। लेकिन क्या है, हम सभी लोग एक रिश्ते की डोर से बंधे हैं, तो जैसे कि मैं अपने भाई को राखी पहनाने जाती हूँ, वैसी मेरी भी भाभी है, वो भी अपने भाई को राखी पहनाने के लिए जाती हैं, तो सभी का सोच के जाना पड़ता है दीदी। तो मैं हमेशा एक दिन पहले राखी पहनाने जाती हूँ, फिर उसी दिन हम लोग रक्षाबंधन के दिन राखी पहना के हम लोग वापस होते हैं। तो मेरे मिस्टर हैं, उनको भी उनकी बहनें राखी पहनाने आती है और मेरी भाभी भी अपने भाई को राखी पहनाने जाती है।
0: तो ये तो कितनी अच्छी बात है ना। आप हर तरह का देखिए रिश्तों में कितना सुंदर संतुलन बना के रखती हैं कि
1: जी
0: आपके घर में भी हो जाए, आपके मायके में भी आप अपने भाइयों को राखी बांध देती हैं,
1: जी
0: और फिर
1: जी
0: यहाँ पर भी ध्यान रखती हैं

0: कि आपके पति को,
1: जी
0: उनकी भी तो बहनें हैं
1: जी
0: ना, वो लोग आए राखी
1: जी
0: बांधने के लिए।
1: जी फिल्म
0: तो बताइए रंजीता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: का नाम है जीवन मृत्यु और गाने की बोल है झिल्ली नील सितारों का आंगन होगा।
0: तो रंजीता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? अपना नाम बताइए।
1: जी, आपकी बात इशिका वर्मा से हो रही है
0: कहाँ से बात कर रही हैं इशिका आप?
1: जी? उज्जैन से।
0: क्या बात है, ये बताइए, आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है छोटी सी नन्ही सी गुड़िया हैं आप।
1: यस मैम, मेरी एज ज्यादा नहीं है, 24 ही है। हाँ
0: अच्छा, क्या बात है। तो
1: जी
0: ये हमें जानकर बहुत अच्छा लगा कि जो युवा वर्ग है हमारे देश का, विविध भारती सुनती है
1: यस
0: ना?
1: मैम। मैम यहाँ पर सभी सुनते हैं, मतलब हमारे जो पापा मेरे फादर इन लो वो मतलब ऑलमोस्ट ही रेडियो में मतलब कॉल्स करना और हम सबको भी रेडियो सुनाना उन्हीं ने सिखाया है।
0: क्या बात है। तो आपने बोला फादर इन लॉ, तो आप विवाहित हैं?
1: यस मैम, इसी ईयर मेरी शादी हुई है।

0: इसी साल?
1: यस मैम,
0: अच्छा, अरे वाह,
1: फैमिली अच्छी है मैम, बिल्कुल।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: आपके इस नए विवाहित जीवन के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इशिका। और
1: थैंक
0: बताइए,
1: यू मैम।
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम आज मैं अंधा कानून का मेरी बहना दीवानी है सॉन्ग।
0: जी, तो चलिए सुनते हैं आपके लिए आपकी ही पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी। मैम नमस्ते। पहले तो आपको, हाँ
0: नमस्ते।
1: जी, मैं प्रमिला महेश बोल रही हूँ मैम, गुजरात के साबरमती से। जी
0: साबरमती से प्रमिला महेश जी, तो बताइए प्रमिला जी, कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल अच्छे हैं मैम, आप सुनाइए। हाँ
0: जी यहाँ पर भी सब लोग अच्छे हैं और स्वस्थ हैं
1: जी,
0: जी। तो अपने बारे में कुछ बताइए।
1: यही है मैम, बस घर के ही काम करते हैं, घर में ही रहते हैं, और फ्री टाइम में तोरण वगैरह जो दरवाजों पे लगे होते हैं वो बनाते हैं मैम।
0: जी ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुजरात
1: हाँ
0: की ये
1: जी
0: कला बहुत प्रसिद्ध है और बड़ा बारीक
1: जी
0: काम है।
1: हाँ जी मैम जी मैम, ये घर के पास ही एक कारखाना है, तो वो गृह उद्योग है महिलाओं के लिए, तो वो अपने को घर पे लाने के लिए देते हैं वो ऐसा काम।
0: अच्छा, तो
1: हाँ
0: मतलब
1: जी
0: आप अपने समय का पूरा सदुपयोग करती हैं।
1: जी मैम बिल्कुल, मतलब खाना ना खा के जब हम फ्री होते हैं 3 बजे, तो सखी सहेली जैसे ही चालू होता है हमारा काम भी चालू हो जाता है।
0: क्या बात है, तो सखी
1: जी
0: सहेली
1: जी
0: और आपका तोरण बनाने का साथ, ये
1: मैम
0: हमेशा
1: बिल्कुल
0: साथ है।
1: बिल्कुल, एक दिन भी मिस नहीं होता है आपका सखी सहेली है, हेलो फरमाई से। जी
0: प्रमिला जी, तो यही तो आप जैसे जो श्रोतागण हैं वही
1: हाँ
0: ये
1: जी
0: सुंदर हमारे सितारे हैं विविध भारती के, है ना? और ये बताइए, रक्षाबंधन आने वाला है,
1: हाँ जी मैम,
0: तो क्या तैयारियां चल रही हैं उसकी?
1: तो तैयारी तो ये है मैम कि मायका तो दूर है, अभी हमारा इंदौर में है, तो देखेंगे, अभी जाना होगा तो जाएंगे, वैसे ऐसे कुछ सोचा नहीं है। दो भाई थे मेरे, दोनों ऑफ हो गए, एक बड़े भैया हैं अभी, वही हैं फैमिली में, भैया भाभी उनके बच्चे हैं, तो जाते हैं कभी
0: तो
1: ऐसे। एक दीदी मेरी पास में ही है इंदौर में, तो वो अटेंड कर लेती है प्रोग्राम को।
0: जी
1: जब मेरे भैया दोनों गुजरे थे, हम दोनों की ही मट्टी में, तो मतलब मैं दूर होने की वजह से नहीं मिल पाई मैं उनसे,
0: जी
1: यही दुख
0: जी
1: लगता है ज्यादा। जी
0: जी कष्ट जीवन में आते हैं प्रमिला जी, फिर ईश्वर हमें उसका साथ,
1: हाँ
0: उसका
1: जी मैम,
0: सामना करने के लिए शक्ति भी देते हैं, है ना
1: शक्ति मिलती है मैम, अभी
0: जी?
1: थोड़ा क्या करें, हिम्मत तो रखनी पड़ती है ना, अब ऐसा हो गया है तो।
0: हाँ
1: एक
0: हम
1: भैया है, उनसे भी हम
0: जी
1: अच्छे
0: हम
1: रहते हैं, खुश रहते
0: जी
1: हैं, माँ बाप का प्यार उनसे ही मिल जाता है मैम हमको।
0: बिल्कुल, आपकी आवाज़ सुन के हम भी भाव विभोर यहाँ हो रहे हैं, आपके दुख को और आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं। लेकिन जो बड़े भाई हैं वो ही
1: जी जी
0: अब आपका ध्यान भी रखते होंगे, आपसे बात भी करते
1: मैम
0: होंगे,
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल,
0: ना
1: ध्यान रखते हैं,
0: जी?
1: बुलाते हैं हमेशा, कॉल करते हैं, फिर त्योहार पे कोई प्रोग्राम होता है या घर में कोई फंक्शन होता है तो फोन करके, बकायदा हमको न्योता मिलता है आने का
0: ये बात तो
1: और
0: है।
1: जाना
0: तो
1: भी पड़ता है मैम
0: और
1: फिर।
0: आजकल तो क्या डिजिटल वर्ल्ड भी हो गया, तो वीडियो कॉल से भी
1: हाँ
0: बात
1: जी
0: कर सकते हैं, वहाँ से एक छोटी सी ही सही लेकिन मुलाकात तो हो जाती है
1: जी
0: ना?
1: मैम, मिलती है तो नहीं, जैसे कभी जाना होता है तो 10 दिन 15 दिन तो मेरा तो फिक्स है, मतलब दूर से जाती हूँ तो मतलब वो फिर मुझे आने भी नहीं देते हैं,
0: सही
1: ऐसा है।
0: बात है जी, हाँ,
1: हाँ जी
0: क्योंकि बार बार वहाँ जाना संभव नहीं
1: हाँ
0: हो
1: जी
0: पाता जी। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा प्रमिला जी। आज बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: जी मैम, मेरे को काजल मूवी का सुनना है, देखो छम छम घुंघरू बोले।
0: जी तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का यही गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं मीना मारू बोल रही हूँ, इंदौर से।
0: इंदौर से मीना मारू जी, क्या बात है। तो कैसी हैं आप और अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं एक शॉप है मेरी सिटी

0: बाजार में
1: जी
0: लेडीज वेयर की शॉप संभालती हूँ,
1: क्या बात है। तो
0: और मैंने अपने शॉप पे भी रेडियो रख रखा है, विविध भारती के सारे प्रोग्राम सुनती हूँ।
1: ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, यानी कि काम भी करते हैं और आप अपना मनोरंजन भी करती हैं, और
0: हाँ जी
1: सिर्फ मनोरंजन नहीं है, विविध भारती पे तो सारी देश विदेश की जानकारियां मिलती हैं हमें, है ना।
0: हाँ जी।
1: तो घर परिवार में कौन कौन है बताइए।
0: घर परिवार में मेरी एक बेटी है नयन,
1: जी
0: और एक बेटा है प्रियन मारू, हस्बैंड है, बेटी की शादी हो चुकी है,
1: क्या बात
0: उसकी
1: है।
0: बेटी है, हाँ जी उसकी बेटी है अलिष्का, 8 साल की।
1: आज हम बात कर रहे हैं मीना जी, अब रक्षाबंधन, तो आपकी
0: बिल्कुल,
1: क्या यादें हैं रक्षाबंधन को लेके, आप इसके बारे में कुछ बताइए।
0: रक्षाबंधन की यादें मेरी तो बहुत अच्छी यादें रही हैं। मेरे दो भाई हैं, मतलब एक भाई 4 साल पहले शांत हो चुका है, वो बड़ा दुखदायी याद है मेरे लिए। और रक्षाबंधन का त्यौहार मेरे लिए बहुत बड़ा त्यौहार हुआ करता था।
1: जी
0: मैं अपने बच्चों के साथ में मायके जाती थी, पूरा परिवार साथ में हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते थे,
1: जी
0: और मुझे मिठाइयों का भी बहुत शौक है, तो मैं रक्षाबंधन पे हमेशा घर से ही मिठाई बना के ले जाती थी।
1: क्या बात है। तो आप
0: हाँ
1: सारी मिठाइयाँ आप
0: जी
1: बनाती हैं।
0: हाँ जी हाँ जी, मैं घेवर, स्पेशली मेरे घेवर बहुत फेमस है मेरे मायके में,
1: अरे
0: सबको मेरे
1: वाह।
0: हाथ के घेवर बहुत पसंद आते हैं। करीब 30-35 साल से बनाती आ रही हूँ मैं, तो
1: जी
0: हमारा त्योहार राखी का त्योहार तो बहुत अच्छे से मनता था, पर बस कुछ 4-1 साल से मेरा बड़ा ब्रदर मनोज डांगी करके था, उसकी सडनली डेथ हो चुकी है, तो वो
1: ओहो
0: त्योहार अभी आज के लिए मेरे लिए बहुत दुखदायी रहता है। असल में अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा गला रुंध गया है,
1: जी, वो महसूस
0: मुझे
1: कर
0: अपने
1: पा
0: भाई की
1: रहे हैं
0: बहुत
1: हम।
0: याद आती है। हाँ
1: जी
0: जी
1: लेकिन मीना जी, यही
0: वैसे
1: है,
0: भी
1: जो हमारे प्रिय हैं वो अगर हमसे दूर चले भी जाते हैं ना, तो उनका
0: हाँ
1: प्यार
0: जी
1: एक शक्ति बन के हमारे साथ रहता
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: आप
1: अच्छी
0: बात सही
1: यादों
0: कहते,
1: को
0: बिल्कुल
1: आप
0: सही।
1: संजो के रखिए, उनके साथ
0: हाँ
1: बिताए, जो
0: जी
1: हंसी मजाक वाले, जो अच्छे पल हैं उनको अपने मन में बसाए रखिए, क्योंकि राखी वाले दिन किसी न किसी तरीके से वो भाई आप तक अपना प्रेम तो पहुंचा
0: बिल्कुल,
1: ही देंगे,
0: हाँ हाँ
1: है ना।
0: होता है
1: जी जी
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल।
1: तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
0: बेहमान फिल्म का गाना है, लता जी और मुकेश की आवाज में, गाने के बोल है, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, जैसे
1: हाँ
0: चंदा और किरण का, जैसे बदली और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा। ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद है।
1: बिल्कुल, जिस तरह से सुरीले तरीके से आपने ये गाने को सुनाया है, तो चलिए सुनते हैं उसी गीत को।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं निगाह जान बोल रही इंडिया जम्मू कश्मीर से।
0: क्या बात है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर से कॉल आई है निगहत जान
1: जी जी
0: की। जी,
1: हाँ
0: तो कैसी हैं आप और कैसा है कश्मीर?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कश्मीर भी बहुत अच्छा है और यहाँ भी थोड़ा सा गर्मी तेजी हो रही है। अभी गर्मी चले क्योंकि सितंबर जो महीना है वो उसमें भी गर्मी होगी थोड़ी। फिर अक्टूबर से यहाँ सर्दी का मौसम शुरू होने वाला होता है।
0: जी, और उसके बाद तो फिर
1: जी
0: सुंदर बर्फ से ढके पहाड़ हो जाते हैं, है ना?
1: तो हाँ वो तो ज्यादातर यहाँ बर्फ जो गिरती है वो दिसंबर में महीने में गिरती है। खास
0: जी
1: करके मैं श्रीनगर में रहती हूँ।
0: जी
1: टूरिस्टों का तो आना यहाँ बहुत रश होता है क्योंकि यार डल लेक है वहाँ भी नाव शिकारी का सवारी करते और
0: जी
1: टूरिस्ट यहाँ बहुत आते हैं।
0: जी कुछ बीच में बच्चों की छुट्टियां भी लग जाती है ना, तब भी
1: हाँ
0: कश्मीर सबसे पहले सभी, मुझे लगता है अधिकतर लोगों की लिस्ट में यही रहता होगा कि कश्मीर घूमने तो जरूर जाएंगे, है ना?
1: हाँ क्योंकि कश्मीर का दूसरा नाम है जन्नत।
0: जी बिल्कुल, और आप खुशकिस्मत हैं कि आप उस जन्नत में रहती हैं, है ना?
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी अपने बारे में कुछ बताइए निखत जान
1: जी।
0: आप।
1: मैं घर में होती हूँ, मैं घर संभालती हूँ। अब तो मेरे शादी है, 12 दिन रह गए मेरी शादी को।
0: कब?
1: 1 सितंबर और 2 सितंबर को मेरी शादी है।
0: अरे वाह, आपका ब्याह होने वाला है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: मेरी बहन भी इसके नाम में को सुनना चाहती है, उसका नाम है कुमसर जान।
0: जी, उन्हें भी हमारा नमस्कार कहिए।
1: हाँ चलते चलते मैंने सोचा अब मुझे किसी और के घर जाना है तो सोचा सहलो सहल में एक बार फिर से कॉल करूं। तो खुशकिस्मती है मेरी कि मेरा कॉल लग गया आज और मैं बहुत खुश हूँ। जब भी मैं कोशिश करती हूँ तो मेरा कॉल लग ही
0: तो
1: जाता।
0: ये
1: हाँ
0: जानकर हमें बहुत अच्छा लगा, और एक बार फिर आपको आपकी शादी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है सावन। उन गाने के बोला है तुझे याद किया मेरे दिल ने कब आओगे साजन मुझसे मिलने।
0: वो
1: अब
0: तो
1: तो
0: बस
1: साजन का ही
0: आ ही रहे
1: इंतजार
0: हैं, सितंबर में बस आने ही वाले हैं, है ना? तो
1: हाँ
0: अब ये
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: इंतजार
1: खत्म
0: का जो वक्त है
1: हो गया
0: बिल्कुल खत्म होने को ही है, तो चलिए सुनते
1: बिल्कुल।
0: हैं इस गीत को।

0: सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हम सहेलियों से अनुरोध करते हैं कि जिनके कॉल्स आज लग पाए हैं वे अगले 2 महीनों के बाद हमें संपर्क कीजिए ताकि बाकी सखियों को भी बातचीत का अवसर मिल सके। जिनके कॉल्स नहीं लग पाए हैं वे सहेलियां निराश ना हो, आप अगले मंगलवार अवश्य कोशिश कीजिएगा। सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। साथ ही सभी सुनने वालों को ये बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर हैं हिंदी में 400-24662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में नंबर है 400-24662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड 022। आज की हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं किरण बंग और संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से मैं आपकी दोस्त दीपा माहेश्वरी लेती हूँ इजाजत। आप सभी को हेल्दी नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सायं के 4 बजने को हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: दोस्तों नमस्कार। गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है उर्मिला शिरीष की लिखी कहानी तितलियों के देश में। वाचक स्वर ममता सिंह का।
3: चाचा आपको बुला रहे हैं। क्यों? कहते हैं भले ही 2 दिन के लिए आ जाओ पर आपका आना जरूरी है। अचानक? अचानक कैसे आऊं? घर की व्यवस्था जमानी होगी, रिजर्वेशन करवाना होगा, फ्लाइट के टिकट बहुत महंगी मिलेगी। अच्छा मेरी बात जरा चाचा से करवा दो। वो बात कर पाते तब ना। ओह, मीनाक्षी सोच में पड़ गई। चाचा ने बुलाया है तो जरूर कोई बात होगी, पर ऐसी क्या बात है जिसके लिए चाचा अचानक बुला रहे हैं? हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो चाचा सिर्फ उसी को बताना चाह रहे हों, क्योंकि बचपन से ही वो चाचा के बहुत करीब रही है। सब भाई बहनों के बीच चाचा उसी को सबसे ज्यादा स्नेह करते थे। वो भी चाचा को अपने पिता से ज्यादा मान सम्मान और प्यार देती थी, उन्हीं से सलाह लेती थी। कोई और बात यानी उनके स्वास्थ्य से संबंधित तो नहीं, क्योंकि पिछले वर्ष से वो लगातार बीमार चल रहे थे। बीमारी की वजह से उनका बाहर निकलना बंद हो गया था। बस अपने रूम में लेटे लेटे वे रेडियो सुनते रहते थे। चाची वहीं उनका खाना पानी और बाकी चीजें मसलन पेपर पत्रिकाएं रख देती थी। चाची ने बताया कि आजकल चाचा को अजीब से दृश्य दिखाई देते हैं। उनकी हालत देखकर चिंता हो रही है। तुम आ ही जाओ, उनको बहुत कष्ट है। उसने रिजर्वेशन के लिए या तत्काल में टिकट बनवाने के लिए एजेंट को बोला पर कोई सीट खाली न थी। कोई ड्राइवर मिल जाए तो मैं अपनी गाड़ी से आने की कोशिश करती हूँ, मीनाक्षी ने मैसेज किया। फ्लाइट से आ जाओ, चाची का मैसेज था। डायरेक्ट फ्लाइट भी तो नहीं है। सुबह 3 बजे ही मीनाक्षी की नींद खुल गई। रास्ते के लिए खाने पीने का सामान रख कर वो तैयार हो गई। उसने अनुमान लगाया कि यदि सब ठीक ठाक रहा तो रात तक पहुंच ही जाऊंगी। चाची का मैसेज था, टैक्सी से ही आ जाओ। नहीं नहीं, मैं गाड़ी से आ रही हूँ। गाड़ी और ड्राइवर पहचान वालों की है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, मीनाक्षी ने चाची को तसल्ली दी। चाची की घबराहट से वो भी चिंतित हो उठी।

गाड़ी में बैठते ही मीनाक्षी सोचने लगी, हे ईश्वर सब ठीक रखना। सड़क के दोनों ओर काफी भीड़ थी। फल सब्जी बेचने वालों के ठेले लाइन से लगे थे। कुछ बूढ़ी महिलाएं सड़क के किनारे डलिया में अमरूद लेकर बैठी थीं। अमरूद का ये सीजन मीनाक्षी को यूं भी पसंद था, क्योंकि हरे पीले और अंदर से हल्के से लाल गुलाबी अमरूदों को देखकर उसकी तबीयत खुश हो जाया करती थी। उसे याद आया गांव के पास ही अमरूद का बगीचा था। चाचा उन अमरूद को ठेके पर उठा देते थे और एक दो पेड़ परिवार और रिश्तेदारों के लिए बचा लेते थे। अमरूद के पेड़ों पर हजारों तोतों का ठिकाना रहता था। वे जितने अमरूद खाते थे उससे ज्यादा अधखाए अमरूद नीचे गिरा देते थे। उसे याद है एक बार रखवाली करने वाले लड़के ने गुलेल से एक तोते को घायल कर दिया था। तब चाचा ने नाराज और दुखी होकर उसको काम से ही निकाल दिया था। तोते को घर में लाकर उसका इलाज करवाया गया था और चाचा ने उसे अपने पास रख लिया था। चाचा उसे प्यार से बेटू बोलते थे। बेटू भी कितना बोलता था, लड़ता था, प्यार जताता था। बाद में वो बगीचा चाचा ने बेच दिया था, क्योंकि वे उतना समय नहीं दे पाते थे। पर जिसको बेचा था वो भी अमरूद की पेटियां भिजवाता रहता था। चाचा के दो ही शौक थे, जमीन खरीदना, वो भी बंजर जमीन, शहर से दूर, फिर उसको उपजाऊ बनाने के लिए सैकड़ों उपाय निकालना। उनके सुबह के 4 घंटे इन्हीं कामों में निकलते थे। फिर बाद में उसने सुना कि चाचा ने अपने खेतों में 500 सीताफल के पेड़ लगवाए थे, पर वे नहीं लगे क्योंकि जमीन उनके अनुरूप नहीं थी। चाचा ने जहां से पेड़ मंगवाए थे वे स्वयं वहां गए। वहां से पूरे 8 विशेषज्ञों को लेकर आए थे और उनकी जिद कि दोबारा फिर से वही पेड़ लगवाएं। परिवार वाले परेशान, कितना पैसा बर्बाद करते हैं, बेचो जमीन और खेत, आराम से रहो, पर नहीं। चाचा का मन तो वही रमता। बीमारी के एक माह बाद जब वे उन खेतों पर गए तो देखा वहां तो मजदूरों ने पूरी गृहस्थी बसा रखी है और कुत्तों का परिवार बाकायदा पला हुआ है। चाचा,

कहाँ तक पहुंची? कोई दिक्कत तो नहीं है? चाची और बहन के कई मैसेज पड़े थे। अरे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आराम से आ रही हूँ, उसने मैसेज लिखा। शहर से बाहर निकलकर ठंडी हवा में सांस लेना मीनाक्षी को अच्छा लग रहा था। हरे भरे खेतों के बीच नए बनते मकानों को देखकर उसे कुछ नहीं अच्छा लगा। हाँ, पेड़ों की नई नई कतार को देखकर उसका मन अलबत्ता खुश हो उठा। वाह, मौसम तो अच्छा है जी, ड्राइवर ने रेडियो की आवाज़ कम की। क्या तुम अक्सर ही बाहर जाते हो? जी मैडम, जब जैसी राइड मिल जाए चला जाता हूँ, ड्राइवर बोला। तुम्हें क्या फ़र्क दिखता है? बस मैडम, जहाँ रोड ठीक है वहाँ तो आराम से गाड़ी चली जाती है, लेकिन जहाँ रोड कट गए हैं या नया निर्माण हो रहा है वहाँ तो बहुत परेशानी होती है। कहाँ के रहने वाले हो? यही गांव में रहता हूँ। एक दो गाय भैंसे हैं, एक एकड़ का खेत है, उसमें कुछ न कुछ उगाते रहते हैं, घर का अनाज और सब्जियां हो जाती हैं, बाहर तो काम कभी कभार ही मिलता है, माता पिता को भी चिंता लगी रहती है। तुम्हें क्या लगता है, अपने काम में ज्यादा पैसा मिल जाता है? हाँ वो तो है मैडम, पर कई बार कुदरत की मार पड़ जाती है, बाढ़ ओला या पाला से खड़ी खड़ी फसल भी मर जाती है, दाने काले पड़ जाते हैं। ओला और बेमौसम बारिश पर भला किसका वश चलता है, ड्राइवर बोला। अब तक बादलों ने सूरज को ढांक लिया था, धूप की जगह धूसर रंग चारों तरफ दिखाई दे रहा था, सड़कों के दोनों तरफ हरे भरे खेत थे। वाह कितना सुंदर मौसम हो गया है, मीनाक्षी ने फिर दोहराया, जैसे उसकी यात्रा का सहयात्री ये मौसम ही हो। मैडम हम लोग तो आज भी कोशिश करते हैं कि शुद्ध हवा में रहें, शुद्ध पानी पिए। हमारे बोर में इतना पानी आता है कि आसपास के लोग तक पानी लेने आते हैं। मेरी माँ भी मौसम की बहुत बात करती हैं, उन्हें अपने गांव का मौसम अक्सर याद आता है, आप ही की तरह, ड्राइवर बोला। अच्छा आप यकीन करेंगे मैडम, हमारे खेत के कुएं का पानी हरे रंग का है। अच्छा कैसे? अरे मैडम उसके आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हैं ना, उनकी पत्तियां उसमें गिरती रहती हैं, तो उसका स्वाद भी अलग है, एकदम शुद्ध हर्बल वाटर की तरह। वाह भाई तुम्हारी बातें तो बड़ी दिलचस्प हैं। हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। इन दो तीन महीनों में बिना मौसम की बरसात बड़ी नुकसानदायक होती है। देखिए ना, फसल पकने को है, अगर ज्यादा पानी गिर गया तो फसल बर्बाद हो जाएगी। वो सोच में पड़ गई, जीवन भी तो किसी फसल की तरह ही होता है, और चाचा, चाचा तो जीवन में फसलों को ही जीते रहे हैं। चाचा पढ़े लिखे हैं, बाकायदा PhD, कुछ साल नौकरी की, पर नौकरी करते हुए वे ज्यादातर वक्त अपने खेतों पर गुजारते थे। चाचा के साथ शादी से पहले वो भी उनके खेतों पर और गांव जाया करती थी। हाँ जब उन्होंने शहर में जमीन लेकर फार्म हाउस बनाया था तब चाचा ज्यादातर काम फोन पर ही करवा लिया करते थे। उनके खेत पर होने वाली पार्टी का सबको इंतजार रहता था। चारों तरफ लगे आम के वृक्ष, खेतों में लगी सब्जियां, बीच में बना छोटा सा सरोवर और कतार में लगे बेरों के पेड़, चाचा आने वाले दोस्तों को उपहार में क्या दिया करते थे, 5 किलो मटर, 2 किलो बेर और एक थैला।

0: रूद, यानी हर एक के लिए तीन तीन थैलियां गिनकर रख दी जाती थी। चाचा के दोस्त हंसते, यार ये बढ़िया है, नींबू पानी पिलाओ, घर की सब्जियां खिलाओ, खेतों में घुमाओ, और गिफ्ट भी अनोखी, वो भी ऑर्गेनिक, क्या बात है। मीनाक्षी के होठों पर मुस्कुराहट थी पर आंखों में आंसू छलक आए। उसने साइड में गाड़ी रोकने को कहा, पानी पिया, फिर थर्मस में से चाय निकाली। बारिश तेज होने के आसार नजर आ रहे थे। थोड़ा रुक जाते हैं, बिजली गिरने का अंदेशा भी तो रहता है, मीनाक्षी ने ड्राइवर से कहा। जी मैडम, बारिश भी अच्छी लग रही है ना, ड्राइवर बोला। मीनाक्षी को लग रहा था कब वो चाचा के पास पहुंचे। ये रास्ते इतने लंबे क्यों लग रहे हैं, समय इतना भारी और ठहरा हुआ क्यों लग रहा है। ढेर सारी बातें उसके जहन में आ जा रही थीं। बचपन जो किसी बेहद खूबसूरत परिंदों के देश जैसा लगता था, जिसमें सैकड़ों परिंदे होते थे, जानवर होते थे, रंग बिरंगे फूल खिले होते थे, छोटे छोटे कुएं, बावड़ी और नहरें होती थीं। आज भी वो किसी को बताती है तो सबको लगता है कि वो किताबी कहानियां सुना रही है, पर वो उसका असली बचपन था। बाद के वर्षों में पेड़ कम होते गए, फसलें बिगड़ती गईं, बगीचों के पेड़ उजड़ते गए, और उसके आसपास मंडराने वाली तितलियां भी स्वप्न की तरह होती गईं।
1: बच्चे

चले मैडम, ड्राइवर ने कहा तो उसका ध्यान भंग हुआ। बारिश तो मिलेगी पर रोड अच्छा है, आराम से चलते हैं, जहां तेज बारिश होगी वहां रुक जाएंगे। मीनाक्षी ने किसी को कुछ नहीं बताया, बेकार सबको चिंता हो जाएगी। स्कूल की पढ़ाई, फिर कॉलेज की पढ़ाई के बाद नौकरी, शादी, जिम्मेदारियां, सबने मिलकर बीच के अंतराल को जैसे खामोशियों से भरे बादल में छुपा दिया था। जीवन भी चुपचाप अपनी दिशा तय कर लेता है और हमें लगता है कि हम उसे चला रहे हैं। भीतर की आवाजें लगातार हमें पुकारती रहती हैं और मन बाहर की आवाजों को सुनते हुए भागता रहता था। हम जन्मदिन बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं, पर नहीं जानते कि एक वर्ष और चुपके से निकल गया, गिनती में एक साल और कम हो गया। चाचा, चाचा का जीवन कितना गतिशील, कितना खूबसूरत रहा है। आधी उम्र आसमान में उड़ते हुए निकल गई और आधी धरती पर काम करते हुए। मैडम, आप चाहें तो आराम कर लें, मैं सीट डाउन कर देता हूं, ड्राइवर बोला। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। ये आसपास की हरियाली देखने का सुख जो मिल रहा है, क्या करूं, पेड़ों और पक्षियों में जान बसती है मेरी। बचपन जिस माहौल में बीतता है वही आपके स्वभाव में रच बस जाता है। हाँ ये तो है मैडम। अब कहने को हमारे पास दो कमरे हैं, पर बाहर का एरिया इतना खुला हुआ है कि शहर में कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती। कितनी देर में पहुंच रही हो तुम? बहन का फोन आया था। बस अभी 2 घंटे और लगेंगे, ट्रैफिक अगर ना मिले तो, मीनाक्षी बोली। रात का खाना बनवा कर रखे हैं, कुछ खास बनवाएं क्या, बहन ने पूछा। नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, बस जल्दी ही पहुंच जाए, बस जल्दी ही पहुंच जाए, उसने मन ही मन कहा। शाम की छाया पहले आसमान में, फिर पेड़ों पर, फिर धरती पर उतरती हुई अंधकार का रूप धारण कर चुकी थी। दूर कहीं एकाध लाइट दिख जाती। घना जंगल है और रोड भी सुनसान, एकाध गाड़ी आती जाती दिख जाती थी। हम सही रास्ते पर तो चल रहे हैं ना भैया? जी मैडम, मेरा देखा हुआ रास्ता है, आप चिंता ना करें, थोड़ी दूरी पर ही तो एक चाय का ढाबा है। मीनाक्षी के मन में बुरे ख्याल आने लगे, यहाँ तक कि ड्राइवर भी अजनबी लगने लगा। पर नहीं, सब ठीक रहेगा, पेट्रोल है, स्टेपनी सही है, कोई दुर्घटना होगी ही क्यों। हाँ, फिल्मी तर्ज पर 4-6 लुटेरे आ जाएं, गाड़ी घेर लें, वो बात अलग है। जंगली जानवर तो बेचारे गाड़ियों की लाइट से ही डर जाते हैं। मीनाक्षी ने देखा दूर बिजलियां टिमटिमाती नजर आ रही थी। चाय पियोगे? जी मैडम, आप? हम भी पी लेंगे। मीनाक्षी को लगा वो लंबी अंधेरी सुरंग से बाहर निकल आई है। गांव में आधी रात को ऐसा ही अंधकार पसर जाता था, पर उस रात का मायावी रूप जैसे और निखरने लगता था। आसमान में चमकते नक्षत्रों को देखकर, चांद और उसके आसपास के नक्षत्रों को गिनते हुए मन का सारा भय दूर हो जाता था।

0: घर पहुंची तो रात के 11 बज चुके थे। बाहर कुछ लोग वॉक कर रहे थे। कुत्तों का पूरा समूह पेड़ों के आसपास सो रहा था। गाड़ी की आवाज सुनकर एक दो कुत्तों ने ऊंघते हुए देखा, थोड़ा सा गुर्राए, फिर अपनी जगह पर जाकर हाथ पांव पसार कर सो गए। ड्राइवर के लिए ऊपर का रूम खुलवा दिया है, चाची ने उससे गले मिलते हुए कहा। थक गई होगी ना, हाथ मुंह धो लो, खाना लगा दिया है। बाकी लोग? मीनाक्षी बोली, तुम्हारे लिए कुछ मीठा लेने गए हैं। चाचा सो गए क्या? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो दौड़कर चाचा के कमरे में गई, क्षणों तक ठिठकी। रेडियो बज रहा था, टेबल लैंप जल रही थी, साइड की रैक में किताबें रखी थी। चाचा की दवाइयां और अन्य सामान भी अलग अलग बक्सों में रखा था। चाचा, चाचा, मीनाक्षी ने धीमे से पुकारा। अरे बेटा मीनाक्षी, आ गई, कोई परेशानी तो नहीं हुई बेटा, आओ आओ। चाचा से गले मिलकर उसके आंसू निकल आए। देर तक वे उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे। चाचा आप ठीक है ना? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ, अभी खाना खाकर सो जाओ, सुबह बात करते हैं। चाचा का चेहरा एकदम दुबला हो गया था, उम्र का असर दिख रहा था। वैसे चाचा हमेशा इकहरे बदन के रहे हैं, दौड़ना घूमना व्यायाम करना और बेहद संयमित जीवन जीना। क्या हो गया चाचा को? मीनाक्षी ने चाची से पूछा। हाँ, कुछ दिनों से बेचैन है। जीवन भर काम करने वाला आदमी बिस्तर पर पड़ जाए तो बेचैनी तो होगी ना। उन्हें अपने से ज्यादा अपने खेतों की, पेड़ों की और वहां पले कुत्ते बिल्लियों की चिंता ज्यादा रहती है। क्या कहें, इतने नौकर लगे हैं, पर जब तक अपनी आंखों से खुद नहीं देख लें, उन्हें चैन ही नहीं मिलता है। चाची उसके सामने बैठी थी और उनका चेहरा भरा भरा पर कुछ उदास चिंतित दिखाई दे रहा था। चाची को शुरू से ही ये सारे काम झंझट भरे लगते हैं, पर चाचा ने उन पर कभी दबाव भी नहीं डाला। चिराग कब आएगा? मीनाक्षी ने पूछा। अगले हफ्ते आ रहा है, लेकिन वो यहाँ स्थायी रूप से रहने वाला नहीं है। उसकी अपनी नौकरी है, दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, चाचा की खेती बाड़ी में उसकी खास रुचि भी तो नहीं है। चाची लंबी बात करने के मूड में थी, पर मीनाक्षी को तो नींद आने लगी थी, इसलिए वो जल्द से जल्द बिस्तर पर जाना चाहती थी। फिर सुबह जल्द उठकर उसे चाचा से बात भी तो करनी है। पता नहीं चाचा क्या कहने सुनने वाले हैं, ये सोचते हुए वो कमरे में सोने चली गई। कमरा बड़ा ही कलात्मक ढंग से सजाया हुआ था। कोने में मनी प्लांट का गमला रखा हुआ था, दीवार पर चिराग और उसकी पत्नी और बच्चों के फोटो लगे हुए थे। दूसरी दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग टंगी थी। खिड़की के बाहर कई तरह के फूलों और बेलों के गमले लगे हुए थे। सुबह मीनाक्षी की नींद खुली तो देखा बरामदे में चाचा कुर्सी पर बैठे हैं। वे चाय पी चुके थे और अखबार पढ़ रहे थे। उनका केयर टेकर वहीं खड़ा था। चाचा आप कैसी तबीयत है आपकी?
1: ठीक ही है, चाचा ने चश्मा

0: सारा अखबार तह करके रख दिया और सीधे बैठ गए। चाचा, आप कोई बात छुपा तो नहीं रहे? किस तरह की बात? आपकी तबीयत को लेकर? अरे नहीं नहीं, मैं 79 साल का हो गया हूँ बेटा, अमर होकर थोड़ी ना आया हूँ। एक न एक दिन तो सभी को अपने अंतिम सफर पर जाना ही पड़ता है। नाश्ता करते हैं, उसने बात बदलते हुए कहा। वो अंतिम सफर की कल्पना भी नहीं कर सकती थी।
1: सजन रे झूठ मत बोल।

मीनाक्षी का मन अब बेचैन हो उठा। चाचा ने एकाएक क्यों बुलाया है आखिर, अब जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। चाचा, आपने फोन करवाया था ना, कोई खास बात है क्या? चाचा क्षणों तक कुछ सोचते रहे, फिर बोले, तुम अब भी वैसी ही हो जैसी बचपन में थी। हाँ चाचा, मन तो वैसा ही है। बेटा तुम्हें पता है ना, अपना अमरूद का जो बगीचा है वो हमसे छिन गया था, वो केस हम जीत गए हैं। 13 साल लग गए उस केस में। सचमुच? पर आपने तो कहा था कि बेच दिया है। मीनाक्षी बोली, इसीलिए कि हम सबको विवादों में नहीं डालना चाहते थे। तो अब वहाँ 4-5 आदमी रख दिए हैं, वे उसकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन लेकिन क्या चाचा? बगीचे से जुड़ी जो जमीन थी हमने उसे भी खरीद ली है। क्यों, क्या करेंगे उस जमीन का?

चाचा वहां केवल पेड़ लगवा रहे हैं, कुछ फलदार और कुछ दूसरी तरह के। ये तो बहुत अच्छी बात है चाचा, गांव भी पास में पड़ता है। देखो बेटा, तुमने अपना जीवन गांव में बिताया है, तुम तो गांव की हवा जानती हो, उसका मूल्य भी समझती हो, और मेरा वहां से बड़ा लगाव है। बस ये सोच लो कि मेरी आत्मा वहीं पर रहती है बेटा। जी चाचा, मैं जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, यहाँ के खेतों में जो पेड़ लगवाए थे वो तो नहीं लग पा रहे हैं, देखेंगे बाद में कुछ और लगवा देंगे। यहाँ उस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, वैसे इतना फैलावा करके रखा है कि मालूम है कि बच्चों की इन सारी चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। फिर भी चाची ने चाचा की शिकायत करते हुए कहा, चिराग की तो कोई रुचि है नहीं, सबका अपना अपना स्वभाव और प्रकृति होती है, हो सकता है कल के दिन उसका मन बदल जाए। फिलहाल मैं गांव वाले मुद्दे पर आता हूँ। अगर मैंने बगीचा, वहाँ की ज़मीन दूसरों के हाथों में सौंप दी या बेच दी तो वे सब बर्बाद कर देंगे। बेटा, मैं चाहता हूँ कि वहाँ खूबसूरत जंगल जैसा परिवेश हो, बेशक कुछ कॉटेज रहने के लिए बनवाए जा सकते हैं। जी चाचा, आइडिया तो बड़ा अच्छा है। बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। कैसी जिम्मेदारी? मैं निभा पाऊंगी क्या? मैंने बगीचा, उससे लगी जमीन, गांव का मकान और वहां का खेत तुम्हारे नाम कर दिया है, सबकी सहमति से। चिराग कुछ नहीं करेगा, यहाँ की जमीन उसके नाम है, चाची के साथ। बस शर्त यह है कि तुम बगीचे को बगीचा और पेड़ों को कभी भी बेचोगी और काटोगी नहीं। बेटा, मैं जानता हूँ तुम ही ये चीजें बचा सकती हो, मेरे विरासत को, बच्चों की तरह पाले पोसे वृक्षों को और वहां पलने वाले पशु पक्षियों को। याद है बचपन में उस तोते को तुम ही अस्पताल ले जाती थी बेटा, तुम्हारे ही कारण वो बच पाया था, और कितने सालों तक हमारे साथ रहा, याद है ना मीनाक्षी बेटा? मीनाक्षी एक टक चाचा का चेहरा देखे जा रही थी, माथे के आसपास की उभरी हुई नसें, अंदर को धसी आंखें, हाथ और पांव पर फैली उभरी नसों का जाल। तो क्या चाचा को अपना जीवन अस्ताचल की ओर जाता दिखाई दे रहा है?

0: चाचा, आप अच्छे खासे स्वस्थ हैं, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका काम देख लिया करूंगी, पर प्लीज वसीयत असीयत का ख्याल छोड़ दीजिए चाचा, मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है। मीनाक्षी ने चाचा का हाथ थाम कर कहा, चाचा आपकी सेवा करना मेरा धर्म है और मुझे सुख भी मिलेगा। वो भावुक होठी, मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ बेटा। अपनी विरासत किसी गुणी को, समझदार को और उसके प्रति लगाव रखने वाले को सौंपूंगा तो वो सुरक्षित रहेगी। मुझे मालूम है तुम्हें ये सारे काम आते हैं, तुम वहाँ की मिट्टी में पली बढ़ी हो, लोगों को जानती हो। मुझे विश्वास है कि तुम वहां की सारी चीजों को संभाल लोगी बेटा। सुनीता, सुनीता जरा मेरी अलमारी में से वो फाइलें ले आना, चाचा ने चाची से कहा। मीनाक्षी चाची को लेकर अचरज में डूबी थी। क्या चाची को कोई एतराज नहीं है? महिलाएं तो अपनी एक चीज तक नहीं देती और चाची एक शब्द नहीं बोल रही हैं। फिर उसे लगा कि चाची बोलेंगी भी कैसे। चाचा ने परिवार का माहौल ही ऐसा बनाकर रखा कि अपने पराए में कोई भेद नहीं। अपने बड़े भाई के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उन्होंने ही संभाली थी। भाभी को हमेशा सम्मान दिया, दूसरे भाई को भी उनका हिस्सा और मकान दे दिया है। सारा परिवार हर त्योहार पर एक साथ मिलता जुलता है। बेटा मीनाक्षी, मैं तुम्हें एक एक बात समझा दूंगा, चाचा उसे आश्वस्त कर रहे थे। चाचा आप थक गए हैं, आराम कर लीजिए, चलिए लेट जाइए, आराम करिए। मीनाक्षी अपने आप को असहज महसूस करने लगी थी। डायलिसिस के लिए जाना है, याद है ना, चाची ने टोकते हुए कहा। देखो मीनाक्षी बेटा, तुम्हारी चाची तो मेरी बात पर नाराज होने लगती है, पर तुम मजबूत दिल की लड़की हो, मेरी एकमात्र आखिरी इच्छा जरूर पूरी कर देना बेटा। हाँ बताइए ना चाचा, बोलिए। मेरा अंतिम संस्कार गांव में ही करवाना। चाचा आप बेकार की बातें करते हैं, तभी तो चाची नाराज होती हैं। क्यों ऐसी बातें करते हैं आप? सत्य को स्वीकारना चाहिए बेटा, जीवन मृत्यु ये तो शाश्वत है।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: अच्छा चलो चलो नाश्ता कर लो, चाचा ने मीनाक्षी से कहा। मीनाक्षी ने पीछे मुड़कर अपने आंसू पोंछे और बैग उठाकर बाहर आ गई। कहाँ जा रही हो तुम मीनाक्षी? आपके साथ हॉस्पिटल, फिर निकलना भी तो है मुझे। अरे इतनी जल्दी, तुम तो एक हफ्ते के लिए आई हो। हाँ अपना बगीचा और नया बन रहा जंगल देखने भी तो जाना है, आपको रिपोर्ट जो सौंपनी है और उन सब से मिलना भी तो पड़ेगा ताकि आपका संदेश पहुँचा सकूँ। चाचा पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है कि आपने मुझ पर जो भरोसा किया है चाचा। अरे क्यों नहीं कर पाओगी तुम ही कर पाओगी, कोई अनजान जगह तो है नहीं, वो तो तुम्हारा तितलियों का देश है, उस देश की तुम रानी हो। जाओ मुलाकात करो अपने नए मित्रों से, मोरों से, खरगोशों से, तोतों से और सुंदर चिड़ियों से। मीनाक्षी ने देखा चाचा के चेहरे पर एक गहरे संतोष की चमक दिखाई दे रही थी।

गीतों भरी कहानी इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष की लिखी कहानी तितलियों के देश में। वाचक स्वर ममता सिंह का था, संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र सिंह नेगी।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। उन्होंने ऐसा इकोसिस्टम और माहौल बनाने का सुझाव दिया जहां अंतरिक्ष की चर्चा होने पर लोगों का ध्यान भारत की ओर जाए। बैठक के दौरान स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। बाद में सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि नए और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में उल्लेखनीय साहस दिखाने वाले युवा उद्यमियों और नवोन्मेषकों से मिलकर उन्हें खुशी हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सीमा सुरक्षा को लेकर पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
1: श्री शाह ने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के एक समझौता किया है। ब्रिक्स ICT बैठक से अलग हुआ यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। इस बीच संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और अनुकूल डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। उधर जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि यह विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए। श्री नड्डा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 20 जुलाई की घटना का संज्ञान ले लिया है और मामले की जांच के लिए एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाने का एक अनूठा अवसर है। साथ ही ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर करीबी नजर रखने के निर्देश दिए। महान अभिनेत्री सौकार जानकी का चेन्नई में निधन हो गया है। सौकार जानकी ने दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत में लगभग 400 फिल्मों में अभिनय किया। भारतीय महिला टीम आज एम्सफल्टन में एफआईएच हॉकी विश्व के दूसरे चरण में मेजबान नीदरलैंड के साथ खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi today interacted with chief executive officers, CEOs and founders of 20 space startups in New Delhi. The Prime Minister called for wider applications of space technology to improve the lives of people. Mr. Modi noted that the country's space sector can become a magnet for global talent, companies and investment, and suggested creating an ecosystem and an environment where when the world thinks of space, it looks towards India. Emphasizing greater collaboration between space industry and other social development sectors, the Prime Minister encouraged greater collaboration with Atal Tinkering Labs to nurture curiosity and interest among young minds for space. Mr. Modi also congratulated the leaders of the space sector for showing courage in taking the lead in a new area. He said that the confidence shown by the sector has strengthened the vision with which the space sector was opened to private participation. Union Home Minister Amit Shah inaugurated and laid the foundation stone for several projects worth around 189 crore rupees at the headquarters of the Sashastra Seema Bal SSB in Siliguri, West Bengal today. Mr. Shah stated that since the BJP government came to power at the centre, the welfare personnel responsible for border security has been given utmost priority. He highlighted that the SSB is performing the challenging task of guarding open borders with countries like Nepal and Bhutan, calling it one of the toughest duties. Union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav today launched the Mobile Phone Manufacturing Scheme MPMS. Union Cabinet had approved the scheme last month. Addressing media in New Delhi, Mr. Vaishnav said the scheme has come into effect from 1st of April 2026. The scheme aims to increase global competitiveness by further enhancing the scale, deepening the mobile manufacturing supply chain and stronger domestic manufacturing capabilities. Government today reiterated that the welfare and security of Indian seafarers community is of high priority for India. Briefing the media in New Delhi, spokesperson of the Minister of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that India continues to closely follow developments in West Asia. Talking about an incident involving two foreign flagged vessels, Mr. Jaiswal said that all 22 seafarers are safe and the government is in touch

भजन आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शाम के 5:25 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा मंच।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो युवा मंच पर। और आज है फिल्मी फ्राइडे। मैं हूं आपकी दोस्त वंदना रैना आज इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मस्त होंगे और लाइफ को पूरी एनर्जी के साथ जी रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जो अक्सर हम खुद से पूछते हैं, यार कल क्या होगा? एग्जाम का डर, करियर की टेंशन या फिर किसी अपने से दिल टूटने का गम। हम हमेशा आने वाले कल की फिक्र में अपने आज का मजा खराब कर देते हैं। और दोस्तों, याद है आपको साल 2003 की वो फिल्म कल हो ना हो, अमन यानी शाहरुख खान का वो किरदार। उस किरदार ने हमें जीना सिखाया था। उसने कहा था, हंसो, मुस्कुराओ, रो लो या जो भी करना है वो करो, क्योंकि यही काफी है कि ये दुनिया खूबसूरत है और इसे और अधिक खूबसूरत बनाते हैं हम सब मिलकर। तो आज के फिल्मी फ्राइडे में हम बात करेंगे इसी फिल्म की और ये फिल्म हमें क्या सीख देती है इस बारे में। तो दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम सोचते हैं कि हमारे पास समय बहुत है, पर सच तो ये है कि जो आज हमारे पास है, जो पल हमें मिले हैं, वही असल में है। कल किसने देखा है? ना आपने और ना हमने। इसलिए अगर किसी से सॉरी बोलना है तो आज बोल दो, और अगर अपने सपनों के पीछे भागना है तो आज से ही शुरुआत करो। और अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसे बता दो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। तो चलिए, फिल्मी फ्राइडे के इस खूबसूरत सफ़र की हम शुरुआत करते हैं सोनू निगम की जादुई आवाज़ के साथ और इस फिल्म के शानदार टाइटल ट्रैक के साथ।

जी दोस्तों, अभी अभी जो गीत हमने और आपने सुना उसकी एक एक लाइन सीधे दिल में उतरती है। और हम आपको बता दें कि फिल्म कल हो ना हो के संगीत निर्देशक शंकर एहसान लॉय थे और उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिला इस फिल्म के लिए। और इसके साथ ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। और कार्यक्रम युवा मंच में आज

बात चल रही है जिस फिल्म की, वो है कल हो ना हो। जी दोस्तों, इस फिल्म के शुरुआती सीन्स आपको याद हैं? प्रिटी जिंटा यानी कि नैना का वो चश्मे वाला सीरियस लुक। वो हमेशा उदास रहती थी, घर की परेशानियां, पिता को खोने का गम और एक तरह से उसकी जिंदगी ब्लैक एंड वाइट। जी दोस्तों, और अगर हम गौर करें तो हम भी आज के दौर में एक तरह से नैना ही बन चुके हैं। हमने भी हंसना छोड़ दिया है और बस मशीन की तरह काम करते जा रहे हैं। लेकिन अमन की एंट्री उसकी लाइफ में रंग भर देती है। वो कोई जादूगर नहीं था, वो बस हर छोटी चीज़ में खुशी ढूंढ लेता था। और दोस्तों, खुश रहने के लिए किसी लॉटरी के निकलने का इंतज़ार मत करो। अगर आज आपके घर पर आपकी पसंद का खाना बना है तो उसमें भी एक खुशी है। अगर कोई पुराना दोस्त मिल गया है या उसका फ़ोन आ गया है तो वो भी खुशी है। तो चलिए अपनी इस ब्लैक एंड वाइट लाइफ में थोड़ा सा डिस्को का रंग भरते हैं और झूमते हैं इस कल्ट सॉन्ग पर।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
3: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
2: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
3: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
2: जल्दी विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
4: जी दोस्तों, लौटा ही आपकी दोस्त वंदना रैना कार्यक्रम युवा मंच में, और हमारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 103.4 MHz पर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दोस्तों, फिल्म कल हो ना हो सिर्फ अमन और नैना की कहानी नहीं थी, इसमें एक बेहतरीन किरदार था रोहित यानी कि सैफ अली खान का, और ये किरदार हमें सिखाता है निस्वार्थ प्यार और सच्ची दोस्ती। जब रोहित को पता चलता है कि नैना अमन से प्यार करती है तो वो पीछे हट गया, और जब अमन ने उसे नैना का हाथ थामने को कहा तो उसने अपनी दोस्ती और प्यार दोनों को पूरी शिद्दत से निभाया। दोस्तों, आज की इस मतलबी दुनिया में जहां लोग छोटी छोटी बातों पर दोस्तों से ब्लॉक ब्लॉक खेलने लगते हैं, वहां रोहित जैसी दोस्ती मिलना मुश्किल है। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा दोस्त है जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहता है तो उसे थैंक यू ज़रूर कहें अपनी लाइफ में अपने साथ होने के लिए। और चलिए कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं इसी फिल्म का एक रोमांटिक और चुलबुला सा गीत।

दोस्तों, फिल्म कल हो ना हो के निर्देशक थे निखिल आडवाणी और इस फिल्म को लिखा करण जौहर ने, और इसके साथ ही निर्माता थे इस फिल्म के यश जौहर और करण जौहर, और ये फिल्म बनी धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले। और श्रोता, इस फिल्म की एक आखिरी बात जो हमें इस फिल्म से सीखने के लिए मिलती है वो है कि जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं, लेकिन जिंदगी कभी भी रुकती नहीं है, बल्कि यादों के साथ जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। और अगर आप भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आज जो आंसू हैं कल वो मुस्कुराहट में बदलेंगे। बस खुद पर भरोसा रखिए और हर पल खुलकर जिए।

दोस्तों, और कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। और आपको हम ये बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और तकनीकी सहयोग हमें दिया अंकित हेमान ने। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आपको थोड़ा सा मोटिवेट ज़रूर करके गया होगा। तो दोस्तों, लाइफ को खुलकर एंजॉय कीजिए, शिकायतें कम, शुक्रिया ज़्यादा। मैं हूँ वंदना रैना, आपसे लेती हूँ अलविदा। बाय बाय, टेक केयर।

कार्यक्रम युवा मंच आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शाम के 5:55 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सांझ और कार्यक्रम मौज आंकर आईंदियां प्रसारित किया जाएगा शाम 6:30 पर। कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनिएगा शाम 7:10 पर और रात्रि 8:00 विधानसभा समीक्षा आकाशवाणी शिमला से रिले की जाएगी। 8:15 पर आप सुनेंगे मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस और रात 8:30 पर सुनिएगा देशगान। रात्रि 9:15 पर एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे दामिनी फिल्म के नगमे। कारवां सुरों का ये कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 9:30 पर और रात 10:00 का समय है बॉलीवुड बीट्स का। पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत प्रसारित किया जाएगा रात्रि 10:30 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर। समाचार संध्या 8:45 पर और न्यूज एट 9 रात्रि 9:00 आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। और अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुनिएगा कल सुबह 6:05 पर और 6:40 का समय रहेगा श्री रामचरित मानस गान का। कार्यक्रम सुबह सुहानी हम आपके लिए लेकर आएंगे कल प्रातः 7:10 पर और कल सुबह 7:40 पर सुनिएगा लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। गाने सुहाने इस कार्यक्रम में फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा समय रहेगा कल सुबह 8:30 पर और कल प्रातः 9:00 का समय है सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि का। तो ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:58 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम अश्विनी कुमार मौदगिल है। मैं लगभग 40-45 साल से खेती कर रहा हूँ। फसल बीमा योजना हमें मुआवजा जो देती है उससे हमारी मदद हो जाती है। मेरे को खरीफ 2023 में 2,80,000 रुपया मिला। इसका हमारे इर्द गिर्द किसान है उनको हम कहते कि आप भी बीमा कराओ तो उसका आपको भी फायदा मिलेगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश की 14वीं विधानसभा का मॉनसून सत्र आज शिमला में शुरू हुआ। सत्र के पहले ही दिन सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्यवाही राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई, जिसके बाद विपक्षी दल भाजपा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने की मांग उठाई। इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने नियमों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय गीत सत्र के समापन पर गाने की बात कही, जिस पर विपक्ष नहीं माना और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा होते देख विधानसभा अध्यक्ष ने 10 मिनट में ही सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद सत्ता पक्ष विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ सदन के बाहर आ गया। बाद में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सदन में राष्ट्रगान का अपमान किया है और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान सत्र की शुरुआत में और राष्ट्रीय गीत सत्र के अंत में गाया जाता है, लेकिन भाजपा नियमों के विपरीत केवल राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रीय गीत का मुद्दा उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा विधानसभा की परंपराओं का सम्मान नहीं कर रही है।
1: भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान, अध्यक्ष मोदी ने राष्ट्रीय गान गाने के लिए सब उठाया और पहले ही हाथ खड़ा कर दिया कि राष्ट्रीय गान गाने से पहले हमें इसके राष्ट्रीय गीत के बारे में बताया जाए। विधानसभा की परंपरा रही है कि राष्ट्रीय गान गाया जाना। जो पार्टी राष्ट्रीय गान का अपमान कर सकती है, राष्ट्रीय गान के अपमान में विरोध कर सकती है, हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी, हिमाचल प्रदेश के विधायक दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ, इसको कभी सहन नहीं करेंगे।
0: दूसरी ओर भाजपा विधायक विपिन परमार ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत के आरोप लगाया और कहा कि भाजपा ने सदन में राष्ट्रीय गीत की

0: राष्ट्रगान से और समापन राष्ट्रीय गीत से करने के नियम हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया, जिस कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
1: जो राष्ट्रगीत है, जब राष्ट्रगीत लोकसभा में शुरुआत में उस समय की सरकार के द्वारा अडॉप्ट हुआ, लोकसभा के अंदर उसको गाया गया, उस समय की प्रोसीडिंग देखो आप, और वहां पर आम सहमति हुई, कंसेंसस हुआ अमंग द ऑल पॉलिटिकल पर्सन, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और उस कंसेंसस के ऊपर ही वो चार पहरे रखे गए और जो बाकी का जो पार्ट था उसको उसका हिस्सा नहीं बनाया गया। अब कानून के माध्यम से वर्तमान केंद्र सरकार उसको एनफोर्स करना चाह रही तो करे, वो तो जो संस्थान है कार्यों में होगा, विधानसभा अपने नियमों पर चलती है या अपनी परिपाटी पर चलती है।
0: भाजपा विधायकों ने विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ किए गए वायदों को पूरा न करने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर पूरे बिजनेस को स्थगित कर रोजगार के मुद्दे पर चर्चा करवाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार प्रदेश में 5 लाख नौकरियां देने का वायदा कर आई थी, लेकिन 4 साल का कार्यकाल बीतने के बाद अब तक कुछ हजार नौकरियां ही दी गई हैं।
2: कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव के समय युवाओं के साथ अनेक वायदे किए गए थे, जिसमें से प्रमुख वायदा था 5 साल में 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे, परंतु आज तक इस विषय पर सरकार कहीं कुतर नहीं पाई है। पौने 4 साल बीत गए, 1 लाख तो दूर, अभी कुछ हजार नौकरियां देकर ही ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। इसी मुद्दे को लेकर विधानसभा के अंदर भी नियम 67 का कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। सरकार जो है सदन के अंदर बाकी सारे काम को स्थगित के युवाओं के हित के इस मुद्दे को लेकर चर्चा प्रारंभ करें।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरमई सांझ। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफी के गाए हुए इस गीत के साथ, जो हमने लिया है फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं आशा भोसले की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत है, आर डी वर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ, और फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

0: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza. Now available with the exciting Turbo Booster Jet, refined K15C engine and underbody SCNG. With 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats. New 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of 7.39 lakh rupees. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price, starting from just 9.67 lakh rupees.
1: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 31st August.
2: Own the style icon at an EMI of just 899 rupees per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbag as standard.
2: Hurry, limited stock available.
1: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa.
4: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूं एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: सुरमई सांझ, ये कार्यक्रम श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म इम्तिहान से। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत है और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: Step into the world of Nexa.
1: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
0: And now it's yours at an effective price of just 6.75 lakh rupees.
1: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 31st August.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
6: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
5: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
6: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
5: जल्दी विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
7: और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। शर्मीली फिल्म से ये गीत है किशोर कुमार का गाया हुआ। बोल लिखे हैं नीरज ने और धुन बनाई है ST वर्मा ने।

सुरमई सांझ, ये कार्यक्रम श्रोताओं आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मौजा गराई दिया।

0: कार्यक्रम मौजा ग्रांदियां सुनने वाले सारे किसान कने बागवान भाई बहना जो केसो दी दो अज जोड़ी करी राम राम। किसान साथियों आज ट्याले पर मिंजो कने मेरे जेड़े साथी हैं से आए हुए हैं हरिया जी कने। हरिया जी जो मैं पकड़ी के लिए आई क्योंकि बरखा बड़ी लगी हुई कने मैं लिया हरिया जी चला थोड़ी देर बई लेंदे ट्याले पर कने गप शप भी मारी होंगे कहीं थोड़ी देर बरखा जी से न्याई लेंदे है ना हरिया जी।
1: केसरो जी सारे ते पहले तो देखा दे किसान साथियों जो कने तुहन जो भी दोनों हाथ जोड़ी करी राम राम।
0: हाँ जी
1: और देखा अज ट्याले पर बड़े दिनों बाद जैसे तुसा ने गल करने का मौका मिला करदा हाँ अज तो खूब गप्पा मारने हाँ कने दूजी गल जी भी देखा अज एक तो सिज्जी रे भी है तो कुछ चाय पानी की व्यवस्था भी करने पौनी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल दिखा लकड़ू लुकड़ू पे हो अंटियाले पर कने चाह पत्ती चीनी जड़ी ऐसा भी पई हो है तो पहले गप शप मार लेंदे जानकारियां जड़ी इनसे अपने किसान भाइयों कने साझी कर लेंदे तिसते बाद हाँ जरूर चाह भी रखनी है ना जी।
1: जी
0: तो दिखा रही है जी यहाँ कोई ना कोई जानकारी जड़ी से लेकर आंदे कने किसान भाइयों अज भी यहाँ ट्याले पर खाली नहीं आयो यानी कि जानकारियों का पिटारू जड़ा सा सोगी लेके आयो है ना।
1: अज देखा केसरो जी अहे जे किसान साथी उन्होंने जो तुह रोजगार हेतु डेयरी फार्म के कार्य उन्हें बारे च जानकारी देनी तो उम्मीद करते कि अहे जे किसान साथी इस कार्यक्रम जो सुना करते होर भी स्रोता सुना करते से जरूर इस जानकारी का जी असर तिना लाभ लेना।
0: बिल्कुल किसान साथियों दिखा अज हाँ डेयरी फार्म के बारे इस ट्याले के माध्यम ने गल करनी है। वैसे तो साड़ा जो किसान भाई है स जागरूक हो चुके हर काम के बारे जानता है और अजकल जोड़ा है स बोलते ना कि हर काम जोड़ा स किसान भाई जो करना चाहिए और अच्छी आमदनी करना चाहिए तो डेयरी का जोड़ा काम है स भी बड़ी चढ़ी करी साढ़े युवा किसान जड़े से करा करते हैं लेकिन बोलते हैं कि जलू कोई काम करना हो ना तो तिसते पहले तिसते बारे जानकारी ले लेना चाहिए है। बहुत सारिया गल्ला होनी हैं जिन्हें बारे सू पता होना चाहिए है। किसान साथियों दिखा कुछ भी पशु जो खरीदने से पहले विशेषज्ञ या पशु चिकित्सक की जी सलाह जरूर लेनी चाहिए है।
1: बिल्कुल जी
0: कने पशु का स्वास्थ्य भी दिखना चाहिए है उम्र कितनी है नस्ल कौन दी है कने दूध देने की क्षमता इस पशु की कितनी है ये सारिया गलों की जाँच करने के बाद ही तो हाँ ये जरा डेयरी फार्म का काम है शुरू कर सकते हैं।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल जी तो केसरो जी देखा तुसें यही बोलने का मतलब है तुहंदे कि मतलब कोई भी अगर डेयरी फार्म का काम शुरू करना तो उस वास्ते जैसे बिल्कुल अहम जो एक वैज्ञानिक विधि है कहने का मतलब कि कोई ना कोई मतलब ट्रेनिंग लेकर ही उस काम जो शुरू करना चाहिए और उस

0: जेड़े आंदे पशु है उन्हां दी देखभाल जे असें पूरी रखना चाहिए ताई जैसे यहाँ का काम जो फली फूली सकता।
1: बिल्कुल किसान साथियों, दिखा ग्रामीण जड़ी महिला साड़ियाँ किसान बहन से भी कने युवा वर्ग जड़ा है तिना वास्ते डेयरी का जड़ा काम है से बहुत ही उपयोगी स्वरोजगार जड़ा से बनी सकता है। सारे तो पहले तो सांझो ये पता होना चाहिए कि पशु का चुनाव किए करना है, गाय लेनी है या मैं लेनी है। तीजो खरीदने से पहले तीसरी नस्ल, उम्र, स्वास्थ्य कने दूध जड़ी ऐसे कितना करी दिंदी है तीसरी पहचान करी लेना चाहिए।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। तो देखा अगर हमें पशुधन स्वस्थ होगा ताई जी ऐसे ऐसे इस कम ते ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाई सकते। और पशुओं की जड़ी देखभाल है उस पर भी आंदा ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा निर्भर करता, क्योंकि आंदे
1: बिल्कुल
0: पशु ही अगर स्वस्थ नहीं होंगे तो उन्हें कुछ फायदा लेने की नहीं सोची सकते।
1: बिल्कुल कने सोगी हरिया जी दिखा सांझो पशु दे स्वास्थ्य दे बारे च भी जानकारी होना चाहिए है। सामान्य बीमारियां दे लक्षण क्या क्या होंगे तिन्हां दे बारे सांझो जानकारी होगी तो हाँ तीन समझी सकते हैं। और हर जो टीकाकरण होंगे तो इसके बारे जानकारी होना चाहिए है। कृमिनाशक कने कालू पशु चिकित्सक ने संपर्क करना है, इन्ह सारिया गलों का ध्यान सांझो रखना पौना है अगर हाँ डेयरी का काम जो है करना है। तो
0: बिल्कुल जी
1: इस दे
0: बिल्कुल।
1: कन्ने पशुशाला प्रबंधन जड़ा ऐसा भी सांझो होना चाहिए है। पर्याप्त जगह होना चाहिए है, बड़ी भरी भीड़ी जगह नहीं होना चाहिए जिससे कि पशु जड़ा ऐसा बीड़ा बीड़ा रहे। खुला खुला खुली डुली एक बोलते ना गुराल होना चाहिए है, हवा तित्थू होना चाहिए है, रोशनी भी होना चाहिए है, फर्श जड़ा ऐसा साफ सुथरा होना चाहिए है और मौसम के अनुसार व्यवस्था सांझो करनी चाहिए है।
0: बिल्कुल जी। तो देखा ये उम्मीद जरूर असा अपने किसान साथियों ते भी कने होर भी जेड़ा इस काम जो करने दे इच्छुक है उन्हें ये जानकारी बड़े ध्यान ने सुनी होंगी और तिना जरूर इस पर अमल करना। तो देखा ऐसा जानकारी ते बाद हमें जेड़े किसान साथी है श्रोता है इसे जरूर एक लोकगीत दी
1: न्यापा
0: आशा
1: बैठे
0: करा कर
1: होने।
0: दे उन्हें,
1: बिल्कुल
0: है
1: जी बिल्कुल,
0: ना। तो अगे
1: चल
0: जी
1: देन
0: और जानकारी देने ते पहले जैसे असा सुनाना होने ये लोकगीत।
1: जी।

0: तो देखा किसान साथियों, इस लोकगीत बाद जे ऐसे असा फिर एक बारी गल करने, आज जे ऐसे असा गल करने। देखा जेड़ा मोबाइल फोन है उसते फायदे भी बड़े, पर असें देखा करते कि नुकसान भी घट नहीं है। तो
1: जी
0: इसते बारे च जे ऐसे हाँ जरूर अपनी गलबात
1: बिल्कुल
0: करो।
1: हरिया जी, देखा मुझे लगा था कि तुहां जरूर अजकल खबरें सुना दे ने, पढ़ा दे ने, कने हाँ भी सारे सुन दे, किसान भाई भी सारे सुन दे होंगे कि भाई मोबाइल फोन दे पीछे जड़ा ऐसा है। अजकल बोलते ना कि घरे दे जितने सदस्य होंगे उतने हाथों च मोबाइल होंगे, कने
0: बिल्कुल
1: अह
0: जी,
1: बस मोबाइलों च बड़े रहते, कने साढ़े निक्के आने जड़े इन्हां दिनां जो एक बार फोन मिली आए तो बस तिना जो कुछ नहीं सोचता, कने अजकल दी जड़ी बोली सकते कि घरे दी जड़ी गृहणियां सह भी सोचदियां कि साड़ा बच्चा रोटी खाई ले तो तिस पिछे तिस मोबाइल पकड़ाई दें,
0: बिल्कुल
1: मोबाइल
0: जी,
1: अगर नहीं होगा तो तिनी खाना नहीं खाना। तो ये जड़ी है बड़ी भरी बीमारी हुई हुई, कने फोन जड़ा है मोबाइल फोन जड़ा अजकल अहाँ बड़े भी तिसका इस्तेमाल ज़्यादा करा दे, बच्चे भी करा दे, तो थोड़ा दे बच्चों जो तिसते दूर रखने की कोशिश करना चाहिए है।
0: बिल्कुल जी। तो देखा मोबाइल दे अगर फायदे की गल करिए तो देखा फायदे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखा पुराने समय विच जेता कोई भी जानकारी अगर हाँ लेनी होंगी तो हाँ जो देखा कितना मतलब संघर्ष करने पौता। संघर्ष करने का मतलब कि देखा अगर कोई हाँ कोई सामान्य ज्ञान दी जानकारी लेनी तो हाँ जो मतलब किताबों के बगैर हाँ बस कोई साधन नहीं होंगे था कि हैं उस दे बारे च किसी ते भी पता कर सकिए, या
1: जी
0: फिर किसी जानकार आदमी ते ही पूछी ने उस दे बारे च सह भी कोई विश्वास नहीं कर सकते है ना। तो
1: जी
0: आज हाँ देखा मोबाइल है एड़ा एक साधन आई गया कि तुहें गूगल पर कुछ भी सर्च कर लिया पूरी स्टीक जानकारी जैसे तुहें जो बड़े अच्छे तरीके ने मिल दी। पर
1: जी
0: सौगी सौगी देखा से एक गल होर देखा कर दे कि मतलब जितना इसका फायदा उतना लोग इसका फायदा लेने की अपेक्षा नुकसान अपना ज्यादा करा दे, क्योंकि तुहें खुद ही देखा एक बारी अगर सवेरे उठी नहीं तुहें मोबाइल हत्था पकड़ी लिया तो फिर ना ता कम्मे कारे दी कोई याद रहनी ना रोटी पानी दी कोई याद दी, चाहे 3 घंटे तुहां दे बिल्कुल मतलब बिना चिंता ते
1: बिल्कुल
0: कोई
1: जी
0: और
1: बिल्कुल
0: कम्मारी चिंता नहीं कैसे रहनी निकल
1: बिल्कुल
0: जाने।
1: हरिया जी, तू हाँ बिल्कुल ठीक गल गलाई है कि भाई बच्चियां जो हम मोबाइल फ़ोन ते भी थोड़ा दूर रखना है, करें दिखा पहले भी जलू मोबाइल फ़ोन नहीं होंगे थे उस टाइम भी यहाँ पढ़ाई करते थे पढ़ते थे है ना, पर आजकल जो ऐसा एक रुआ चली पे कने एक आदत जड़ी बच्चों जो बना कर दी थी जो सुधारना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो आजकल मोबाइल बच्चों ते ले लिया दे तो बच्चे बड़ा कुछ जो ऐसा करी लिया करते हैं। कने इस कने हरिया जी थोड़ी देर गलबात अहाँ करनी है बरसात जो लेकर, क्योंकि बरसात आजकल बहुत ज़्यादा हुआ करती है और बहुत सारे ऐसे दुर्घटना अहाँ दिखा करते हैं कि हुआ करते हैं, गड्डियाँ जड़ी हैं इनसे अहाँ चला दें लेकिन रास्ते जड़े इनसे सड़क कई बार कुथी बही या फिर कुथी बोल

0: ना कि
1: बिल्कुल
0: जड़ी जमीन ऐसे खिसकी के आई जाती तो सह जो नुकसान होंगे तो ऐसे चाह अपने किसान भाइयों जो ये बोलना है कि तू हाँ कोशिश करा कि अपने घर च ही रहा कने ज्यादा बाहर कुथी मत जा।
1: और अगर देखा निकलने भी पौंदा तो तुहें अपनी सावधानियां ने पहले मौसम की जानकारी ले लिया अगे रोड केड़ा उस च ठीक है ता जाने दा फिर तुहें सोची सकते। लेकिन अगर तुहें बिना किसी तैयारी ते घर ते बाहर निकल जाते अगे कुछ भी दुर्घटना हो सकती। और ज़्यादा से ज़्यादा ये है भी अगर तुहें मतलब एक मौसम के अनुसार ही अपनी जिड़ी किती भी जाने रही यात्रा ही किती अगे पीछे निकलने रहा तो उस जरूर मौसम की जानकारी लेकर ही शुरू करना
0: जी
1: चाहिए।
0: जी बिल्कुल कन्हैया जी दिखा जानकारी दे बाद हूँ मुझे लगा था कि ट्याले पर फ्री थे जो समय है एक लोग जनकार सुनने का हुआ करता था चलते ना भी सुन दे सोगी सुना अपने किसान भाई बहना जो लोकगीत।
1: जी।

0: किसान साथियों तो तुहां सुने प्यारा दया लोक गीत और कुछ एक स्नेह तो सुनाए और कार्यक्रम च हरिए जी उन्हें अगे बढ़ना है कहीं गलबात करनी है बरसात के मौसम जो लेकर ही बरसात का जो मौसम है तुहां माणुआ वास्ते तो बोल देना कि हों ही है खराब लेकिन पशुधन जोड़ा है इस वास्ते भी बोलते कि चुनौती भरिया हों कने पशु पालक जो इस टाइम में बोलते कि पशुधन का बड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पौंदा है। सब तो पहले तो दिखा जी गराला है ना तिना की साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना पौंदा है क्योंकि ऐसे चिचड़ मक्खू जोड़े हैं से पशुओं जो ज़्यादा लगते हैं
1: बिल्कुल
0: कने सारियाँ जी गुराला इनसे सुखियाँ होंगी या साफ होंगी हवादार होंगी हैं तो पशु जो हाँ किसी भी रोग ते लगने ते जड़ा से बचाई सकते हैं कने
1: बिल्कुल जी
0: इस कने दिखा पशुओं च नमी के कारण बड़ी जगह बोलते कीटाणु हो जाते हैं परिजीवी जड़े इनसे बढ़ी सकते हैं ऐसे च पशुधन की थोड़ी ज़्यादा देखभाल सांझो करना पौती है। गर्मियों तो हाँ दिखा बहर बनी लेंदे ना ना ही सांझो ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत होंगी है सब कुछ ठीक रहा पर यह जो मौसम है इस सांझो थोड़ा जहा ज़्यादा ध्यान रखना पौता है।
1: बिल्कुल केसरो जी तो देखा तुसें बड़ी अच्छी गल बोली पर एक दूजी गल ए भी है कि जियां घराला च तुसें गल कीती पशुओं दी तां उस विच देखा कई बारी चार चार दिन जे ऐसे बारिश लगी रहिंदी तां जरूर अंजड़ व्यवस्था अपने पशुओं वास्ते करने चाहिंदी कि उन जेड़ा बैठने का स्थान ऐसे बिल्कुल सुक्का रहे ताकि उन्हां जो कोई मतलब होर बीमारी ना लगे।
0: बिल्कुल
1: और दूजी गल देखा अगर अहां दे पशुआं रा चाहे बारिश भी लग रही रहे लगातार तां भी जे खाने पीने रा ध्यान असें नहीं रखगे तां पशु जे हमारा बीमार भी हो सकदा और दूजे मतलब बीमारी लगने दा भी सौगी सौगी जे उसका सेहत अगर ठीक नहीं होंगी तो उस जे आ फिर ही मतलब दूध भी घट देना।
0: बिल्कुल कने हरी जी दिखा अजकल बरखा के दिन च ना पशुओं के पैर कने खुरां का खास ध्यान रखना पौंदा है सांझो तिना दे खुरां दा पैरों जो जेड़ा ऐसा दिखते रहना चाहिए है कोई तुहानू अगर ऐसा लगता है कुछ खुर पका रोग लगी लगने जो तुहानू लगा आसार लगा देन तो जल्दी तो जल्दी तुहां जेड़ा ऐसा पशु चिकित्सक वल जाई करी इसकी दवा जी ऐसे ले सकते हैं कने संक्रमण तो इस बचाई सकते हैं। दूसरी गल क्या है कि साढ़े पशुधन जेड़े से एक ही घराला च इकट्ठे बनाते हैं है ना जी कने एक पशु अगर सानू लगता है कि थोड़ा ढिला मिस्सा लगा है बुखार है या तीसियों कोई ऐसा संक्रमण रोग है तो कोशिश करा कि तीसियों जेड़े होर पशु हैं तिना ते लग रखा ताकि जेड़ा ठीक पशु है तीसियों कोई ऐसा संक्रमण ना होए। यह छोटी छोटी गल्ला जेड़ी हैं सै सानू बिल्कुल ध्यान च रखना चाहिए क्योंकि अगर अहां पशुधन का ध्यान रखगे तो ही बोलते ना कि हाँ किसान जेड़ा ऐसे तिना पर निर्भर करता है कने सै दुधारू पशु जेड़ा है सै दुध भी अच्छा दिंदा है और साड़ा जेड़ा घर परिवार है इस पर ही चलता है।
1: बिल्कुल जी क्योंकि देखा अगर अहां दा एक पशु मतलब एक घर रे सदस्य सही आ अगर पशु बीमार होगा तो पूरा घर रे जे सारे सदस्यों जो टेंशन हो जाएगी।
0: बिल्कुल कने हरी जी दिखा चलते चलते एक गल हो याद आई है कि अज

0: अगर बरसात का मौसम है कने जगह जमीन जड़ी से कच्ची होंगी है कने तीस पर अगर अह अपना पशुधन जोड़ा है चरने वास्ते छड़ देन तो कई बार जमीन जी ऐसे कच्ची होंगी मिट्टी कच्ची होंगी तो जो पशु है सारा रिड़की सकता है गिरी सकता है कोई ऐसी दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसे च कोशिश करा कि हरा चारा घरे ही तुह तीसियो प्राप्त करवाई दे है ना जी। तो यह सब गल् जड़ियाँ ध्यान रखने वाली अच्छा रीत च तो साडे किसान भाई वैसे तो बड़े जागरूक हैं पर फिर भी अह टियाले पर आई करिए छोटी छोटी गल् जड़ियाँ तिना कने साझा करते रहते हैं कने हूँ मुझे लगता है कि कार्यक्रम च फिर ते समय हुआ एक प्यारा दिया लोक गीत का
1: जी।

0: and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags.
1: And now it's yours at an effective price of just 5.79 lakh rupees.
0: Yes, rupees 5.79 lakh. Valid till 31st August.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today.
0: Hurry, offer still stocks last. TNC apply.
2: Nexa.
3: किसान साथियों ता दिखा इस लोकगीत कने सोगी विज्ञापन कने जड़ा है समय साढ़ा इतनी समाप्त हुआ है। जानते पहले दस दिए कि आज तकनीकी सहयोग रहा सुरेंद्र कपूर दा और साढ़े कार्यक्रम प्रस्तुत करता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और उन्होंने दोनों जो दिया अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजा कर आइंदिया। शाम के 7 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क में है। विदेश मंत्रालय की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फलस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि सुश्री रंगनाथन ने फलस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फलस्तीन सरकार को सौंपी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य सरकार सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार के साथ पूरा सहयोग कर रही है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को स्वीकृति दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:10 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि
1: कार्यक्रम खेती बाड़ी सुनने वाले सारे किसान कने बागवान भाई बहन जो केसरो दी एक बारी फिर ते राम राम और हाँ ट्याले पर फिर ते आई हो कने मिंजो कने आज है हरिया जी। हरिया जी तो अंजो भी राम राम।
2: तो हंजो भी केसरो जी राम राम कने सारे किसान साथी हंजो भी राम राम।
1: बिल्कुल दा संजदा ये बेला है कने दिखा हल्की हल्की बरखा जड़ी ऐसे लगी हुआ है कने साड़ा किसान जड़ा ऐसे बरखा हो चाहे जो मर्जी हो जाए अपने खेत खलिहान का ख्याल रखता है कने हरिया जी दिखा आज का जड़ा मौसम है ना उस सो खेत खलिहान च जाना भी चाहिए क्योंकि कई जगह साड़े खेत खलिहान जड़ा ऐसे पानी ने भरोई आते हैं और उस टाइम जड़ा है सो जरूर बोले ना खेतों के अखे बखे जड़ा है पानी या निकासी वास्ते नालियाँ जड़ियाँ से बनाई देना चाहिए नहीं तो सा जी फसल है से सड़ी सकती है।
2: बिल्कुल जी। तो देखो केसरो जी आज फिर ही ऐसा अपने जेड़े किसान साथी है उन्होंने एक और नई योजना साझा करनी
1: जी। बिल्कुल
2: मिशन सोलर चरखा योजना।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।
2: ये देखा ग्रामीण क्षेत्रां विच जे सौर ऊर्जा ते चलने वाले रोजगार दे जेड़े अवसर है उस जो पैदा करने वास्ते ये केंद्र सरकार दी योजना है।
1: बिल्कुल जी।
2: ईसा योजना जो देखा सूक्ष्म लघु कने मध्यम उद्यम मंत्रालय
1: जी
2: यानी के मिनिस्ट्री ऑफ MSME द्वारा जी ऐसे शुरू किया गया है और इस दा संचालन जी है खड़ी कने बिलिंगों दी इंडस्ट्री यानी के KYIC द्वारा किया जाता है
1: जी।
2: हाँ जी। तो देखा इस योजना दी जड़ी खासियत है और लाभ है उन्हें भी अहां गल करनी। तो देखा सारे दे पहले था सोलर चरखा कलस्टर
1: जी।
2: ये योजना जी ऐसे मुख्य रूप से गांव कने उसके आस पास दे 8-10 किलोमीटर दे दायरे विच जैसे चलने वाली योजना है
1: जी।
2: और इस योजना विच जैसे रोजगार दे अवसर भी बड़े ज्यादा है क्योंकि हर कलस्टर विच जैसे 200 से 2042 जेड़े कारीगर है जेड़े मतलब कतना बुनना और सिलाई करना जानते उन्हें जो रोजगार मिल ही सकता।
1: बिल्कुल।
2: और वित्तीय सहायता की गल करिए एक कलस्टर वास्ते जे असे ज्यादा से ज्यादा 9.60 करोड़ रुपए की जिहड़ी राशि है मतलब सबसिडी जिसो बोली सकते
1: जी
2: सहज असे वित्तीय सहायता दे रूप च प्रदान की जाती है और इस विच उपकरण की जिहड़ी गल करिए प्रत्येक स्पिनर जो 10 स्पिंडल वाले 2 चरखे दिते जाते
1: जी जी बिल्कुल
2: जेडे सौर ऊर्जा ने चलते
1: जी।
2: हाँ तो देखा इसके बाद अगर असें गल करिए इसकी मतलब जिया कोई भी इसने जुड़िया है किया जुड़ना है तो इस वास्ते अहां जो जे असे जानकारी होना बड़ा जरूरी है।
1: जी जी बिल्कुल। कने दिखा इस दी जानकारी वास्ते जिला उद्योग केंद्र खादी एवं ग्राम उद्योग ते जुड़े कार्यालय जड़े न तिन्हां ते संबंधित सरकारी विभाग कने हाँ संपर्क करी सकदे न। तो बड़ी अच्छी जानकारी जड़ी असे हरिया जी तुहां लई करी आए कि भई सोलर चरखे च सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है कने इसका उद्देश्य जड़ा ग्रामीण क्षेत्र च रहने वाले कारीगर कने विशेष रूप कने

0: महिला साड़ियाँ हैं तिना वास्ते रोजगार दे अवसर पैदा करना है, कने सूत कने खादी ते जुड़े काम जो बढ़ावा देना है। पहल के जमाने च हरी जी दिखा सूत कने खादी जरा सा बहुत ज़्यादा चलिया है, पर हूँ भी लोग जड़े से सूत कने खादी के कपड़े बखे जा दे, कने बड़ी अच्छी गल है बोलते ना कि अपनी खड्डियाँ होंगे नहीं, पुराने जमाने च खड्डी पर कपड़ा बनता था, तो घरे दे कई सदस्य जड़े से अपने काम काज करके खड्डी पर बैठी आते थे कने कपड़ा तैयार करते थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और तुसीं देखदे हैं जियां होर भी चीज़ां जिहड़े हमारे पुराने टाइम विच लोग ज़्यादा तो ज़्यादा प्रयोग करते थे, अज फिर लोग जिहड़े पढ़े लिखे लोग भी वह भी उस पासे वापस आना लग रहे। तो तुसीं बड़ी अच्छी गल बोली कि जिहड़ा खादी का काम है खड्डी का काम है ये सारा बिल्कुल मतलब नवे सिरे ते एक बार अगर अहम बोलीए तो इस विच रोजगार की अपार संभावनाएं विकसित होआ करदी। और दूजी गल है कि इसने जुड़ने वास्ते देखा जिहड़े आदमी जुड़े हैं उन्हां वास्ते केंद्र सरकार ते पासे ते भी पैसों की कोई कमी नहीं है, और इस योजना का लाभ लैने वास्ते देखा तुहांदी जिहड़ी संस्थाएं उन्हां विच जे तुसीं आवेदन कर सकते जियां खादी संस्थान KYI गैर सरकारी संगठन है NGO कोई भी है सरकारी समितियां ही समाजिक उद्यम या MSME इन सारे च जो कोई भी संस्थान तुहें देखी सकते सारे पंजीकृत संस्थान है और इन्हें तुहें फायदा ले सकते। और व्यक्तिगत तौर पर भी जियां चाहे हरी महिलाएं चाहे बेरोजगार युवा है चाहे समाज का होर भी कमजोर वर्ग का कोई भी व्यक्ति आ सारे जे सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जिहड़ा आंदा पुराना बुनकर का काम आ कताई का काम आ तो इस जो मतलब करके जे असें अपनी आमदन भी बधाई सकते और इस कलस्टर का हिस्सा भी बनी सकते।
0: बिल्कुल, गलाने का मतलब है कि अपनी संस्कृति कने कने अपनी जिहड़ी परंपरा है इस कने जुड़ना बड़ा जरूरी है, कने फ्री ते जिहड़ा साडा युवा है इस बखे जादा है तो बड़ी अच्छी गल है, और सानू जरूर अपने पुराने जिहड़े रीति रिवाज हैं पुरानी जिहड़ी चीज़ हैं तिना च भुलना नहीं चाहिए। हाँ ये अलग गल है कि हुण जिहड़ा आधुनिकीकरण होआ दा है कने मशीन आई हैं, वैसे ही हुण चरखा जिहड़ा है भी तुहां हुण अज हाँ दस्या जी सौर ऊर्जा कने चलने वाले चरखे जिहड़े चली पे हैं तो हुण भाई लोगों वास्ते आसान होई है कोई भी काम करना। हरिया जी दिखा संजय का वेला है, कने संजय का वेले प्यारा दिया लोग गीत भी हुण सुनी लईए, तो बोलते ना थोड़ी जी थकान भी दूर हो जाती, कने साढ़े किसान भाई जिहड़े हैं सब दिन भर का थकान जिहड़ी इस गीतां चों सुनी करी दूर कर लैंदे।
1: बिल्कुल जी केशव जी, हां तुहांदी भी कने अपने किसान साथियों की भी देखा हुण डिमांड पूरी करनी है लोकगीत दी, तले सुनदे हुण इह लोक।

0: तो देखा केसरू जी, इस छैल जे लोक गीत के बाद हुण चलना हाँ एक जानकारी दी तरफ, है ना।
1: किसान साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी अहां दा प्रयास रहंदा कि हर दिन एक नित नई जानकारी अहां तुहां तक पहुंचाइए, चाहे वह विशेषज्ञ द्वारा दीती गई जानकारी होवे या फिर उन्नत किसानां कन्नै कीती गई गलबात होवे। उसी कड़ी विच अज एक उन्नत किसान अहां कन्नै जुड़ा करदे हन, ओवा करदे हन इन्हां कन्नै गलबात। राम राम जी।
2: राम राम जी।
1: जी सारे ते पहले अपना नां दसा कन्नै कुतू तुहां दे घर न।
2: मेरा नां है जीवन सिंह राणा, घरां दे घाट रोड पौंदे नगरोटा सूरियां ब्लॉक तहसील।
1: जी जीवन सिंह जी, तुहां खेतीबाड़ी करदे जी?
2: हां जी बिल्कुल जी करदे जी।
1: तो जी देखा खेतीबाड़ी करन ताईयां अगर हां गल करिए ता तुहां वाल कितना के जमीन दा जड़ा रकबा जिस तुहां खेती करदे हन?
2: असल इस वेले 30 कनाल रकबा जी।
1: ये सारा ही खेती करने योग्य होए?
2: हां जी सारा जी खेती करने योग्य।
1: अच्छा इस वेले दी अगर हां गल करन ता तुहां 30 कनाल विच जड़ा सा क्या-क्या लगाया इस वेले?
2: इस वेले हां 30 कनाल च 25 कनाल च तां लगभग ड्रैगन लगाई ता हुण, पहले लगाया कोई 5-6 कनाल
1: ड्रैगन बगीचा जड़ा लगाया ए, ड्रैगन जड़ा सा क्या चीज है सुनने आले जड़ा सा दसा तो हां कुस तरीके कन्नै जड़ा सा इदी हां शुरुआत जड़ी सा हां कर सकदे हां जलो इदी हां खेती करनी है?
2: ड्रैगन जड़ा है फल जड़ा है सा बेसिकली अमेरिका ते आया, फिर अफ्रीका ते कने इंडिया च आया, ये बंगाल च सारे ते पहले, फिर आंध्रा गुजरात महाराष्ट्र वगैरह च इन्हां च थोड़ी ज्यादा करदे खेती, कने साडे इत्थों नजदीक पंजाब च करदे।
1: तो जीवन जी जियां ड्रैगन दी अगर हां गल करा करदे हां, शुरुआती तौर पर इस चीज की पौध लगाना पौंदी या कोई बीज होंदा?
2: हां जी हां जी पौधा लगदा जी दा।
1: अच्छा पहले कोई पनीरी लगाना पौंदी?
2: नहीं जी कलम जी आप पौधा लगा दे जी, कलम कट्टी लगी हुंदी जी दी, पहाड़ी च लाई सकदे जिहड़ी हाल इक छू हुंदी ना जी।
1: हां जी
2: ये तेरी प्रजाति है, छू वाली प्रजाति है, तुसीं अगे अगे थोड़ा ग्राफ्टेड करी ते जेड़ा ऐसा अमेरिकन रेड इलाइस रेड जेड़ा ऐसा अमेरिकन ब्यूटी लगाया सा, रेड है अंदर ते भी लाल है कने बाहर ते भी लाल है।
1: अच्छा अच्छा भी प्रजातियां होनी?
2: हां जी बढ़िया विभिन्न विभिन्न प्रजातियां होनी, पर आहा काफी ज्यादा घूमे फिरे कने मतलब सा जो अच्छी लगी।
1: अच्छा जी तुहां दस्या कि 25 कनाल च तुहां इस वेले केड़ा सा करा करदे ने ड्रैगन दा काम?
2: हां जी पहला लगाया सर, बाकी वाला तो पहले तां लगांदे कोई 3 कनाल च था, पहले लगाया सर कोई 450 बूटा लगाया।
1: अच्छा
2: 25 पिलर
1: जी। अच्छा जी सबसे पहले दस्सा तो हां जी दस्सिया तो हां पिलर है या खेत है, इसकी तैयारी किस तरीके करने करनी, शुरुआती तौर च क्या करना पौंदा चलो हां खेती करनी है?
2: सब तो पहले तो ये जो है उसको होंदा जी तू पानी नहीं खड़ोना चाहिए, 24 घंटे जी पानी खड़ोई जाता, पानी नहीं खड़ोना चाहिए, दूगा शेडो नहीं होना चाहिए मतलब दशौरी जिसे बोलते पहाड़ी है सा।
1: हां जी
2: शौरी होना चाहिए।
1: अच्छा
2: कहने गर्मी का पौधा है।
1: हां जी
2: लगी सकता। हां जी पानी की सी बड़ी घट जरूरत होगी।
1: अच्छा जी तुहां दस्सिया कि पिलर ये क्या कोई सीमेंटे दे बणदे?
2: हां जी आरसीसी पिलर, एक्चुअली इसका वजन ज्यादा हो जाता ना जी, काफी बड़ा हो जाता है, मतलब 7 फुट बनाते हैं लंबा, फुट जमीन च होता जी मैला गड्ढे ती गड्डी सी ना उपर एक स्ट्रक्चर होता आरसीसी सीटर का ही।
1: अच्छा
2: एक्चुअली जी उम्र जी ऐसा कोई 20-25 साल है, तो इस कारण से स्ट्रक्चर अच्छा बनाना पौंदा बढ़िया करके, एक वन टाइम एक बारी इन्वेस्टमेंट करना पौंदी है।
1: हां जी
2: तो ये 4 पौधे लगते एक पिलर पर, तो ये 4 पौधे कने पिलर लगाई लगू के सारा खाद वगैरह मेहनत करी एक पिलर की कीमत लगभग 2000 रुपये पी जी।
1: अच्छा जी ये चलो तुम पिलर बनाए थे, इस तरह कोई खास कारीगर होंगे या अहां दे लोकल?
2: नहीं अहां दे भी सा एक सांचा बनदा जी टालड़ा हुंदा ना पहाड़ी, हां इट्टा जों इट्टा बनांदे कच्ची इट्टा बनदे कने उपर वाला भी इयां बनांदे, एक लोहे दा टालड़ा बना लैंदे कने ते इसां कढ़ी दिंदे मतलब सांचा बनांदे, आरसीसी बनांदे, रेशो बनांदे, लेंटर तो बड़ी विच से सरिया पौधा 8 mm दा जी। हां पहले जमीन पर बना लैंदे ना, पहले पक्के कर लैंदे, उस बाद लगांदे जी मैला लगांदे जी गड्डी दे, पहले गड्डी लैंदे सारा, पहले खेत लेवल कर लैंदे, फिर इसी हां लगा लैंदे पिलर लगा लैंदे, फिर उस बाद लैंदे पौधे, उस बाद पौधे लाइंदे, हर पौधे एक पिलर पर 4 पौधे लगदे।
1: अच्छा जीवन जी जियां ये शुरुआती तौर नेचुरल फार्मिंग जेड़े प्राकृतिक विधि आले जेड़े किसान हां कन्नै जेल्लू जुड़दे हैं। अच्छा तो जियां इक्की पौधे दी कितना की जेड़ा सा इदा
2: जी लगदा फरवरी महीने च लगदा, वैसे सही महीने च, पर कई लोग सितंबर अक्टूबर च भी लगा लेंदे, कोरा वगैरह जेड़ा पे जांदा तां नुकसान होंदा, मतलब कोरे दा थोड़ा बचाव करना पौंदा, ये बर्फ वगैरह पौंदी थी तुनी होंदा है।
1: अच्छा
2: कने फिर थोड़े जे सांझे इस कारण मुश्किल होई कि हां नेचुरल करदे हे लोग, जित्थों दे आंदे सब वगैरह ऐसा केमिकल वगैरह सब यूज करदे, सांझे थोड़ी पहले साल मुश्किल होई, 2 साल च मतलब ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੈਂਪਲ ਫਰੂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ 6 ਸਾਲ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫਰਵਰੀ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾ ਨਾ
1: ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: ਇਹਦੀ ਫਰੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਮਈ ਚ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜੂਨ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੱਗਾ ਦੇ ਟੁੱਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ 28-30 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਚ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀ ਜਾਂਦਾ
1: ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਹ ਪੌਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਤਾਂ
2: ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੌਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲਗਭਗ ਮਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 120 ਰੁਪਏ ਪੁੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਚੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਂ
1: ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਚ ਕੀ ਖਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੈਚੁਰਲ
2: ਸਾਈ ਬਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨਾ ਗਾ
1: ਹਾਂਜੀ
2: ਜਿਸਨੇ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੰਨ ਜੀਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
1: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ
2: ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕੰਨਾ ਦੀ ਚਮਕ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੌਂਠ ਅਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਖੱਟੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਭ ਵੀ ਕਰਦੇ ਫਰੂਟ ਜੋ ਚਮਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਲੋਕ ਕੈਮੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ

0: अंकुर दी सत्ता किस्म दे मतलब दाली हुंदी है कने तिल हुंदे कने कणक हुंदी ता फिर मतलब अर्क बनांदे हां कने सह स्प्रे करदे।
1: अच्छा जीवन जी इया गल करिए ता 21 पौधे दी क्या पैदावार है उस तक रहा कढ़िए
0: ता इस पौधे दी एक्चुअली जेड़े बोलदे ने सत बोलदे लगभग एक जेड़ा चार एक पिलर जेड़ा सा लगभग 15 किलो दे दिंदा भी पर हले हां हुण 30 साल दिंदा बोले फुल ता हुण इस साल साडा 30 साल है सीजन च।
1: हां जी
0: आहां तो नवंबर ते बाद दसी सकदे भई इक पौधे साडा कितना दित्ता इले साल ता साडा है जेड़े 100 लगाए हां 25 पिलर ता 6 किलो दी एवरेज करना है लगभग 6 क्विंटल ते ऊपर निकली है साडा पिछले वाली ना
1: 21 साल दे 21 पौधे दी पैदावार है
0: नहीं नहीं सारी सारी जितने हां लगाए टोटल बगीचे मतलब 6 किलो एक
1: पौधा
0: पौधे साडे दी इस वारी हाला टारगेट साहब भी लगभग थोड़ी ज्यादा निकली है मतलब 10 12 क्विंटल इस सोचे लगने ते हुन देखो हाला 6 क्विंटल तक इस वेले तक निकल चुका हाला ये अगस्त सितंबर आ जड़ी पौध हुंदी मतलब हुंदी ज्यादा हुंदी है।
1: हां जी हां जी
0: कने इस दी ना जड़ी जिने सेल जिदे कटी हुंदी जिस बाद सुपर फ्रूट बोलदे सी ओदी मतलब जिदे सेल कटी होन
1: हां जी
0: कना वास्ते बड़ा भारी मतलब उपयोगी है कने जी कैंसर वाले पेशेंट हां दे मतलब चलो ईश्वर दी कृपा कन्ने मतलब प्रकृति खेती कन्ने जुड़े तो काफी लोग जेड़े साले इस घरे ले जंदे आई मतलब ऑर्डर पर ले जंदे हुण इस वेले तो हाले दिखाया ही नहीं इसलिए तो इतनी डेंगू दी मार पई हो मार्केटिंग दी थोड़ी जी मुश्किल होंदी है सर चलो थोड़ा प्रयास भी किया हां दे डीसी साहब बड़े अच्छे ने डॉक्टर निपुण जिंदल जी
1: जी हां जी
0: ए आयो भी थे 11 तारीख तो साले विजिट भी करिए बड़े खुश होए देखिए डिप्टी डायरेक्टर हाडे कमलशील ने गिने मैं हां सब्जी अपनी लगांदे सारी हां कोई नहीं मतलब लेंदे हां रेड राइस लाल चावल भी लगांदा मैं
1: अच्छा
0: भिंडी लगाई है इसलिए
1: हां जी
0: सब्जी सारियां जड़ियां होंदियां सीजनल सारियां लगांदे।
1: अच्छा अजय जी ये इदा क्या क्या इदा भा क्या रहंदा अगर किलो सब बिकदा या पीसेस
0: नहीं ये हां पैकिंग भी करदे कने किलो भी दे देंदे मतलब किट्ठा जी नहीं लेना होता 250 रुपए किलो चली जांदा इजीली मतलब बिल मजे ने कोई वे नहीं अगर मंडी है 300 रुपए भी चली जांदा इसलिए हां देंदे हां घट देंदे मतलब मंडी है ना 50 रुपए के चक्कर जिन्ने देखी कि हां किसान ने कने बेचारे कैंसर पेशेंट होंदे सब उन्हें दुखी होंदे बेचारे
1: हां एक भावना तौर पर कने के चलो अपनी है ना
0: बिल जाते मिस यूज नहीं कर दिखा हुन आज इसलिए डिमांड बड़ी है हुन आज रोज ही टेलीफोन आंदे मंडी है ते
1: अच्छा
0: सांजो दे दिया थोड़ा दे दिया इसका बड़ा फायदा रहा नहीं प्रकृति खेती का बहुत अच्छा है लोगों जिन्हें पता है प्रकृति खेती करते सर विश्वास ने हुई है अच्छा है टेस्ट है स्वाद है
1: जी हां जी
0: हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी जाना मेरा फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी सारे काफी लोग लेंदे रहे।
1: अच्छा तो मंडी कौन लगती तो हां जी कुसा मंडी
0: मंडी रहा दी जसूर है फिर कांगड़े वाले भी है शाहपुर भी है एनी अपने धमशाला है पालमपुर भी है
1: हां जी
0: इन्हां कने सारे कनाड़ी गलबात
1: जल तो हां ये काम शुरू किया हां ता इस ते पहले तो हां कुछ सिखलाई वगैरह ले
0: नहीं मैं ता कोरोना टाइम था उस लेके ना बेटा मेरा था आशीष सिंह राणा बीटेक सिविल फिर गवर्नमेंट सर्विस दे चक्कर च था सा मिली नहीं कने प्राइवेट से जाना नहीं चाहता सा कोचिंग कोचिंग ले रहा।
1: अच्छा
0: फिर कोरोना च फिर फसी गए चक्कर ना फिर
1: हां जी
0: मैं बाग लगाना नहीं किसानी करनी पहले बोलता मैं किसानी करनी पहले किसानी करना इतनी आसान नहीं है मुश्किल है भाई
1: हां जी
0: साडे पुरखां ते लेके मतलब दादा ते लेके किसानी करदे आए अच्छी किसान थे हां काफी जमीन थी साडी
1: हां जी
0: कना अपने आप करदे थे किसानी मतलब किसी दे मतलब डिपेंडेंट नहीं थे
1: बिल्कुल
0: इसलिए फिर ये बोलता भी मैं ड्रैगन लगाना मैं तो सुनया पहली बार नाम था ड्रैगन दा फिर इतना फिर मेरे पत्नी थे ते ना कना पुछे ते ना गपशप लगी बेटे मां बेटे दी
1: हां जी
0: मैं तेने बोले मैं दिखी लिया तुहाडी मर्जी है दिखी लिया मैं दसवां समझ हुंदा क्या ड्रैगन पहले फिर यहां बरनाला विजिट की पे हां 5 सितंबर 2020 हो गए है दिखना।
1: अच्छा
0: बिल्कुल देखो सौभाग्य की गल है तो हां दिखा इंटरव्यू
1: दिखा कने इसी बहाने दिखा आज फिर तो हां करना जेडी सही इसी विषय पर हां गल कर ले
0: बिल्कुल बिल्कुल तो गए लगभग 300 किलोमीटर है 5 घंटे लगे साडे बरनाला पुजने दे
1: हां जी
0: अपनी गड्डी च गए असा दिखया पहले पहली बार दिखया मैं जाए कि सर ड्रैगन रूट ते फिर मैं चलो अगर मन करा बेटे दा तो फिर आदमी दबाना नहीं चाहिए कुछ ही आशा है फिर बस फिर मैं तो बस सेवादारी है ना लगिया कम है तो बगीचे फिर कने कने भी करदे पत्नी ने कने बेटा है
1: हां जी
0: बाकी सब्जियां हां सारी लगांदे प्रकृति तरीके कने करदे कने बड़ी मजेदार रिजल्ट आउंदा बड़ा अच्छा रिजल्ट है।
1: अच्छा अच्छा प्राकृतिक खेती दी भी तुहां कुतू ते प्रेरणा मिली है तुहां जो
0: प्राकृतिक खेती जी ता पहले ता राजीव दीक्षित जी है पहले 12 च इना ते मैं सुनया काफी दिन दे लेक्चर लुक्चर यूट्यूब वगैरह पर भी ज्यादा गलबात क्लियर नहीं हुई फिर 18 च साडे हिमाचल लाने शुरू कीती प्रकृति खेती
1: हां जी
0: सुभाष पालकर प्रकृति खेती
1: जी जी
0: किसान
1: हां जी हां जी
0: फिर इना कने हां जुड़ी है 18 च जुड़ी है ना कने ट्रेनिंग तो कोई ले नहीं फिर इथू हां बीटीएम हुंदे साडे ब्लॉक ना बीटीएम कनेडियम आत्मा परियोजना वाले ते ना जेड़े ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर हुंदे ते ना हाड़ी बड़ी मदद कीती फिर इना हां जो दस्या भी तुहां करा कने आउंदे रहंदे रेगुलर बेचारे हाले पा देता ਇਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਪਾਲਕਰ ਦੇ
1: ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੀਸੀ ਨੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਚੰਦੇਲ ਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਇਹ ਥੇ ਉਸਲੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ
1: ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਮਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ
1: ਜੀ
0: ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਖੇਤੀ ਚ ਨਾ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ
1: ਜਿਵੇਂ ਬਗੀਚਾ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਡਰੈਗਨ ਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਚ ਜੀਆਂ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਨ ਚਰਿਆ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ ਚ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸੀ ਕੁਝ
0: ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਬਗੀਚਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਦਿਖਣਾ ਪਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨਾ ਪਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਹੈ ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਗਾਂਧੀ ਮਮਰ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ ਚ

0: फ्लावरिंग होंगी ना, ये मई से लेके दिसंबर नवंबर तक समझ लेता हूँ हाँ जी बगीचे से रहना पौधा रेगुलर, क्योंकि जिस भी लगा देंगे फ्लावर कोई खराब होगा कोई टूटा कोई दिखना पौधा रोज। हाँ जी दिसंबर के बाद फिर यहाँ थोड़ी जी रेस्ट होंगी ना, फिर फरवरी फिर स्टार्ट हो जाता काम।
1: अच्छा जी इदा चलो हाँ इदा चलो फाला हाँ तोड़ लेना था कितने के दिन दीदी जी गुणवत्ता रही
0: हाँ तो इसी कारण हालांकि रिसर्च कने करना ना कने करते रहते। हाँ जी गर्मी चाह तो मई जून आला तोड़ देता हाँ जून च नहीं जून एंड टुटता जुलाई फर्स्ट वीक टुटता जरा।
1: हाँ जी
0: हाँ बगैर फ्रिजे से 15 दिन रखते बाहर तक ठीक रहता, बाहर तक थोड़ा नरम हो जाता लेकिन अंदर तक ठीक होता। 15 दिन बाद थोड़ा बाहर ऐसे किले पौधा नरम पाने लेकिन अंदर तक ठीक होता। 15 दिन के बाद हाँ कट्टी लेंगे सितंबर वाला हूँ तोड़ना एक महीना कटी बिना फ्रिज से।
1: अच्छा
0: हाँ जी हाँ जी फ्रिज से तो हाँ पिछले साल नवंबर च रखा हाँ एक जनवरी च कटे हाँ जी।
1: अच्छा जीवन जी इससे बाद गल कर देना कि अहां दे जेड़े बेरोजगार युवा जेड़ी अहां दी पीढ़ी है जेड़ी की नौकरियां पिछे तां तां घुमा दी कने नौकरियां नहीं मिला कर दियां भले इतना बाद जेड़ी सा अपनी खुलियां जमीन ने तो तिने तुहां क्या संदेश देना चाहंगे?
0: हां संदेश देना चाहते काम करा भी।
1: हाँ जी
0: काम जेड़ा करेगा से कुछ भी जेड़ा सफल नहीं हो सकता भावे घर करा या बाहर करा, पर खेती च भी काफी ज्यादा फायदा दिखा। अज मैं तुहानू दसदा अगर तुहां नैचुरल फार्मिंग करदे तां दुध दी बड़ी अच्छी मांग है दिखा, सरकार बड़ी मदद करदी यहां दे हर जगह मतलब आई रही मतलब दिखा हॉर्टीकल्चर एग्रीकल्चर आले हाड़े बड़े अच्छे अफसर सारे खासकर विशेषकर साढ़े डिप्टी डायरेक्टर ने हॉर्टीकल्चर के कमर्शियल ने की बगीचे आउंदे विजिट करदे रेगुलर आउंदे साढ़े वाले सारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर भी आए साढ़े इत्थों सरकार दी तरफों बड़ी अच्छी मतलब तुहां काम करा तो कोई कमी नहीं है कुछ चीज की।
1: जी जीवन जी दिखा ग्रां काज रोड जवाली ते जेड़े से तुहां आहां कन्ने इत्थों आकाशवाणी धर्मशाला दे टियाले पर इत्थों तुहां आहां कन्ने जुड़े अपने खेतीबाड़ी दे अनुभव तुहां आहां कन्ने सांझा कीते तुहां दा बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साथियों तो तुहां दिखा हुण जानकारी जिहड़ी असीं सुणी है और ऐसी जानकारियां ते सांझो जरूर सीख लेना चाहीदी है और बड़ी प्रेरणा मिलती है जैलू ऐसे किसान साढ़े कन्ने अपनी गल्लां जिहड़ियां असीं साझा करदे हन कि भई मेहनत करा तो हर काम जिहड़ा असीं हो जांदा है। तो किसान भाइयों हुण दिखा हुण आहां चलना है कांगड़ा सब्जी मंडी पासे कन्ने तुहानू दसने ना अज दे थोक भाव है ना। तो अज आलू जोड़ा है सदर रहा 10-20 रुपये प्रति किलोग्राम, प्याज रहा 46-50 रुपये प्रति किलोग्राम, टमाटर रहे 20-30 रुपये, लहसुन रहा 180-200 रुपये प्रति किलोग्राम, अदरक रहा अज 120-130 रुपये, शिमला मिर्च रही 55-60 रुपये, अरबी की गल की जाए तो अरबी अज रही 28-30 रुपये, खीरा रहा 25-35 रुपये, मटर रहे 100-120 रुपये, फूल गोभी अज रही 70-75 रुपये, बंद गोभी 30-32 रुपये, बैंगन रे 22-25 रुपये, कने मूली जड़ी से आज रही 20-30 रुपये, पालक रे 35-40 रुपये, हरा धनिया 170-180 रुपये रहा।
3: जी बिल्कुल ता देखा उसके बाद भिंडी रही 30-32 रुपये, घिया 25-50 रुपये, कटहल 5-10 रुपये, फ्रांसबीन 35-70, करेला 18-25 और मशरूम 190-200 और फलों की भी गल करिए तो देखा सेब 40-50 रुपये और केला 40-50 रुपये प्रति दर्जन, अनार 100-110, अनानास 40-45।
2: जी और अमरूद की गल की जाए तो 100-110 रुपये, मौसमी रही 40-50 रुपये, पपीता आज रहा 40-50 रुपये, कने इसके कने ही अंब जोड़ा से आज रहा 70-80 रुपये, नींबू रहे 100-110 रुपये प्रति किलोग्राम। तो श्रोताओं हूँ अहाँ जोड़ा से मंडी भाव से आइए वापस कने हूँ चलना है हाँ लोग गीत पासे।
3: जी

तो किसान साथियों इस लोकगीत कने दिखा हूँ समय जड़ा सह हूँ संजुअल है नहीं गलबात करने का तो तुहां ते लैनी हाँ अनुमति तो हाँ दोनों जुदिया अनुमति। अच्छा जी जय हिंद।

कार्यक्रम खेती बाड़ी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शाम के 7:42 होने को हैं। थोड़ी ही देर में यानी कि 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सुना है हिमाचल के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना फिर शुरू होने वाली है?
3: हाँ बिल्कुल, जनगणना 2027 का दूसरा चरण यानी जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर 2026 तक होगा और 17 से 31 अगस्त तक se-snowbound.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी स्वयं भर सकते हैं। उसके बाद प्राप्त होने वाली SEID को संभाल कर रखें और घर आने वाले प्रगणक को देना ना भूलें।
2: मैं अभी अपनी स्वगणना पूरी करती हूँ।
3: आप भी आज ही अपनी स्वगणना पूरी करें।
4: हाँ!

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शिमला में शुरू, पहले ही दिन सदन में हंगामा, 10 मिनट चली सदन की कार्यवाही। विधानसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष आमने सामने। मुख्यमंत्री ने कहा, राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रीय गीत का मुद्दा उठा रही भाजपा। भाजपा ने राष्ट्रीय गीत के अपमान का लगाया आरोप, कहा राष्ट्रीय गीत के सम्मान के प्रति गंभीर नहीं कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर हिमाचल के महत्वपूर्ण विषयों व विकास को लेकर की विस्तृत चर्चा। और कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार से प्रभावित गग्गल पंचायत के लोगों ने उचित मुआवजे और पुनर्वास की सरकार से की मांग। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 14वीं विधानसभा का मॉनसून सत्र आज शिमला में शुरू हुआ। सत्र के पहले ही दिन सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्यवाही राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई, जिसके बाद विपक्षी दल भाजपा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने की मांग उठाई। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: शिमला में आज से शुरू हुए प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन सदन में राष्ट्रगीत को लेकर भारी गतिरोध देखने को मिला। सत्र के पहले दिन सदन की औपचारिक शुरुआत परंपरा के अनुसार राष्ट्रगान जनगण मन से हुई। इसके तुरंत बाद ही विपक्षी सदस्यों ने इस पर कड़ा एतराज जताया। विपक्ष का तर्क था कि केंद्र सरकार के हाल ही के दिशा निर्देशों के अनुसार आयोजनों की शुरुआत राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम से होनी चाहिए और विधानसभा में भी इसी व्यवस्था का पालन किया जाना आवश्यक है। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी विधायक अपनी सीटों पर खड़े हो गए और विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी जवाबी नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे सदन का माहौल पूरी तरह गर्मा गया। विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को शांत कराने और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। उन्होंने सदन को सूचित किया कि शुरुआत में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए शोकोद्गार पेश किए जाने हैं, इसलिए कार्यवाही को नियमानुसार चलने दिया जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने स्थिति स्पष्ट करते हुए दी कि केंद्र सरकार का नया नियम सामान्य सरकारी कार्यक्रमों के लिए है और विधानसभा की अपनी नियमावली और परंपराएं हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल विधानसभा की स्थापित परंपरा के तहत सदन की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ और समापन राष्ट्रीय गीत के साथ होता है। इस पर विपक्ष नहीं माना और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा होते देख विधानसभा अध्यक्ष ने 10 मिनट में ही सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद सत्ता पक्ष भी विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ सदन के बाहर आ गया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सदन में राष्ट्रगान का अपमान किया है और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान सत्र की शुरुआत में और राष्ट्रीय गीत सत्र के अंत में गाया जाता है, लेकिन भाजपा नियमों के विपरीत केवल राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रीय गीत का मुद्दा उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा विधानसभा की परंपराओं का सम्मान नहीं कर रही है।
2: भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान, अध्यक्ष मोदी ने राष्ट्रीय गान गाने के लिए सब उठाया और पहले ही हाथ खड़ा कर दिया कि राष्ट्रीय गान गाने से पहले हमें इसके राष्ट्रीय गीत के बारे में बताया जाए। विधानसभा की परंपरा रही है कि राष्ट्रीय गान गाया जाना। जो पार्टी राष्ट्रीय गान का अपमान कर सकती है, राष्ट्रीय गान के अपमान में विरोध कर सकती है, हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी, हिमाचल प्रदेश के विधायक दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ, इसको कभी सहन नहीं करेंगे।

0: दूसरी ओर भाजपा विधायक विपिन परमार ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत के अपमान का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा ने सदन में राष्ट्रीय गीत गाने की विनम्र मांग की थी लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय गीत के सम्मान के प्रति गंभीर नहीं है और इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है।
1: एक्ट अभी पार्लियामेंट में पारित हुआ है, उस एक्ट और नियम को पूरा देश पालना कर रहा है। 15 अगस्त अभी राष्ट्रीय एक नेशनल इवेंट था, उस इवेंट को स्वीकार किया गया। परंपराएं तो बनाई जाती है और वंदे मातरम क्या है, मैंने पहले भी कहा है, हे मातृभूमि तुम्हें हम श्रृंगार के रूप में, हम इस मातृभूमि के पुत्र देखना चाहते हैं। अब कुछ धर्मों के लोगों को ये ठीक नहीं लगता तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपना मन वाणी और व्यवहार बदलना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत अपमान।
0: इधर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने स्पष्ट किया कि लोकसभा सहित कई विधानमंडलों में सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान से और समापन राष्ट्रीय गीत से करने के नियम हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया जिस कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
2: जो राष्ट्रगीत है, जब राष्ट्रगीत लोकसभा में शुरुआत है उस समय की सरकार के द्वारा अडॉप्ट हुआ, लोकसभा के अंदर उसको गाया गया, उस समय की प्रोसीडिंग देखो आप, और वहां पर आम सहमति हुई, कंसेंसस हुआ अमंग द ऑल पॉलिटिकल पर्सन, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और उस कंसेंसस के ऊपर ही वो चार पहरे रखे गए और जो बाकी का जो पार्ट था उसको उसका हिस्सा नहीं बनाया गया। अब कानून के माध्यम से वर्तमान केंद्र सरकार उसको एनफोर्स करना चाह रही तो करे, वो तो जो संस्थान है सरकारी में होगा। विधानसभा अपने नियमों पर चलती है, अपनी परिपाटी पर चलती है।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भाजपा विधायकों ने विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ किए गए वायदों को पूरा न करने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर पूरे बिजनेस को स्थगित कर रोजगार के मुद्दे पर चर्चा करवाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार प्रदेश में 5 लाख नौकरियां देने का वायदा कर आई थी लेकिन 4 साल का कार्यकाल बीतने के बाद अब तक कुछ हजार नौकरियां ही दी गई हैं।
1: कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव के समय युवाओं के साथ प्रमुख वायदा था 5 साल में 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे, परंतु आज तक 4.5 साल बीत गए, 1 लाख तो दूर, अभी कुछ हजार नौकरियां देकर ही ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। इसी मुद्दे को लेकर विधानसभा के अंदर भी नियम 67 का कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।
0: दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा के प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए कहा कि विरोध जताना विपक्ष का दायित्व है लेकिन भाजपा विधायक आंतरिक कलह के चलते प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: प्रोटेस्ट में कोई बुरी बात नहीं होती, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी है, उनका दायित्व बनता है, लेकिन ये प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? ये प्रोटेस्ट तो इसलिए करते हैं कि हम दिखाना चाहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक कलह है जो 5 बूथों में बटी है उसमें किसी न किसी तरह जयराम ठाकुर जी के प्रति इनका विश्वास नहीं है और ये किसी तरह जयराम ठाकुर जी को विपक्ष के दबाव से हटाने की प्रक्रिया में प्रोटेस्ट कर रहे।
0: पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों और विकास से संबंधित मुद्दों पर प्रधानमंत्री के साथ विस्तृत चर्चा की। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भौगोलिक परिस्थितियों की दृष्टि से एक विशेष राज्य है और यहाँ विकास की चुनौतियां भी अन्य राज्यों से अलग हैं। ऐसे में प्रदेश के विकास के लिए केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के लाखों परिवारों को मिल रहा है। जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश को निरंतर सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भी मुलाकात की और उनका कुशल क्षेम जाना। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार की जद में आ रहे गग्गल के पंचायत लाइन क्षेत्र के लगभग 80 परिवारों ने सरकार से उचित मुआवजे और पुनर्वास की मांग की है। स्थानीय लोगों

0: का कहना है कि वे पिछले 60 से 70 वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं और इनमें से कई परिवारों को जमीन सरकार की ओर से आबंटित की गई थी। ऐसे में विस्थापन की स्थिति में उन्हें नाम पत्र का मुआवजा दिया जाना उनके साथ अन्याय होगा। गग्गल पंचायत के प्रभावित परिवारों ने आज उपायुक्त से मुलाकात कर उचित मुआवजा देने की मांग की। प्रभावितों ने मुख्यमंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मामले में हस्तक्षेप कर प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ पे जो मतलब सारे 70 से 80 परिवार हम जो आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे रहते हुए गग्गल में 70 साल से ऊपर हो गए हैं और हमने ना के बराबर सिंगल मुआवजा दिया जा रहा है डीसी के द्वारा। आज हम आए थे डीसी सर के पास तो हमारी यही मांग थी कि हमें जैसा बाकी सबको मिला है वैसे ही हमें दिया जाए। हमने मेनली ये मुद्दा भी रखा है कि हमारे में बीच में कुल 25 से 30 परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने यही जमीन अपने खुद के नाम करवाई है जिनको आज करोड़ों के हिसाब से मुआवजा मिला है। जब उनको मिल सकता है उनके नाम हो सकती है तो हमारे नाम क्यों नहीं। मेरी जो सीएम सर से भी रिक्वेस्ट है बाकी जितने भी हमारे एमएलए जो भी हैं सारे हम उन सबसे भी रिक्वेस्ट करने जाते हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शिमला में शुरू। पहले ही दिन सदन में हंगामा। 10 मिनट चली सदन की कार्यवाही। विधानसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष आमने सामने। मुख्यमंत्री ने कहा राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रीय गीत का मुद्दा उठा रही भाजपा। भाजपा ने राष्ट्रीय गीत के अपमान का लगाया आरोप। कहा राष्ट्रीय गीत के सम्मान के प्रति गंभीर नहीं कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर हिमाचल के महत्वपूर्ण विषयों व विकास को लेकर की विस्तृत चर्चा। और कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार से प्रभावित गग्गल पंचायत के लोगों ने उचित मुआवजे और पुनर्वास की सरकार से की मांग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
3: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
2: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
3: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
2: जानकारी लें अधिकार जाने।
3: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी प्रसारित किया जा रहा था। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। लीजिए पेश है रोजगार समाचार। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी कुमार सेन जिला शिमला से प्राप्त सूचना के अनुसार बाल विकास परियोजना कुमार सेन के अंतर्गत विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के लिए पदों को भरने हेतु इच्छुक पात्र महिला उम्मीदवारों से सादे कागज पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों को भरने हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि कल यानी 22 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। साक्षात्कार के लिए उम्मीदवार को 24 अगस्त 2026 को प्रातः 10 बजे बाल विकास परियोजना अधिकारी कुमार सेन के कार्यालय में उपस्थित होना होगा। इन पदों हेतु पात्रता की शर्तें इस प्रकार से हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने हेतु केवल महिला उम्मीदवार ही योग्य हैं। प्रार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। प्रार्थी का नाम 1 जनवरी 2026 को संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के सर्वे परिवारों की सूची में दर्ज होना चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और इससे संबंधित प्रमाण पत्र तहसीलदार, नायब तहसीलदार अथवा कार्यकारी दंडाधिकारी स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। प्रार्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से 10:2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्मीदवार का हिमाचल का स्थायी निवासी होना

0: अनिवार्य है। एक बार फिर से बता दें, इन पदों को भरने हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि कल यानी 22 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है और साक्षात्कार के लिए उम्मीदवार को 24 अगस्त 2026 को प्रातः 10 बजे बाल विकास परियोजना अधिकारी कुमार सेन के कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। इसके साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को हैं। अब विधानसभा समीक्षा आकाशवाणी शिमला से रिले की जाएगी।
0: लीजिए पेश है विधानसभा समीक्षा। विधानसभा समीक्षा मीडियम वेव के साथ साथ हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुनी जा सकती है।
2: विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही राष्ट्रगान के बाद जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी भाजपा ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को नहीं गाए जाने पर विरोध किया। विपक्षी भाजपा विधायकों की ओर से इस मुद्दे पर जोरदार नारेबाजी की गई, जिसका सत्तारूढ़ कांग्रेस के सदस्यों ने भी नारेबाजी करके विरोध जताया। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास किया और शोकोद्गार के बाद विपक्ष की तरफ से उठाए गए विषय पर आगे बढ़ने का आश्वासन दिया, लेकिन विपक्ष अपनी बात पर अड़ा रहा। इसको देखते हुए अध्यक्ष ने 11 मिनट के भीतर ही कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। यानी अब विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शनिवार सुबह 11 बजे फिर शुरू होगी। पहले दिन की कार्यवाही स्थगित होने के कारण पूर्व सदस्य विजेंद्र सिंह व रामचंद भाटिया के निधन पर शोकोद्गार प्रकट नहीं किए जा सके। परंपरा के अनुसार सत्र के पहले दिन सदन के वर्तमान या पूर्व सदस्य के निधन होने पर शोकोद्गार प्रकट किए जाते रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि भाजपा सदस्यों ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के प्रति कांग्रेस का पूरा सम्मान है, लेकिन विपक्ष को राष्ट्रगान से हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। विपक्ष ने राष्ट्रगान के अपमान के साथ शोकोद्गार भी नहीं होने दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा के इस दोहरे चरित्र को प्रदेश की जनता के सामने लाएगी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि जिस राष्ट्रीय गीत को लेकर संसद से कानून पारित हो चुका है, उसको स्वीकार करना हर राष्ट्रवासी का कर्तव्य है। स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को इसका सभी जगह गायन हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा किया जाना राष्ट्रद्रोह के बराबर है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अनुपस्थिति में विपक्ष लीडरलेस नजर आ रहा था। मैं ये नहीं कह सकता कि सभी लीडर हैं, ऐसे में जब परंपराओं का पालन नहीं हुआ तो मेरे पास कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था। लोकसभा की तरह विधानसभा की कार्यवाही राष्ट्रगान से शुरू होती है। जब सत्र का समापन होता है तो राष्ट्रीय गीत का पहले की तरह गायन होगा, ऐसे में कहां पर विरोधाभास हो सकता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की मॉनसून सत्र का आगाज जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के बजाय राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे टकराव के साथ हुआ। सदन में मॉनसून सत्र के पहले दिन परंपरा बनाम प्रतीकों का टकराव देखने को मिला। महज 11 मिनट के भीतर सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। भले ही सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, लेकिन विधानसभा सचिवालय द्वारा कार्यसूची में शामिल प्रश्नकाल को लेकर लिखित रूप में जारी किया गया। विधानसभा में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा की जा रही भर्तियों को लेकर भाजपा विधायकों डॉ. जनकराज, सुधीर शर्मा, लोकेंद्र कुमार और दीपराज द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से जानकारी दी गई कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ 5 करोड़ रुपए में 3 साल का करार किया है। हालांकि निविदा में इसके अलावा एक और कंपनी ने भाग लिया था। राज्य चयन आयोग के गठन से 31 जुलाई 2025 तक 2977 अभ्यर्थियों की विभिन्न विभागों में भर्ती की

प्रस्तुतियां भेजी जा चुकी हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी 2784 अभ्यर्थियों की सिफारिशें की गई हैं। लिखित प्रश्न के तहत देश भर में नीट और अन्य भर्ती परीक्षाओं को लेकर उठे सवालों के बीच हिमाचल में पारदर्शी भर्तियों का नया दौर शुरू कर चयन आयोग ने TCS के साथ 5 करोड़ का बड़ा सुरक्षा समझौता कर शुरू किया है। मंत्रिमंडल द्वारा 2011 नियमित पद जबकि 7714 अनुबंध आधार पर सृजित किए गए। भर्ती प्रक्रिया में युवाओं को राहत देते हुए सरकार ने TGT और JBT पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की। इससे निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके कई अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिला। नई परीक्षा व्यवस्था के तहत प्रदेश में 29 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनकी क्षमता प्रति शिफ्ट 3449 अभ्यर्थियों की है। परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित टेस्ट के माध्यम से की जा रही है। प्रत्येक परीक्षा लैब में 2 एंगल से CCTV कैमरे लगाए गए हैं और इनकी लाइव स्ट्रीमिंग हमीरपुर स्थित कंट्रोल रूम तक निर्धारित की गई है। बायोमेट्रिक और लाइव फोटो मिलान की व्यवस्था, परीक्षा के प्रवेश द्वार, बायो ब्रेक तथा संबंधित विभाग में ज्वाइनिंग के समय भी की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए एक और अहम प्रावधान ये है कि परीक्षा से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमाण पत्र देना होगा कि उनका कोई सगा संबंधी संबंधित परीक्षा में अभ्यर्थी के रूप में शामिल नहीं हो रहा है। TCS के साथ हुए समझौते में परीक्षा की सुरक्षा को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं। प्रश्न पत्र और डेटा 2056 बिट इंक्रिप्शन वाले सुरक्षित सर्वर से भेजे जाएंगे। पेपर लीक या गंभीर अनियमितता की स्थिति में 5% पेनल्टी और निशुल्क दोबारा परीक्षा का प्रावधान है। सर्वर या नेटवर्क में खराबी पर प्रत्येक 15 मिनट के लिए 2% पेनल्टी लगाई जा सकती है। TCS ने आयोग के पक्ष में 5 करोड़ रुपए की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी भी जमा की है। विधायक केवल सिंह पठानिया के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि इन संस्थानों में भवन निर्माण के लिए कुल 7,79,32,97,469 रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है। राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान विभाग के अधीनस्थ आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों और डेंटल कॉलेजों में पिछले 3 वर्षों के दौरान 1,164 पद स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा भवनों के रखरखाव के लिए 33,87,06,981 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। विधायक आशीष शर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने सदन में ये जानकारी दी कि आयुष विभाग में आयुष फार्मासिस्ट के 111 पद वर्तमान में रिक्त हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जनवरी 2023 से अब तक कुल 81 आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों के पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। विभाग के अनुसार समय समय पर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, त्याग पत्र और पदोन्नति के कारण आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों के पद खाली होते रहते हैं। उपलब्ध रिक्तियों को प्रचलित भर्ती व पदोन्नति नियमों के तहत भरने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि नई व्यवस्था से सरकार पर वित्तीय बोझ कम होगा और हर वर्ष करीब 1,70,00,000 रुपए की बचत होगी। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में वर्षों से सुरक्षा और रखरखाव से जुड़े काम संभाल रहे पंचायत चौकीदारों के 566 रिक्त पद समाप्त कर दिए गए हैं। इसे डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है। इनके स्थान पर अब ग्राम पंचायतों में 400 बहुउद्देशीय कार्यकर्ता यानी मल्टी टास्क वर्कर बाह्य सेवा आधार पर नियुक्त किए जाएंगे। विधायक डॉक्टर जनकराज के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि भालू के हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई थी जिसके परिवार को 4,00,000 का मुआवजा दिया गया है। चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के भरमौर और पांगी वन मंडलों में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पिछले 3 वर्षों में जंगली भालुओं के हमलों से जुड़े 22 मामलों में 8,91,000 रुपए की राहत राशि स्वीकृत कर वितरित की गई है जबकि 11 मामलों में 8,35,000 रुपए की राहत राशि अभी लंबित है। शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया के प्रश्न के लिखित उत्तर में सदन में ये जानकारी दी गई कि देवभूमि के मंदिरों में श्रद्धालुओं ने 3 सालों में 419,88,00,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया है। हमीरपुर स्थित द्योट सिद्ध श्री नैना देवी जी और ज्वालामुखी समेत 36 सरकारी कृत मंदिरों में श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर दान दिया है। वर्ष 2024-2025 और वर्ष 2026 में 1 अगस्त तक प्राप्त इस राशि में सबसे अधिक 99,19,00,000 रुपए बाबा बालकनाथ मंदिर द्योट सिद्ध को मिले हैं। श्री नैना देवी मंदिर 86,94,00,000 रुपए के साथ दूसरे और श्री ज्वालामुखी

0: सरकार के अनुसार मंदिरों से प्राप्त धनराशि का उपयोग तीर्थस्थलों का विकास, श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाएं, कर्मचारियों के वेतन, पेयजल, बिजली, सुरक्षा, रखरखाव और सौंदर्यकरण पर खर्च किया जाता है। इसके अलावा सफाई, शौचालय, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, लंगर, शिक्षण संस्थानों, गौशालाओं, धार्मिक अनुष्ठानों और मेलों के आयोजन और पुजारियों के हिस्से का भुगतान भी इसी आय से किया जाता है। सरकार ने स्पष्ट किया कि मंदिरों की आय का इस्तेमाल आवारा पशुओं के लिए, गौ सदनों के निर्माण, रखरखाव, उन्नयन और गौवंश संवर्धन के लिए किया जा सकता है। इसी के साथ विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस, और कार्यक्रम की शुरुआत भक्ति रस के साथ।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो गीत जिसने भारतीय संगीत के इतिहास में इतिहास रच दिया। और ये गीत गाया है मशहूर पॉप एक्टर अलीशा चिन्नॉय ने।

कार्यक्रम सबरस में श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रैपर और सिंगर किंग का लोकप्रिय गीत। और ये गीत उनकी एल्बम साल 2022 में जो रिलीज़ हुई थी शेंगेन टॉक, उसका हिस्सा है।

अभी जो गीत आपने सुना वो परंपरा ठाकुर द्वारा गाया हुआ था और कार्यक्रम का समापन करते हैं इस पंजाबी गीत के साथ। आवाज़ है सतिंदर सरताज की।

मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। डीजे प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

जान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीत आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और 9 बजे News@9 रिले की जाएंगी।
1: प्रेम की बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा जहां

0: धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैंड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैंड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
1: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
3: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है, जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
1: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
4: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूं कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय

0: अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
1: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की TMC की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
3: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
4: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। MSME और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। PLI केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था, इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन IP को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले 2 जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
5: 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं, उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
1: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के

0: बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझीदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक

0: समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to deport every illegal immigrant from the country. Government assures availability of adequate sugar stocks to meet domestic demand. Union Minister Ashwani Vaishnav launches mobile phone manufacturing scheme with outlay of over 62,000 crore rupees to enhance domestic supply chain and global competitiveness. Health and Family Welfare Minister JP Nadda reviews situation and preparedness for H1N1 influenza in the country. And in Hockey World Cup, Indian women's team to take on the Netherlands in the second pool phase match. Prime Minister Narendra Modi has said India has been seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
2: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों, रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: The Prime Minister said India has moved away from production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was a policy of earlier regimes to keep people in scarcity so that they beg before the government for even basic needs. Mr. Modi said license raj of earlier governments was used to increase unemployment while his government's production-linked incentive model creating opportunities. We now go over live to the Prime Minister's address.
2: साथियों, पॉलिटिक्स में अक्सर वही फैसले हेडलाइंस बनते हैं जिनका असर आज दिखाई दे, यानी उसकी उम्र 24 घंटे हो। पहले की सरकारों ने इलेक्शन सामने देखकर भी घोषणा करने का फॉर्मूला अपनाया, लेकिन ऐसी घोषणाओं से देश नहीं बदला। देश बदलने वाले फैसले वो होते हैं जिनका प्रभाव जमीन पर दिखे, जो वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रख करके लिए गए होने चाहिए। साथियों, पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना इसका बहुत बड़ा यूनिक एग्जाम्पल है। कुसुम योजना से किसानों को बिजली की चिंता से मुक्ति मिली है और सूर्यघर योजना से मिडिल क्लास को बहुत फायदा हुआ है। साथियों, मैं जानता हूं कि अगर मैंने ये अनाउंस कर दिया होता कि आज से लाखों लाख परिवारों के लिए बिजली मुफ्त है, तो सारा मीडिया, सारी स्क्रीन्स, सारे न्यूज़पेपर्स बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाकर के खबर दे देते कि मोदी जी ने आज अनाउंस कर दिया है।
1: Earlier today, Prime Minister interacted with chief executive officers, CEOs and founders of 20 space startups in New Delhi. The Prime Minister called for wider applications of space technology to improve lives of people. Mr. Modi noted that the country's space sector can become a magnet for global talent, companies and investment, and suggested creating an ecosystem and an environment where, when the world thinks of space, it looks towards India. The UN and Home Minister Amit Shah has reiterated that the zero-tolerance policy against illegal immigrants will continue and the detect, delete and deport process will be strictly followed. He said the government's commitment to deport every illegal immigrant from the country is utmost priority, adding that demographic change will be strictly stopped. The Home Minister

0: Step into the world of Nexa.
1: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags.
1: And now it's yours at an effective price of just 5.79 lakh rupees.
0: Yes, rupees 5.79 lakh. Valid till 31st August.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the bold Baleno today.
0: Hurry, offer still stocks last. TNC apply.
2: Nexa.
3: श्रोता, दामिनी फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थी मीनाक्षी शेषाद्री और ऋषि कपूर, सनी देओल और अमरीश पुरी। और फिल्म की कहानी आधारित है एक महिला ने न्याय के लिए समाज के खिलाफ कैसे लड़ती है इस विषय पर। और ये फिल्म काफी हिट रही और इसे महिला प्रधान फिल्म माना जाता है।

जी श्रोताओ, दामिनी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला सनी देओल को वर्ष 1994 में, और इसी फिल्म के लिए राजकुमार संतोषी ने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी जीता। और इस फिल्म के सभी गीत लिखे समीर ने और उन्हें संगीतबद्ध किया नदीम श्रवण ने।

एक ही फिल्म से, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कारवां सुरों का। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अलका याग्निक के गाए हुए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है जख्म। आनंद बख्शी के बोल हैं और धुन बनाई है एम

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म मर्डर से कुणाल कांजावाला की आवाज में। गीतकार हैं सईद कादरी, संगीतकार हैं अनु मलिक।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो का गाया हुआ। फिल्म का नाम है हम तुम। इस गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

कारवां सुरों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम में अब श्रेया घोषाल को हीरा मंडी फिल्म में।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म द लाल से, आवाज है कुमार सानू की। गीतकार हैं माया गोविंद, संगीतकार हैं बप्पी लहरी।

सुरों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। लकी अली की आवाज में ये गीत है, फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कारवां सुरों का। रात्रि के 10 बज चुके हैं और ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, और अब समय है बॉलीवुड बीट्स का।

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं कल्पना और कुणाल गांजावाला के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम अब बस।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए लापता लेडीज फिल्म से। अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत है और संगीतकार हैं राम संपत।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए शफकत अमानत अली का गाया हुआ। फिल्म का नाम है शादी में जरूर आना और इस गीत को संगीतबद्ध किया है आरको ने।

बॉलीवुड बीट्स, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। श्रेया घोषाल और शंकर महादेवन की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है चांदनी चौक टू चाइना।

जरा हटके जरा बचके। लीजिए इस फिल्म में सुनिए वरुण जैन, शादाब फरीदी और अल्तमाश फरीदी को। बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन बनाई है सचिन जिगर ने।

लीजिए अब सुनिए सचेत टंडन की आवाज में जर्सी फिल्म से ये गीत। बोल लिखे हैं शैली ने और संगीतकार हैं सचेत परंपरा।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह और नेहा कक्कड़ का गाया हुआ ये गीत। फिल्म का नाम है पति पत्नी और वो।

बॉलीवुड बीट्स ये कार्यक्रम श्रोताओ आपने सुना आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। इस समय रात्रि के 10:30 हो चुके हैं और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम चित्रपट संगीत। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के युगल स्वरों में लीजिए सुनिए ये गीत फिल्म 9-2-11 से।

हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत लीजिए सुनिए एस टी वर्मन के संगीत निर्देशन में। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

चित्रपट संगीत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने और ये गीत हमने लिया है फिल्म बसंत बहार से।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है भावी, इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई है चित्रगुप्त ने।

और लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। लीडर फिल्म से ये गीत है, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। गीतकार हैं शकील बदायनी, संगीतकार हैं नौशाद।

0: चित्रपट संगीत ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। रात्रि के 11 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में विकास और संसाधनों को लेकर कई चिंताओं के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विकास के उज्ज्वल उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड्स लीडर फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कई कदम उठा रहा है और सुधारों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की नीति लोगों को अभाव में रखने की थी, ताकि वे बुनियादी जरूरतों के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर रहें। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति में बदलाव ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष

0: क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: श्री शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांगशू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has said India is being seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
3: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला,